मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 12 जून 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है प्रातः के 5:58 और 10 सेकंड। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद आप समाचार सुनेंगे। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचारों के तुरंत बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियाँ अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी

0: स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से दो दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। वाणी में विश्वास और आचरण में सच्चाई ही एक अच्छे इंसान की असली पहचान है। ये था चिंतन आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

मनुष्य के रूप में संसार में आकर प्रभु की भक्ति करना मनुष्य का पहला धर्म होता है, क्योंकि यदि मनुष्य ने इस जीवन को प्रभु की भक्ति में नहीं लगाया तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा।

प्रभु की महिमा सुनने से और सुनाने से मन पवित्र हो जाता है, मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं, अपार सुख का अनुभव होता है। इसीलिए प्रभु की भक्ति रस में जो मज़ा है वो मनुष्य को और कहीं नहीं आता। प्रभु के भक्त अपने जीवन को प्रभु की सेवा में समर्पित करके अपने इस जीवन को सार्थक कर लेते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं।

प्रभु के नाम के जाप करने से मनुष्य के मन को अपार शांति मिलती है, मन पवित्र हो जाता है, विकारों से दूर हो जाता है, मोह माया लोभ क्रोध इन सभी विकारों से परे हटकर मनुष्य का मन जब प्रभु की भक्ति में रम जाता है तो किसी भी सांसारिक वस्तु में उसका मन नहीं लगता, न कोई सांसारिक वस्तु उसके मन को आकर्षित कर पाती है। मनुष्य का मन प्रभु की भक्ति में लीन होकर प्रभु की सेवा में खुद को समर्पित कर देता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान।

अनुज लक्ष्मण तथा भार्या सीता के साथ पर्णकुटी में निवास करते हुए श्रीराम इस प्रकार सुशोभित हैं, जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी शची तथा पुत्र जयंत के साथ अमरावती में सुखपूर्वक निवास करते हैं। किंतु उधर अयोध्या पर आसन्न शोक का आभास पशु पक्षियों की उस व्याकुलता से मिलता है जो निषाद राज गुह ने वापस आकर देखा। रथ के साथ सुमंत्र को आकुल देखकर निषाद राज गुह को अत्यंत दुख हुआ। निषाद राज को अकेले लौट आया देख सुमंत्र हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहकर धरती पर गिर पड़े। रथ में जुते अश्व दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर जिधर उन्होंने राम को जाते देखा था जैसे करुण हिनहिनाहट में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। चारा पानी छोड़ उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। निषाद राज ने सुमंत्र को पंडित और ज्ञानी संबोधित करके समझाया, अब विषाद छोड़ विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। रथ पर बिठाए जाने के बाद भी शोक से शिथिल हुए सुमंत्र से रथ हांका नहीं जाता। घोड़ों को शोकातुर देख निषाद राज भी विह्वल हो गए। उन्होंने अपने चार सेवक सारथी के साथ कर दिए जो रथ को अयोध्या की ओर ले चले।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों राम राम। कृषि की बात में आज जिक्र करेंगे व्यापारिक फूलों की काश्तकारियों के के सावधानी बरतें इस बारे में कुछ सुझाव। भाई देखो, जो सारा साल हम फूल लावे हैं, कुछ सर्दियाँ के फूल हो हैं, कुछ गर्मियाँ के, कुछ वर्षाकालीन फूल हो हैं, तो ईब जो मौसम चल रहा है उसमें गर्मियाँ का मौसम या फिर आगे जो हम फूल लगाएंगे वो बारिश के मौसम के फूल, तो गर्मियाँ में और बारिश के मौसम के जो फूल हैं उनमें और जो हम खेती कर रहे हैं उन ते फालतू अगर फूलों की खेती करी जा, अगर हमारा जो परिवहन का जो काम है वो कम है, शहर के हम नज़दीक हैं, खेत गाँव शहर के नज़दीक पड़ गया है, यानी कि परिवहन के तीव्र गति के साधन मार दो रहे हैं, तो हम फूलों की काश करके बहुत ज़्यादा इससे पैदावार ले सके हैं। तो गर्मियों में और वर्षाकालीन के लिए जो हमने फूल लेने हैं उनमें बहुत से फूल हैं, अमरेंथन्स है, बालसम, शिलोशिया, कोसमोस, गम्फरीना, गैलार्डिया, एस्कोलिजिया, मैरीगोल्ड, मॉर्निंग ग्लोरी, पिटूनिया, सनफ्लावर, साल्विया, जीनिया, पार्चुलाका, यानी कि बहुत से ऐसी किस्में हैं जो अपने आड़े नहीं संभव हैं तो ये दूसरी जगह संभव हैं, और कुछ अपने आड़े ग्लेडियोलस है, भाई जो गुलदाउदी है, रजनीगंधा है, बहुत से ऐसे फूल हैं जो हमारे उगावे हैं और नज़दीक शहर के अगर खेत क्या रहे अपने या परिवहन के साधन रास्ते अपने ठीक हैं, तो क्योंकि फूलों के लिए हम परिवहन का साधन पर क्यों जोर दे हैं कि फूल की तुड़ाई करी, और वे ताज़े ताज़े फूल अगर हम लेके जाओगे तो ताज़े फूलों के हमने अच्छे दाम मिलेंगे और फूलों की मांग पूरा साल बनी रहे, तो इसलिए रजनीगंधा की बात करें तो देखो रजनीगंधा के लिए समतापमान वाला जलवायु जिसमें तापमान ज़्यादा ऊँचा या ज़्यादा नीचा हो इसमें भी काम दे दे है, और रजनीगंधा की खेती के लिए सही मौसम है यूँ एक कलियों के समुचित जो शुरुआत से वृद्धि विकास के लिए ज्यादा तापमान की आवश्यकता है और लंबे दिनों के दौरान वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो, इसमें पहला पुष्प शीघ्र पहले प्राप्त हो जाए हमने, और पौधे कम प्रकाश प्राप्त होने से पत्तियों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। दोमट मिट्टी कम से कम 50 सेंटीमीटर गहरी भुरभुरी समुचित जल निकास वाली पोषक तत्वों से भरपूर में इसकी सफल खेती हम कर सके हैं, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो, यानी कि मिट्टी परीक्षण कराकर चाहे कोई भी फसल ले हैं मिट्टी परीक्षण कराकर अगर हम करेंगे तो उसमें और भी हमने पैदावार बढ़िया मिलेगी। इसकी जो किस्में हैं व्यवसायिक तौर पर जो हम किस्मान ले हैं तो सिंगल है, डबल है, इसमें पंखुड़ियां एक पंक्ति में हैं और बहुत सी सुगंधित हो है ये फूल, जिसका प्रयोग ज्यादातर भाई जो इत्र बनावे हैं इसमें प्रयोग किया जा है, सिंगल कल्याणी, सिंगल श्रृंगार, प्रज्वल, रजत रेखा, हैदराबाद सिंगल, कलकत्ता सिंगल, ये इसकी प्रजाति है, और डबल में है, डबल में इसकी पंखड़ी जो है 3 से ज्यादा पंक्ति क्यों है, इनका प्रयोग ज्यादातर कटे हुए फूल बनाने में, और वह प्रमुख जो प्रजाति है इसमें वो कल्याणी डबल, स्वर्ण रेखा, हैदराबाद डबल, कलकत्ता, वैभव, सुवासिनी, ये प्रमुख जो किस्में रजनीगंधा की आ जाए हैं। तो बल्ब लगाने की जो समयावधि है भाई अप्रैल तक शुरुआत हो जाए, मई जून इसका हमें रजनीगंधा के बल्फा ने पौधे थे पौधे उचित आकार के जो अपना लेकर है और बल्फा की रोफाई हम कर सके हैं, पहले अच्छी तरह से इन्हें साफ करें, 30 मिनट तक बायोस्टीन नामक फफूंदी नाशक के घोल में इसने डबोएं और फिर कतार से कतार की 20 सेंटीमीटर की दूरी रख के और पौधे से पौधे की भी 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए क्यारिया में 5-5 सेंटीमीटर की गहराई पर नाम लगा दें, पानी तब तक न दें जब तक इसमें फुटाव ना हो, और बात ये करें कि भाई इसमें जो है गोबर की खाद जितनी भी मारदोर तैयार खाद हो वह इसमें जरूर दें, चाहे वो 8-10 गाड़ी क्यों ना हो, और यूरिया की मात्रा की बात करें तो इसमें 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें हमने यूरिया देना है, सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें 450 किलोग्राम यानी कि 375 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी कि 2.5 किलो के हिसाब का, और म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो 112 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमने इसमें खाद देना है। सिंचाई का हमने ठीक तरीके ध्यान रखना है कि भाई सिंचाई क्योंकि गर्मियों के मौसम की जो या फसल है फूलों वाली तो इसमें समुचित हमने जो अपनी नमी इसमें रखनी है, पानी का सही तरीके ध्यान रखना है, नमी बनाए रखनी है, और इसमें जो है 5-7 के दिन के अंतर पर हमने इसमें गर्मियों में सिंचाई करनी है और 15-20 दिन के अंतराल पर आगे चल के फिर जो मौसम होगा उसमें हमने इसमें सिंचाई करते रहना है। खरपतवार इसका निकालते रहना है, चाहे कोई सी भी फसल हो, चाहे फूलों की हो या अपनी साग सब्जी की हो, या खाद्यान्न फसलें हों, खरपतवार इसमें तो जरूर निकालने हैं। इसी प्रकार इसमें भी खरपतवार इसमें नहीं होने देने हैं। और भाई सही समय पर जब फूल इसमें बढ़ने शुरू हो जाए हैं उचित समय पर इनकी तुड़ाई कर।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि की बातें, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रातः की 6:55 होने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद आप सुनेंगे समाचार। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासी परिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वं अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जा क्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलं एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षा निर्माण क्षेत्रे निर्यातोन्मुख नीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 85th नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूर भाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिंतां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्राद् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्रीगोयलः तत्रत्य भैषज उद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपांत्य चक्रम प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयु इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। एतद् पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज, सनी दयानंदः, तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

शाम 7 बजे सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक विशेष श्रृंखला जन विश्वास। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी होंगे श्री मनीष, विकास मधु गोयल और सीमा बिरला।

प्रातः 7:15 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम गांधी चर्चा। प्रातः 7:25 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सवेरे, और युवा संसार कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 5:30 पर।

शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिएगा पशुपालन संबंधी समस्या व सुझाव विषय पर फोन इन कार्यक्रम। श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे डॉक्टर संतोष। खेत खलिहान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर फली सब्जी फसलों की देखभाल विषय पर चर्चा होगी। NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12:30 पर।

प्रातः 9 बजे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम एक रंग। दिन में 1:10 पर सुनिएगा फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर, और फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 10 बजे। कार्यक्रम एक फिल्म से श्रोता सुनेंगे रात्रि 9:15 पर।

प्रातः 8:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे बलवीर सिंह नागर और कृष्णदत्त शर्मा। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है।

0: पहले प्रस्तुत हैं संयम विषय पर गांधी जी के विचार। वाचक हैं यज्ञदत्त मिश्र।
1: आहार संबंधी कुछ परिवर्तन कस्तूरबाई की बीमारी के निमित्त से हुए थे। अब तो दिन प्रतिदिन ब्रह्मचर्य की दृष्टि से आहार में परिवर्तन होने लगे। पहला परिवर्तन दूध छोड़ने का हुआ। मुझे पहले दिन रायंद भाई से मालूम हुआ कि दूध इंद्रिय विकार पैदा करने वाली वस्तु है। अन्नाहार विषयक अंग्रेजी पुस्तकों के वाचन से इस विचार में वृद्धि हुई, लेकिन जब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं लिया था तब तक मैं दूध छोड़ने का कोई खास इरादा नहीं कर सका था। ये चीज तो मैं बहुत पहले से समझने लगा था कि शरीर के निर्वाह के लिए दूध आवश्यक नहीं है, लेकिन वो झट से छूटने वाली चीज भी न थी। मैं ये अधिकाधिक समझने लगा था कि इंद्रिय मन के लिए दूध छोड़ना चाहिए। इन्हीं दिनों मेरे पास कलकत्ते से कुछ साहित्य आया जिसमें गाय भैंस पर ग्वालों द्वारा किए जाने वाले क्रूर अत्याचारों की कथा थी। इस साहित्य का मुझ पर चमत्कारी प्रभाव पड़ा। मैंने इस संबंध में मिस्टर कैलनबैक से चर्चा की। वे मिस्टर खान के मित्र थे। मिस्टर खान ने उनके अंतर की गहराई में वैराग्य वृत्ति का दर्शन किया था और मेरा ख्याल है कि इसी कारण उन्होंने मेरी पहचान उनसे करवाई थी। जिस समय पहचान हुई उस समय उनके तरह तरह के शौकों से और खर्चीलेपन से मैं चौंक उठा था, पर पहले ही परिचय में उन्होंने मुझसे धर्म विषयक प्रश्न किए। इस चर्चा में अनायास ही बुद्ध भगवान के त्याग की बात निकली। इस प्रसंग के बाद हमारा संपर्क बढ़ता चला गया और वो इस हद तक बढ़ा कि उन्होंने अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि जो काम मैं करूं वो उन्हें भी करना चाहिए। वे बिल्कुल अकेले थे। मकान किराए के अलावा हर महीने लगभग 1200 रुपये वे अपने आप पर खर्च कर डालते थे। आखिर इसमें से इतनी सादगी पर पहुंच गए कि एक समय उनका मासिक खर्च घटकर 120 रुपये पर जा टिका। मेरे अपनी घर गृहस्थी को तोड़ देने के बाद और पहली जेल यात्रा के पश्चात हम दोनों साथ रहने लगे थे। उस समय हम दोनों का जीवन अपेक्षाकृत अधिक कठोर था। जिन दिनों हम साथ रहते थे उन्हीं दिनों दूध संबंधी चर्चा हुई थी। मिस्टर कैलनबैक ने सलाह दी, दूध के दोषों की चर्चा तो हम प्रायः करते ही हैं, तो फिर हम दूध छोड़ क्यों न दें, उसकी आवश्यकता तो है नहीं। उनकी इस राय से मुझे सानंद आश्चर्य हुआ। मैंने इस सलाह का स्वागत किया और हम दोनों ने उसी क्षण टॉलस्टॉय फार्म पर दूध का त्याग किया। ये घटना 1912 में घटी। इतने त्याग

0: से मुझे शांति न हुई। दूध छोड़ने के कुछ ही समय बाद केवल फलाहार के प्रयोग का भी हमने निश्चय किया। फलाहार में भी जो सस्ते से सस्ते फल मिलें उनसे ही अपना निर्वाह करने का हमारा निश्चय था। गरीब से गरीब आदमी जैसा जीवन बिताता है वैसा ही जीवन बिताने की उमंग हम दोनों को थी। हमने फलाहार की सुविधा का खूब अनुभव किया। बिना सिकी मूंगफली, केले, खजूर, नींबू और जैतून का तेल ये हमारा साधारण आहार बन गया। यद्यपि मैंने ब्रह्मचर्य के साथ आहार और उपवास का निकट संबंध सूचित किया तो ये भी निश्चित है कि उसका मुख्य आधार मन पर है। मैला मन उपवास से शुद्ध नहीं होता, आहार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मन का मैल तो विचार से, ईश्वर के ध्यान से और आखिर ईश्वरी प्रसाद से ही छूटता है, परंतु मन का शरीर के साथ निकट संबंध है और विकारयुक्त मन विकारयुक्त आहार की खोज में रहता है। विकारी मन अनेक प्रकार के स्वादों और भोगों की तलाश में रहता है और बाद में उन आहारों और भोगों का प्रभाव मन पर पड़ता है। अतएव जो लोग ये कहते हैं कि संयमी के लिए आहार की मर्यादा की और उपवास की आवश्यकता नहीं है, वे उतने ही गलती पर हैं जितने आहार और उपवास को सर्वस्व मानने वाले। मेरा अनुभव तो मुझे ये सिखाता है कि जिसका मन संयम की ओर बढ़ रहा है उसके लिए आहार की मर्यादा और उपवास बहुत मदद करने वाले हैं। इनकी सहायता के बिना मन की निर्विकारिता असंभव प्रतीत होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे संयम विषय पर गांधी जी के विचार, और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संयम विषय पर गांधी जी के विचार। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सुबह सवेरे कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अनीता पाराशर का नमस्कार और आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।

श्रोताओं, आज है 12 जून। हर वर्ष 12 जून का दिन विश्व बालश्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। इसका उद्देश्य बाल मजदूरी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। बालश्रम के मुख्य कारण हैं गरीबी, शिक्षा का अभाव, जागरूकता की कमी। भारत सरकार ने बालश्रम को जड़ से खत्म करने के लिए कई सख्त कदम और कानून बनाए हैं। संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम के प्रति प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 किसी भी खतरनाक कारखाने, खदान या अन्य जोखिम भरे काम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाता है। बालश्रम निषेध अधिनियम पहली बार 1986 में लागू किया गया था, जिसके तहत खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। बालश्रम को रोकने के प्रयासों के तहत समाज के हर वर्ग को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। बालश्रम निषेध दिवस 2026 की थीम है बालश्रम को लाल कार्ड, बच्चों को निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा घोषित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बालश्रम से मुक्त कराना और उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

श्रोताओं, गर्मी इन दिनों बहुत ज़्यादा है और गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए कूलर का, एसी का प्रयोग करना बनता ही है और हम सभी करते भी हैं। लेकिन जब भी हम एसी का प्रयोग करते हैं तो उस समय हमें बहुत सारी सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एसी का लगातार प्रयोग करने से स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखना भी बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ एसी का प्रयोग करते समय उसके रख रखाव का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम एसी का प्रयोग करते हैं तो हमें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना चाहिए। इससे बिजली की भी बचत होती है और शरीर का तापमान अचानक गिरता नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम कमरे के सीलिंग फैन को भी चलाते हैं तो कमरे में समान रूप से ठंडक फैलती है। एसी की ठंडी हवा को कभी भी सीधे अपने शरीर, चेहरे, विशेष रूप से कानों पर ना पड़ने दें। इससे सर्दी, जुकाम, गले में खराश और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। चिलचिलाती धूप से सीधे एसी वाले कमरे में ना जाएं और ना ही ठंडे कमरे से एकदम बाहर निकलें। बाहर निकलने से 10-15 मिनट पहले आप एसी को बंद कर दें, उसके बाद ही बाहर निकलें। और तेज़ धूप से जब भी आप आएं तो सबसे पहले आप नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह पे बैठें, थोड़ी देर अपने शरीर के तापमान को सामान्य करें, उसके बाद आप एसी वाले कमरे में जाएं। लगातार एसी चलाने से त्वचा, आंखों में सूखापन बढ़ सकता है, इसलिए कमरे में थोड़ा सा वेंटिलेशन बनाएं, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। और जब भी आप एसी का प्रयोग करते हैं तो समय सीमा निर्धारित कीजिए, क्योंकि एसी लगातार चलने से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उससे आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो श्रोताओं, जब आप एसी का प्रयोग करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसे बंद करें, ताकि उसकी जो अंदर की मशीन होती है वो ठंडी हो सके और आग लगने के खतरे से आप खुद को बचा पाएं। सही तापमान पर एसी को चलाएं। बिजली के उतार चढ़ाव से बचने के लिए स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना सुरक्षित रहता है। साथ ही साथ हर 15 से 20 दिन में एसी के फिल्टर को साफ करें। गंदे फिल्टर से कूलिंग कम होती है और बिजली की खपत भी बढ़ती है। और जब एसी के अंदर गंदगी बढ़ जाती है तो हवा का आवागमन कम हो जाता है, जिससे अंदर की जो मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। इससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता है। तो साथ ही साथ अपने एसी की जो सर्विसिंग है वो समय समय पर कराते रहें, और इन सभी सावधानियों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एसी से होने वाली दुर्घटनाओं से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: श्रोताओं, योग बच्चों और बड़ों दोनों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक अद्भुत तरीका है। ये लचीलापन बढ़ाता है, तनाव कम करता है और संपूर्ण जीवन शैली में सुधार करता है। योग और प्राणायाम बच्चों का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में मदद मिलती है। आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में यह बच्चों की भावनाओं को नियंत्रित करना और शांत रहना सिखाता है। योग से शरीर लचीला और मजबूत बनता है, मांसपेशियों और हड्डियों का सही विकास होता है। गैर प्रतिस्पर्धी गतिविधि होने के कारण यह बच्चों में आत्मसम्मान और जागरूकता बढ़ाता है। नियमित अभ्यास कोर्टिसोल का स्तर कम करता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। योग रक्त प्रवाह में सुधार करता है, हृदय स्वस्थ रहता है और रक्तचाप नियंत्रित होता है। यह जोड़ों को मजबूत बनाता है और उम्र के साथ होने वाले दर्द से राहत दिलाता है। अनिद्रा की समस्या दूर होती है और गहरी गुणवत्तापूर्ण नींद आती है। क्योंकि योग के इतने सारे फायदे हैं और हम सभी के लिए योग करना बहुत आवश्यक होता है, 21 जून को इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए योग दिवस मनाया जाता है। अपनी उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार आसन करने चाहिए और बच्चों को खेल खेल में योग सिखाना चाहिए। योग जो भी करता है उसके शरीर को बेहतर फायदा ही मिलता है, इसलिए योग करना अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया जाए तो हमारे शरीर को इससे बहुत फायदा मिलेगा।

0: मालूम नहीं है।
1: हमसे सुनो,
2: और श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है।
1: उपन्यासकार गीतांजलि श्रीखा भी जन्मदिन है। हिंदी की वो ऐसी पहली लेखिका हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए।

0: जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
2: अब सिर्फ एक MOU से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
2: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
4: We signed this year a free trade agreement with Europe.
5: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और

0: रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
3: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
2: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
0: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. U.S. President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
6: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over Rs. 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
5: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilized for the nation.
7: In the area, we see immense potential of hydrocarbon. At the initiative of Union Home Ministry, particularly at the initiative of Honorable Union Home Minister, both Assam and Nagaland is joining hands to share the proceeds of this hydrocarbon potential in terms of royalty and facilitate its extraction so that nation at large can be benefited.
5: Nagaland Chief Minister Nephew Ryu has also termed the signing of the tripartite MOU for mineral oil operations in the Assam-Nagaland boundary areas as a historic milestone. We have more from our correspondent in Kohima.
8: Expressing gratitude to the central government, Mr. Ryu said its commitment to peace, stability and development in the Northeast had made the agreement possible. He also thanked Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and the government of Assam for their cooperation and goodwill. Mr. Ryu said the MOU reflects the maturity of relations between Nagaland and Assam and their shared commitment to regional development. He noted that while unresolved border issues had hindered resource development for decades, the MOU provides a framework that will benefit both present and future generations. Mr. Ryo said the agreement will unlock the economic potential of sectors A to F along the Assam-Nagaland border, enhancing economic activity, resource management, interstate cooperation, and creating new opportunities for the people. Mary Mayase, Akashvani News, Kohima.
5: The center has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Center under the Ministry of Home Affairs, cybercriminals are increasingly using AI to create realistic deepfake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. More from our correspondent.
9: The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms, or phone calls. They collect facial data of victims, sometimes by convincing them to perform simple actions such as blinking, turning their head, or speaking on camera. The government has advised financial institutions, including fintech companies, to strengthen deepfake detection mechanisms and enhance customer onboarding systems. The individuals have also been urged to secure their biometric data. Remain alert to suspicious login attempts and regularly monitor email or SMS notifications related to financial activities. Citizens are also advised to report any suspicious financial transactions immediately through the National Cybercrime Reporting Portal. With Dipendra Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
5: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has stressed the need for resilient and diversified supply chains, sustained diplomatic efforts and greater international cooperation to deal with the fallout of ongoing conflicts. Participating in a discussion on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland, Dr. Jayashankar said, "The impact of the conflicts extend far beyond the regions where they occur." He said there is broad agreement that the international community must continue efforts to mitigate the consequences of conflicts and create conditions conducive to diplomacy. On energy security, Dr. Jayashankar reiterated that India's energy choices are guided by national interest and that purchases are made on considerations of affordability and availability.
10: Today, our largest oil supplier, little less than 40%, is Russia. Our largest gas supply is the United States. And that was not the case till the 28th of February of this year. The main supplier was Qatar. So what is happening is the world is also de-risking on the region. People are looking for alternative energy sources and saying, okay, I'm prepared to buy at longer distance, maybe at a higher cost, but there is a greater security about it, predictability about it. So what I see in a way is that the global energy scenario will fundamentally change after this.
5: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, Barah Saal, Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards positioning India as a global leader through its foreign policy. A report.
2: Over the last 12 years, India emerged as a formidable global leader driven by bold initiatives that fuse ambition with action. Prime Minister Narendra Modi's leadership has anchored these efforts in responsibility and inclusivity, ensuring India's voice resonates across global platforms. India strengthened its old relationship while making new friends, infusing fresh energy into India's foreign policy while keeping the principle of India First supreme. Humanitarian assistance and disaster relief operations are a vital part of India's global engagement. Cyclone Dithwa made landfall on the eastern coast of Sri Lanka in November 2025, leaving hundreds dead, thousands displaced, and critical infrastructure damaged. Standing in solidarity with the people of Sri Lanka, India launched Operation Sagar Bandhu to provide immediate humanitarian assistance and disaster relief to Sri Lanka. The effort brought together the Indian Navy, Air Force, Army, and Disaster Response Team in a coordinated rescue and relief operation. India provided comprehensive support to Sri Lanka, including immediate relief supplies, medical aid, search and rescue assistance, and restoration of damaged infrastructure. Thanking the Indian government, Sri Lanka's Deputy Minister for Ports and Civil Aviation Jinit Ruwan Kodithuwakku stated that India had shown immense warmth and solidarity toward the people of Sri Lanka.
11: We are very thankful to India because since the day this Dithwa happened, opened their warm heart to us and we really appreciate their help. We are very good friend of India and we would like to extend our thanks to Indian government and the Indian people on behalf of Sri Lankan government and the Sri Lankan people.
2: The major highlight of India's foreign policy came during the COVID-19 crisis. India launched the Vaccine Maitri initiative as a testament to its human-centric diplomacy. Since January 2021, India has supplied over 30.12 crore vaccine doses to 99 countries and 2 UN bodies. This included 1.51 crore doses gifted to over 50 nations and 5.2 crore doses through COVAX mechanism. Talking to Akashvani News, Dr. Jyotishko Biswas, a physiotherapist and yoga teacher based in Bangladesh, said that the rapid dispatch of the vaccines from India was a profound gesture of goodwill.
3: India jo kiya hamare liye vaccine.
12: At that time, India made a fast response and sent the vaccine to us. I also took that vaccine. It was very good for us, our relatives and all the countrymen. It was a very nice gift from India to the world. So for this, we are very grateful. Best wishes to the Indian government and the people. Many, many thanks to India.
3: India government and people ke liye bahut bahut dhanyawad.
2: In the last 12 years, India has stepped up as a global leader through impactful initiatives like Vaccine Maitri and Operation Sagar Bandhu that blend vision with execution. Its commitment to humanitarian aid and regional partnership is anchored in the civilization ethos of Vasudev Kutumbakam. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
5: U.S. President Donald Trump has called off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. The move comes hours after he threatened to escalate the war by seizing control of Iran's oil industry. In a social media post, Mr. Trump credited progress in discussions with high-level Iranian leadership as cause for the sudden change. He also suggested that progress has been made in talks to extend the fragile ceasefire. President Trump also said that a deal to end the war with Iran is nearly complete and is expected to be signed over the weekend in Europe. He made these remarks at the Oval Office in the White House yesterday. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston in Birmingham. The month-long tournament will be hosted across England and Wales with the finals set to take place on the 5th of July at the iconic Lord's Cricket Ground. India will start their campaign against arch-rivals Pakistan on Sunday. Harmanpreet Kaur-led Indian side will be looking to create history as they aim for their first Women's T20 World Cup title. The FIFA World Cup 2026 kicked off in Mexico City after a grand opening ceremony last night. Co-host Mexico defeated South Africa by 2-0 in the inaugural match at the Azteca Stadium. Julian Quiñones scored Mexico's opening goal in the 9th minute to give the hosts a lead. Later, Raul Jimenez scored in the 67th minute, making it 2-0 for Mexico. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
13: Thank you, Sunil. In a landmark judgment, the Supreme Court of India's call homemakers nation builders and quantified their monthly care at 30,000 rupees, reports the Tribune. Union Home Minister Amit Shah has been quoted in the Pioneer as saying that the Armed Forces Special Powers Act will be withdrawn from the entire Northeast next year, barring one or two states. In its editorial piece titled Green Energy Can't Yet Bend Climate Curve, the Indian Express argues that despite record growth in renewable energy, the world is still failing to slow global warming because major sectors remain dependent on fossil fuels. The paper says the clean energy transition must be accompanied by deeper industrial change, stronger policy support, technological innovation and international cooperation. Anthropic CEO Dario Amodei has sought serious and binding artificial intelligence rules and called for mandatory testing and government powers to block risky systems, reports Financial Express. And finally, the Asian Age has quoted U.S. agency NOAA as confirming that the weather phenomenon El Nino has begun and will intensify into the end of the year, potentially to historic strength. And with that, it's back to you, Sunil.
5: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jaishankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
14: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत में आज कलाकार हैं बलवीर सिंह नागर और कृष्णदत्त शर्मा। कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं बलवीर सिंह नागर को।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

इसी के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। लोक संगीत कार्यक्रम में कलाकार थे बलवीर सिंह नागर और कृष्णदत्त शर्मा। हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं और अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम एक रंग। एक रंग कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अनीता पराशर। तो श्रोताओं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी के मौसम में हर जगह अब यही सुनने को मिल रहा है कि गर्मी बहुत बढ़ गई है। इसी विषय पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। तो पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये खूबसूरत सा गीत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: श्रोताओ, बात हो रही है गर्मी के मौसम की और गर्मी के मौसम में बच्चों की छुट्टियां भी हुई हैं, तो बच्चों की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए और गर्मी के मौसम से में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। गर्मी के मौसम में बच्चों को या किसी को भी, बड़ों को भी डिहाइड्रेशन, लू, हीट स्ट्रोक, त्वचा पर रैशेज, फूड पॉइजनिंग या पेट से जुड़े संक्रमण सबसे आम समस्याएं हैं जो गर्मी के मौसम में हो जाती हैं। इसका कारण होता है बढ़ता हुआ तापमान और धूप के कारण शरीर में पानी और इलेक्ट्रोल्स की कमी हो जाती है, जिससे बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने आप को हाइड्रेट रखना गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, खुद को हाइड्रेट रखते हैं, गर्मी से बचने के उपाय थोड़े बहुत खुद करते हैं, तो हम गर्मी के मौसम में होने वाली इन समस्याओं से खुद को बचा सकते हैं।

0: जी हाँ श्रोताओं, बारिश से बचने के लिए बारिश का होना भी बहुत ज़रूरी है, और बारिश हो प्राकृतिक रूप से बारिश लाने और जलवायु को संतुलित रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेड़ पौधों को लगाना और उनकी देखभाल करना, क्योंकि पेड़ पौधे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे ज़मीन से पानी सोखकर वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में जलवाष्प छोड़ते हैं, जिससे बादल बनते हैं। मशरूम के बीजाणु जैसे सूक्ष्म अपघटक भी हवा में फैलकर बादलों को पानी की बूंदों में बदलने में मदद करते हैं। और बारिश के लिए वेदों में वरुण सूक्तम जैसे मंत्रों के उच्चारण और यज्ञ का विधान है। और साथ ही साथ यदि हम वैज्ञानिक तरीके की बात करें तो आजकल क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन, इसे कृत्रिम वर्षा भी कहा जाता है, ये कैसे काम करता है? इसमें विमान या ड्रोन के जरिए बादलों पर सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सूखे नमक का छिड़काव किया जाता है। ये केमिकल बादलों में मौजूद नमी को संघनित करके पानी की बूंदों में बदल देते हैं, जिससे बारिश होती है। यह तकनीक तभी काम करती है जब आकाश में पहले से पर्याप्त नमी वाले बादल मौजूद हों।
1: ठंडे ठंडे पानी।

0: कुर्सियों से, झांके न खिड़कियों से,
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया।
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

श्रोताओं, गर्मी के मौसम में ही होती है गर्मी की छुट्टियां, और गर्मी की छुट्टियों का मज़ा अगर पूरा लेना है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं कि गर्मी के मौसम में छुट्टियों में बच्चों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन छुट्टियों में ही घूमना फिरना भी होता है। बच्चे दादी नानी के यहाँ, मामा के यहाँ जाते हैं, और जब बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो उन सभी का ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इकट्ठे होने के बाद बच्चों की फरमाइशें भी बहुत बढ़ जाती हैं। तो जितना हो सके बच्चों को बाहर का खाना खाने से बचाएं, पर्याप्त मात्रा में उन्हें पानी पिलाएं, घर के बने जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं उन्हें वही बनाकर पिलाएं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। बाहर जो बाज़ार में हमें पेय पदार्थ मिलते हैं वो थोड़ी देर के लिए हमारे शरीर को ठंडक और हमारी जीभ को स्वाद दे सकते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर को किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं देते। तो जो घर में बने शीतल पेय पदार्थ होते हैं उन्हें अगर बच्चों को पिलाया जाए तो बच्चे गर्मी के मौसम का, गर्मी की छुट्टियों का पूरा मज़ा ले पाएंगे। और अभी इस बारे में हम आपसे और बातें करेंगे, पहले सुनते हैं ये गीत।

और श्रोताओ, गर्मी का मौसम है और बातें हो रही हैं बच्चों की, तो बच्चों को गर्मी के मौसम में लू से बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि खेलने कूदने से बच्चे रहते नहीं हैं और उन्हें रोकना भी नहीं चाहिए। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादा तेज़ धूप में बच्चे बाहर निकलने की कोशिश ना करें, और शाम के समय बाहर निकलें, हल्के सूती कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, जिससे गर्मी के मौसम में गर्मी कम लगती है, और साथ ही साथ उन्हें खेल कूद के साथ साथ उनके खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मौसमी फल, ताज़ा हरी सब्जियां और ये सब अगर उन्हें खिलाएंगे तो वो गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाएंगे और गर्मी की छुट्टियों का भरपूर मज़ा ले पाएंगे। और उनकी दिनचर्या को सुधारने का भी काम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में अक्सर बच्चों की दिनचर्या, जीवन शैली थोड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि बच्चे समय पर ना सोते हैं, फिर ना समय पर उठते हैं, और जब इस तरह का रूटीन उनका बन जाता है तो जब स्कूल जाने का समय आता है तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

0: ठहरा बेबी।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो श्रोताओं, बच्चों की छुट्टियां हैं और बच्चों की छुट्टियों में हम बच्चों को पर्यावरण से कैसे जोड़ सकते हैं, उन्हें फ़ायदे और नुकसान बताएं पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखने की, और अगर पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान पहुंचेगा, ये सब बातें हम बच्चों को बता सकते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर दैनिक जीवन में बच्चे छोटे छोटे बदलाव करके बड़ा योगदान दे सकते हैं। ये बात अगर हम इन छुट्टियों के दौरान उन्हें समझाएं तो छुट्टियों के सही उपयोग में ये एक बात जुड़ जाएगी, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता, क्योंकि उन्हें होमवर्क भी करना होता है, अपनी और जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी करनी होती हैं। लेकिन छुट्टियों का समय ऐसा समय होता है जिसमें बच्चों के पास समय होता है नई नई चीज़ें सीखने का, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेने का, अपनी जो ऐतिहासिक जगह हैं वहाँ पर घूमने फिरने का और उनके बारे में भी ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त करने का। तो पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण से हम बच्चों को जोड़ सकते हैं। उन्हें बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं घर में छुट्टियों के समय में, और जब बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं जब हम उस समय जब हम उन्हें कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे को देख कर बच्चों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। तो समय निकालकर बच्चों को लेकर जाइए किसी खाली जगह पर, एक बड़े से पार्क में, वहाँ पर उनको साफ़ सफाई करने रखने के लिए और करने के लिए जागरूक कीजिए। वहाँ पर जो भी कूड़ा कचरा हो

हुआ देखें या देखें कि उससे हमारे पर्यावरण को, हमारी धरती को नुकसान पहुंच रहा है, तो उस प्लास्टिक का उसे सही तरीके से निवारण करने के लिए उन्हें सिखाया जाए, और बिजली की बचत के लिए उन्हें सिखाया जाए, पानी के संरक्षण के लिए उन्हें अगर हम सिखाएं, तो बहुत सारी चीज़ों में बच्चे अपना योगदान दे सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें इन सभी चीज़ों के फायदे और नुकसान के बारे में साथ साथ समझाया जाए।

ए बिच्छू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाऊं।

तो श्रोताओं, बच्चों की गर्मी की छुट्टियों को यादगार और सार्थक बनाने के लिए उनके साथ हर दिन कुछ नया करें, क्रिएटिव हॉबी सीखें। जब बच्चे अपना कोई अपनी किसी हॉबी पर काम कर रहे होते हैं, तो अगर उसमें माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग रुचि लेने लग जाएं, तो वो बच्चों के लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। किचन गार्डनिंग, पिकनिक या फैमिली कैंपिंग जैसे जैसी चीज़ें करें। ऐसा करने से आप सबसे ज़्यादा जो बचा पाएंगे अपने बच्चों को, वो स्क्रीन टाइम से बचा पाएंगे, क्योंकि बच्चे फ़ोन या लैपटॉप या टीवी तभी ज़्यादा देखते हैं जब उन्हें भरपूर समय नहीं मिलता। और अगर हम बच्चों को समय देते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, तो बच्चों को हम मोबाइल फ़ोन की आदत से भी दूर कर पाते हैं, उनकी ये आदत छुड़वा सकते हैं। और साथ ही साथ अपने घर पर ही बच्चों से छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे पौधे लगवाएं, और उनका ध्यान रखने के लिए उन्हें प्रेरित करें। जब बच्चों के लगाए हुए पौधों पर फूल आते हैं, तो बच्चों का मन भी फूल जैसा खिल उठता है। उन्हें बहुत खुशी मिलती है जब उनकी मेहनत उन्हें सफल होती दिखाई देती है। और साथ ही साथ घर में पड़ी जो बेकार चीज़ें होती हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं होता, उनसे कुछ उपयोगी चीज़ें बनाने में उन्हें व्यस्त रखें। और रोज़ कुछ ना कुछ नया काम उन्हें करने के लिए कहें। कभी कभी कुकिंग में भी आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। आप बच्चों को किचन में अपने साथ खड़ा करें, उनसे रसोई के घर के छोटे छोटे काम करवाएं, और घर पर ही छोटे छोटे वैज्ञानिक प्रयोग उनसे करवाना शुरू करें, जिससे बच्चों की जानकारी बढ़ेगी, उन्हें चीज़ों को जानने में उनकी रुचि बढ़ेगी, और वो फ़ोन को छोड़ देंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि बच्चे छुट्टियों में जो जो काम करते हैं, उन्हें तारीख और दिन के साथ अपनी एक डायरी में नोट करें, जिससे उनकी एक छुट्टियों की यादगार डायरी बन जाए। जब वो उन्हें उस डायरी को बाद में पढ़ेंगे, तो उन्हें बहुत खुशी होगी कि उन्होंने जीवन में कभी ये छोटे छोटे काम किए थे, और वो आगे अपने छोटे भाई बहनों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। आप बच्चों को घुमाने ले जा सकते हैं। अक्सर हम बच्चों को पिकनिक लेकर जाते हैं, दूसरी जगहों पर लेकर जाते हैं, लेकिन हम सभी का कोई ना कोई गांव, कोई पुरानी जगह जहां हमारा बचपन बीता होता है, वो जगह तो ज़रूर होती है। वहां अगर आप बच्चों को घुमाने लेकर जाते हैं और वहां से जुड़ी बातें उन्हें बताते हैं, तो वो भी बच्चों की छुट्टियों की

ये डायरी में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो अपनी मिट्टी की खुशबू बच्चों को पता होनी चाहिए, जहाँ उनकी जड़ें हैं, जहाँ से आप लोग आए हैं, तो उस जगह के बारे में भी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप किसी गांव से संबंध रखते हैं तो वहाँ पर भी एक बार आप बच्चों को ज़रूर लेकर जाएं। गांव का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। पहले और समय था, अब समय बदल चुका है, गांव की ज़िंदगी भी थोड़ी सी बदल चुकी है, लेकिन शहर की और गांव की तुलना में अब भी वहाँ पर ज़्यादा हरियाली, ट्यूबवेल और ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों को देखने को मिलेंगी जो उन्होंने शायद केवल अपनी किताबों में, तस्वीरों में ही देखी होंगी। तो अगर वो वहाँ जाकर उनका नज़ारा लेते हैं तो इससे भी उनकी जानकारी बढ़ेगी।

और श्रोताओं, जब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। बड़े बुज़ुर्गों के साथ बच्चे समय बिताते हैं और बहुत अच्छा भी है जब बच्चे दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ समय बिताते हैं, उनसे कहानियाँ सुनते हैं, उनके जीवन से जुड़ी बातें सुनते हैं। और बच्चे अक्सर पूछते हैं कि दादा दादी बचपन में कौन से खेल खेला करते थे। इस तरह की बातें जब बच्चे अपने दादा दादी के साथ करते हैं, उनसे जुड़े अनुभवों को जानते हैं और फिर अपनी राय उसमें रखते हैं कि आपने अपने बचपन में ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। लेकिन कई बार जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बच्चों के सवालों से, उनकी हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनसे नाराज़ हो जाते हैं और फिर वो भी बच्चों को बर्दाश्त नहीं होता जब बच्चे देखते हैं कि उनके दादा दादी या नाना नानी अब उनकी शरारतों से तंग आ चुके हैं और उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे उन्हें मनाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं, अपने दादा दादी की पसंदीदा चीज़ें उनके लिए लेकर आते हैं, या कभी कभी लाड में, प्यार में हाथ पैर दबाते हैं। वो नज़ारा जब हम देखते हैं तो मन को बहुत ही खुशी मिलती है।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का एक रंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 10 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद आप सुनेंगे समाचार। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू की उपस्थिति में ये पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज

आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनीतिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बने राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IAM में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि तड़के करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ओने आईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:22 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा के प्रसारण अब शुरू होते हैं। आरंभ में प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
3: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
3: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है। और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
3: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
4: हर पल चलती जाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
4: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
4: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
4: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
4: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
4: घर को खूब सजाती चींटी,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
4: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
4: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
4: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
4: काम बड़े करके दिखलाती,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
4: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
4: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: हमको यही सिखाती चींटी,
4: हमको यही सिखाती चींटी।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांवों की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम। ये प्रसारण आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से सुना गया।

ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल वक्त हिंदी समाचारों का है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी ज़रूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में समावेशन परिदृश्य बदल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले शासन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और अलग अलग क्षेत्रों में सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के और पूरे देश में परिदृश्य बदल रहा है। शिक्षा उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने
1: हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
0: उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से मदद कर रही है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयास सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर आधारित हैं, जिससे ऐसा माहौल बनाने में मदद मिली है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकें तथा राष्ट्र निर्माण में और मजबूती से योगदान दे सकें। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में भारत की नारी शक्ति को अपनी पहचान बनाते हुए देखकर खुशी जाहिर की। संस्कृत का एक श्लोक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी असाधारण प्रतिभा और कौशल से भारत माता का गौरव बढ़ा रही हैं। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने की प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से ये भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। सरकार ने कुछ इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27

0: प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में हरियाणा के विकास से जुड़े कई मांगें रखी। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हरियाणा को उसकी महत्वाकांक्षी औद्योगिक विकास योजना के तहत विकसित किए जाने वाले पहले 50 औद्योगिक पार्कों में शामिल किया जाए। उन्होंने हरियाणा को सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने और AI वैश्विक क्षमता केंद्र के विकास के लिए एक विशेष केंद्रीय पैकेज देने का अनुरोध किया। उन्होंने औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, सेक्टर विशिष्ट औद्योगिक पार्कों, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की भी मांग की। उन्होंने राष्ट्रीय नवाचार एवं अनुसंधान फंड के तहत हरियाणा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप अपना विजन दस्तावेज 2047 तैयार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध।

0: किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में गाया स्वर्ग नर्क फिल्म का ये गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था राजेश रोशन का। पसंद आप सभी की। आप हैं मेरठ छावनी से दिग्दर्शन कविता गौड़, भिवानी से सुशील सोनी, पवन, कमल, साहिल, प्रेमलता, ओम प्रकाश सोनी, कलाना भाद्रा, हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक, मंजू भाटिया, यमुनानगर से विनोद नैन, रघुनाथपुरा, श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, चरखी दादरी से जगनेश सांगवान, फ्रांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद, पुष्पेंद्र डूडी, भिवानी से जितेंद्र खेड़ा, बगबुड़ुआ, पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, गाँव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास, रोशनी, शगुन बारासा, हरगोविंद नगर नवाशहर से सुरेंद्र संधु, अनीता रोहित, रितेश, शिखा संधु, प्रीतिशा मैक्स, धाड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, बड़वाहा खरगोन से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

ये था किशोर कुमार का गाया खानदान फिल्म का गीत, नक्श रायपुरी के बोल थे, संगीत खय्याम का था। पसंद आप सभी की थी। आप हैं चांडूर बिस्वा, बुलढाणा से नारायण भाव, खड़ से रक्षाताई, पुणे से पंकज बाड़ोदे, आर्या आदि, शैलेश, सोनम, धनुषपुरी, बीटी बाड़ोदे, जरूड़ वरुड़, महाराष्ट्र से बाबा साहेब, मीनाक्षी चरपे, चंद्र प्रभा बाड़ोदे, रजनी कानीरे, कार्तिक युवराज, वरुण जवुलका से महेंद्र सरकरे, विजया मिलिंद सरकरे, निमुल्तानगर नई दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित सुरभि, अनीता खुराना, राजीव ढींगरा, कन्हैया लाल, शेरगढ़ मलौट से बलराज राम कालवा, भोला राम लक्ष्मी, कुदरत मनप्रीत कालवा, मेवा सिंह हरप्रीत, शिवराज मान, पिरदा कोरासी से रोहित साहू, हरीश कुमार, पुष्पलता, राधा साहू, बागपत से एहसान अली, दिल्ली से डॉक्टर सोनम अदीबा, बक्सर से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, राज अंसारी, आसमा खातून, गुलफराज भागलपुरी, और डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और आसमा नास। कार्यक्रम का अगला गीत हीरालाल पन्नालाल फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें आप सुनेंगे। आर डी बर्मन का संगीत है, गीत है मजरूह सुल्तानपुरी का। पसंद आप सभी की। आप है खंडुआ से मिजे महोबिया, कविता विशाल, विवेक सोनू, मोनू रानू, अनय अनाया, सपना शिवी सलोनी, साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मेहता, महोबा से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न गौरव, मनीगाछी जतू कपाट से विजय लाली, साफी आलम मिस्त्री, मोहम्मद वकील राही, फिरोज नाज, प्रवीण शबाना, रिजवान हिना, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन गायत्री, ढोमड़े वैष्णवी, चंचल अर्जुन गवनेकर, धीरज असब वसेरे, कापशी अकोला महाराष्ट्र से संतोष बाकड़े, ज्योतिताई, पवन कुमार, कैलाश राव, वंदना ताई बाकड़े, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दकी, नजमा बेगम, मोहम्मद रेहान, शमरीन रियाज, रिफाकत, माहिरा नूर, पत्रुड़ा अनूपगढ़ से मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, इंदु, सुनील, इंदौर से वंदना, गणेश, कार्तिक, परी, संजना, मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग, ललिता और नारायण। आप सभी के अनुरोध पर हीरालाल पन्नालाल फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें आप सुनेंगे। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हीरा लाल पन्ना लाल फिल्म का ये गीत था। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत सुनवाते हैं आपको, पसंद करता हैं आप सभी, कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा प्रियंका, पूजा लीलू, रितु सिंह, ऋषभ सिंह, तोरनाला वाशिम से सुखदेव राउत, सच्चा खेड़ा से वेद बिहारी, मटोर से रामदिया नीलम, अजय विजय, तमन्ना पायल, रामपाल धर्मवीर, डोंडी लुहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, आरती तुषार डोली, पूजा प्रभा देवी, बन भगेरा राजनाथ गांव से योगेश सारवा, आशा नीरज, नीलेश अंजलि सारवा, जाखुद से शंभुदयाल खटक, बिमला अमरजीत खटक, सुंदरलाल योगेश, दीपक पूजा, कोंडागांव से सुभाष चक्रधारी, कविता मुस्कान, अनुष्का चक्रधारी, शालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेहरुजुद्दीन, केसरदीन नजमुद्दीन, भिलाई से आप हैं रोहित और इनके साथी, बगबुड़ुआ पथरिया से प्रोणिका प्रोणामिका, उत्कर्ष नेताम, राजिम से अनिल अंजुलता आदित्य कृष, अमरपुर पेंडरा से दीपक रोशन वंशीलाल, रेखा श्रीवास्तव, श्वेता देवी सुरुचि, दिशा लंबी श्रीवास्तव, केलंगा से सुंदरपाल कौशिक, अभिनेशु देबू परुई परी पीहू और पाकी कौशिक, नैबारा भिराई से बसंत सूर्यवंशी, सरोज ईश्वरराज, चंद्रकांत प्राची, टीयूषी सूर्यवंशी। आप सभी की पसंद पर दो दिलों की दास्तान फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं, अनजान ने लिखा है, अमित कुमार।

चलिए बात बन ही गई। दूसरा आदमी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार और पामेला चोपड़ा की आवाज़ें थी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था राजेश रोशन का। इससे पहले आपने दो दिलों की दास्तान फिल्म का गीत अमित कुमार और साथियों की आवाज़ों में सुना था। तो उस फिल्म के गीत की तो फरमाइश हमने आपको बता ही दी थी कि हमारे किन किन श्रोता साथियों ने उस गीत को सुनना चाहा था। इस गीत के लिए जो फरमाइश हमें मिली थी वो ये हैं, धामणी मनोरा वाशिम से तुलसीराम डेरे, माया संदेश आदेश किरण, प्रज्वल अनुत डेरे, शब्बीर भाई, चंद्रकांत पाटिल, अमोल दादुल्या, मायावती डेरे, गुलशन नितिन खाड़े, किशन वायले, आकाश ढोले, ध्रुव गिरी, ज्योति तेजस, प्रणीता मंगेश पाटिल, अरुण कोहले, परमेश्वर टेकाले, बाला खाड़े। गुंडी मनोरा वाशिम से वच्छला बाई खिराड़े, चंदाबाई नगराले, सोमठाणा मानोरा से विशाल, ललिता पायल, आरुष कवाणे, तुलसीराम कवाणे, तुकाई राम, नीलू राउत, शेखर सोनोने, पीयूष कवाणे, रहमानिया मानोरा से संजीदा बानो खान, साइमा खान, बुशरा शब्बीर, गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी।

अगला गीत हादसा फिल्म से आपको सुनवाएंगे, किशोर कुमार ने गाया है, एम जी हशमत के बोल हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। अनुरोध आप सभी का, आप हैं बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, हिसार से राजेंद्र सैनी, राहुल सैनी, अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा आलिया, शोएब खान, मुस्तफा, रऊफ भाई, शाहिद, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, फतेहाबाद से बिट्टू मोहरवाला, गगन, युवराज, भूविक, भड़भूंजी आगर से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, दुर्गा, श्याम बाबू, भावना, मधुबाला, विनल, उमंग, आयुष, ओम प्रकाश, चटडोंगड़ी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, चरखी दात्री के श्रोता का नाम तो हम ले चुके हैं, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप जगमोहन, प्रतिभा, ईशप्रीत शर्मा, सोनिया कालका, विपाशा शर्मा, नरेंद्र तनेजा, मीनाक्षी तिवारी, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ, प्रेमलता और सुनीता शर्मा, लोहारू से बिल्लू चिंडालिया, लक्ष्मी, सुरेंद्र बरखा, योगेंद्र और नरेंद्र। आप सभी के लिए हादसा फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं, गाया है किशोर कुमार ने।

ये था हादसा फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज़ थी, एमजी हशमत के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत सुनवा रहे हैं अपने इन सुनने वालों की पसंद का। आप हैं कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत जाधव, संचित, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद सानवी। खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। बागपत से संचय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया। सनावत से किशोर सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, चारुवी, प्रणव सांवले। दत्रिंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा। साल्याखेड़ी मालवा आगर से सोनू विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा। करनाल से जो हमारे श्रोता हैं उनका नाम हम बता चुके हैं पहले गीत में। पत्र काफ़ी संख्या में हमारे सुनने वाले लिखते हैं तो घूम फिर के बार बार हाथ में आते हैं। वाशिम महाराष्ट्र से ऋचा वसमतकर, सोनाली, संगीता पांडे, अश्विनी कुलकर्णी, कल्पना, सुनीता पांडे। मालती कंझरकर, संगीता, उषा रेंघाटे, छाया बोरकर, तृप्ति श्रृंगारे, विशाखा आमले, माधुरी जोशी, सोनू, जीतू। हमारे श्रोता परिवार में नए हमारे ये श्रोता हैं। छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूलवाले, दुखना रानी, सदफ आरजू, जूही इकबाल, आमना नसरीन, इमरान अहमद, नरेशा अहमद, जूही इकबाल। समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता। कर्णपुरा नई दिल्ली से कविता गौरव, मानसी, अनिल मदान। मोहला से राजकुमार ढोचक, गीता मनसानिया, सुभाष, उषा, राहुल, रोहित, जोगेंद्र, दर्शना, इंदु, यक्षित। फुलचिंचोली पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया, सुभान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी, बानू बी मुलानी, बादशाह मुलानी। और आप हैं शेरड़ा हनुमानगढ़ से मंटू शर्मा, सोनू शर्मा, सुशीला, लीलाधर शर्मा। वारणा शाहपुर कोल्हापुर से विजय चौहान, इंदोरकर, तेजस्वनी चौहान, माई इंदोरकर, शौर्या, श्रेयस, अंकिता, अनिकेत चौहान। कैथल से मधु नायक, पहाड़गंज से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक। आप सभी की पसंद पर इनकार फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें आप सुनेंगे। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत है राजेश रोशन का। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

इनकार फिल्म का गीत आपने किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था राजेश रोशन का। अगला गीत सुनिए, पसंद हमारे इन सुनने वालों की है। खेड़ावाड़ी हिंगोली से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान, सारिका सुरेखा, आर वी तन्नवी, वाकोडी कलमनूरी से उत्तम जमधाड़े, स्वरा आत्माराम आसोले, ललिता आसोले, रोहतक से महेंद्र शाह, हरिंद्र शाह, जितेंद्र, मानसी, ज्योति बत्रा, वंशिका बत्रा, हिमांशु, कार्तिक शाह, गौतम शाह, मलोट कैंप से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, निवान, लखविंदर संधु, महावीर, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी, जगराओं से सुनील पाठक, कमल सुच्चा पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष गव्या, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश साहू, रामवर से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, विनोद लखनपाल, बालूद से बसंत कुमार, बलियाली से दर्शनलाल बंसल, गर्विश, तमन्ना बंसल। और ये अगला खत है

धनबाद झारखंड से अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह, समृद्धि का, झाझा से संजीव कुमार, पूजा रवि, आरती सिंह, पटना से भुवनेश्वर मोनू लीलू, गांव 34 एसटीजी पीली बंगा राजस्थान से अमन मेहरा, समर, ऋतु मेहरा, बिशनलाल मेहरा, करनपुर से शिव कुमार सेठी, सुनीता, कमल, ज्योति, शब्द सेठी, बाणी, राजू, और कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओंकार, साई गायकवाड़, नरवेल येथुन से पुंजा जी नहावकर, विशाल नहावकर, आप सभी के लिए गोलमाल फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार की आवाज़ है, गुलजार के बोल हैं, संगीत है आरटी बर्मन का। लीजिए सुनिए, यह है आज के आपके अनुरोध पर कार्यक्रम का आखिरी गाना।

0: Bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaswal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
3: काफ़ी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज़्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर ला के हम एक मंच पर हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24,00,000 रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
5: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने अशोक भाई की राम राम। भाइयों, आज शुक्रवार है, आपने एक बात और बता दें कि अब 3 बजे हमारा फोन इन प्रोग्राम है पशुपालन संबंधी, और भाइयों से ये अपील है कि वह अपना फ़ोन करके ना जो भी समस्या है उसका समाधान करवा लें। ठीक 3 बजे आपके का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और बात है भाइयों अपने प्रोग्राम की, तो इसमें बात ये हमने ध्यान रखना है कि तो अब तो चलो एक दो दिन से थोड़ा हर ठंड सी हुई है या बूंदाबांदी भी हुई है, और कई जगह है मतलब है क्या आंधी से वृक्ष भी टूटे हैं, कई जगह खंभे भी टूटे, तो ये चीज़ों का मतलब हमने वह क्योंकि ये प्रकृति है, वह प्रकृति के साथ हमने चलना है इस तरह, और ये चीज़ें तो होती रहती हैं। हाँ, बाकी किसान भाई ने अपना खेती का पूरा ध्यान रखना है भाई, चाहे गर्मी सर्दी बरसात जो भी मौसम हमने उसमें सारे में अपना ध्यान तो पूरा रखना है। ये जो खरीफ की फसलें हमारी उनकी बुआई का काम चल रहा है, तो क्यों ना अपना ये देखा जाए, जिस तरह बताया था भाई, खास करें जो धान की जो पौध एक बात है उसने नर्सरी लगाने लग रहे हैं उसमें ये देखें, एक तो अपना ये देख लें कि वह जो सही समय की है वो लें, या मध्यम की है या पछेत की है, जो अपना उसके पूछ के लें, और आपने कौन से खेत में किस तरह लगाए जा सके। फिर दूसरी बात ये है कि उसकी पैदावार की, यानी उस जो किस्म आप ले रहे हो उस किस्म की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपने, क्योंकि उसमें बीमारियाँ इसके बीज का उपचार करोगे वो बढ़िया रहेगा ना, तो फिर बाद में आपने मान लिया उसमें बैड भी करनी पड़ेगी, खेत में जा करनी पड़ेगी, उसकी बजाय आप बीज का उपचार कर लेंगे वो सबसे बढ़िया है। और बीज का जिस तरह बताया था, पहली बात तो यही है, तो आप अगर मान लिया उससे लेते हो बाजार से लेते हो तो उसमें तो और भी बढ़िया है, क्योंकि उसका बीज का उपचार होया आया होगा। अगर आपका अपने घर का है, घर के में ये ध्यान रखें कि भाई 1 किलो नमक लें उसमें 10 किलो पानी में उसने मिला कर लें, और अपना जो बीज है वो उसमें रख लें। अच्छा, कई बार उसने हिलावा डलावा जो सूखा बीज होगा या जो खरपतवार होंगे वो उसमें ऊपर आ जाएंगे और बाकी नीचे रह जाएंगे, ऊपर वाले उठा कर एक तरफ कर लें, और उसके बाद आपने ये करना कि जो बीज नीचे रह जाएगा उसने उसमें पानी मत निकालना, कई बार धोना है। उसका कारण यूँ है जिसके ऊपर नमक की थोड़ी ही भी रमक रहेगी तो फिर वो दाना है वो जमाव नहीं देगा, तो इसलिए ये है कि वह अच्छी तरह उसने ठीक तरीके कर करा कर दांव साफ करके 4-5 बार साफ पानी में उसने धो कर और फिर उसने सुखा कर और फिर दूसरे उपचार कर उसके बाद बिजाई करने करनी है। फिर बिजाई करके ना आपने उसमें कर दिया नर्सरी में, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी खाद की वो परत है वो चढ़ा दे, ताकि जानवर है जो पक्षी हैं वो पक्षी आपके बीज ने ना उठाऊंगे वो उसके ऊपर कर दे, या फिर कई बार ऐसा करें हैं जो पराल की है या दूसरी तूड़ी या जो और दूसरा सूखी चीज़ें हैं वो उसके ऊपर रख देते हैं, तो एक तो नमी बनी रहे उससे और दूसरी बात ये हो जाए कि जो पक्षी है ना वो बीज नहीं उठा पाऊंगे, जो भी उसका फ़ायदा रह जाए। तो ये तो है भाई उसकी मतलब धान की बात है। दूसरी बात हमें जिस तरह जो हम दूसरी जो फसलें लेस कहाँ खासकर दलहनी और दूसरी नकदी फसलें हैं अपनी, कपास भी चल रही है, कपास का भी चल रहा है भाई, उसमें भी हमने ये ध्यान रखना है कि वह कोई कीड़ा बीमारी उसमें ना आ जाए। खेत में जाओ देखें, अगर कोई कीड़ा बीमारी है तो उसकी शुरुआत में ही देख लें, क्योंकि बाद में अगर हम करते हैं तो खर्चा ज़्यादा लगता है, दूसरी बात ये फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो उन चीज़ों तो बचने खातिर हमने ये सारी चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा भाई। और बढ़िया और जागरूक किसान की तो एक बात ये रहे कि वे अपने खेत में जाकर देखें जाए और एक एक उसमें चारों तरफ के खेत के हैंड कहने की देखा कि हाँ कोई किसी चीज़ की कमी तो उसमें नहीं है, नमी की है या खरपतवार होने लग रहे, कोई कीड़ा है बीमारी है, सारी चीज़ें उसमें देखना है। एक ही फसल में भैया चलो अब ये बूंदाबांदी हो रही है, ये देखें जो खास करें जो हमने चारा फसलें लगा रखी है उनमें है या दूसरी फसलें हैं नमी की कमी ना रहने दें भाई, 10-12 दिन पर उसमें पानी लगाते रहे, अड़का अड़का पानी लगा और ज़्यादा उसमें ऊना करें। और जो दलहनी फसलें, दलहनी फसलों की भी हम ये बात करें, और आज हम बात करेंगे वह बीन फसल की देखभाल का भाई, ये एक फलियों वाली सब्जी है और इसकी पैदावार ये देखा है जो 70 से 100 क्विंटल ये लगभग 1 एकड़ में हमने पैदावार या दे दी, दो तरीके से बोए जाए, एक तो झाड़ी नुमा हो इसके पौधे और एक बेल के तरह से। तो इसमें हमने देखभाल करके ना बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार ली इसका, और ये भी फसल है बहुत, ये कह सका कि काफ़ी इसमें इसकी मांग है और खूब लोग इसको पसंद करते हैं और इसका उपयोग भी खूब ज़्यादा हो रहा है। तो इसके और इसके बारे में विस्तार से बात करें, लेकिन उससे पहले आपने एक रागनी सुनवा दें, गायक कलाकार रहेंगे सुनील दुजानिया और उनके साथी।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

भैया ने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे सुनील दुधाणिया और उनके साथी, और ही नगे बाद में रागनी एक और सुनवाऊंगे आपने। लेकिन जिक्र कर रहे थे कि वे फली वाली जो बीन की फली वाली सब्जी है उनकी देखभाल पर, तो इसमें भाई एक तो बात ये आ कि जो खाद वगैरह तो आपने इसमें डाल दिए होंगे, और ज़्यादातर तो ये ध्यान हमने ये रखना है, एक तो सिंचाई का ध्यान रखना है, उसमें ये करना है कि हमने अड़की सिंचाई रखनी है और 10-12 दिन के अंतर पर हमने देते रहना। कारण उसका यह खेत में नमी बनाए रखनी जरूरी है। अगर जब नमी की कमी होगी तो ये बीन वाली जो फसल है ये हमने उतनी पैदावार नहीं देगी। जिस तरह पैदावार इसकी बताई थी जो हरी फलिया तौर पर है 60 से 100 क्विंटल ये लगभग हमने एक एकड़ में या दे दिए है, तो इसलिए नमी बनाए रखनी जरूरी है। और साथ में एक ये भी चीज़ है, वो तो हर फसल के लिए कहाँ कि वह ठोक कर पानी नहीं देना, यानी इसमें पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। बरसात अगर हो जाती है तो पानी निकासी का तो इंतजाम पहले ही कर लेना चाहिए, हमने अभी आपको पहले बता दिया जाता है। और फिर यह है कि भाई जो निराई गुड़ाई है इसमें लगातार हमने अब भी करनी है। कारण उसका यूँ है कि भाई खेत में कोई कीड़ा बीमारी ना आ जाए, और जो खरपतवार हैं अगर वो खड़े रहेंगे तो जो हमने खुराक दे रखी है रसायन खादा तौर पर या दूसरे खादा देसी खादा तौर पर, वो सारी खरपतवार ले जाएंगे और मुख्य फसल का नहीं लगेंगे, ना लगेंगे तो वो पैदावार हमने पूरी नहीं देगी। तो निराई गुड़ाई इसमें लगातार करते रहे, जब भी जो ही दिखा कि वह खरपतवार इसमें हो गए अपने खरपतवार निकालन खातर अपनी निराई गुड़ाई इसमें करते रहें भाई। साथ में इसमें एक चीज़ और भी देखा, जो कीड़े हैं रस चूसने वाले कीड़े वो भी आ जाए हैं और फफूंद भी आ जाए इसमें, तो उसमें का भी काफ़ी नुकसान हो जाए है, तो इसकी रोकथाम भी हमने करनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये देख लेना है कि भाई मान लिया फफूंद है या रस चूसने वाले कीड़े, बार बार आप ये बताओ, क्योंकि ये सीधे सीधे इसमें फली के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करी जाए, तो सीधी दवाई का जो प्रयोग कर रखा हो तो वो अगर जलेंगे तो ग्राहक को उसमें मुश्किल हो जाएगी। इस और हमने पूरा ध्यान रखना है, और ये किसान भाई ने अपना खुद उसमें देखना है कि जब मान लिया आपने फली तोड़ी, अब वो देखे एक हफ्ते के बाद तोड़नी, उसके बाद आपने स्प्रे कर देना, और इसमें अड़की दवाई जिस तरह मेलाथियान है दवाई, अड़की है ये, अड़की दवाई का इसका प्रयोग करके ने, और उसमें ये ले लें, पहले तोड़ लें अपनी जो तैयार हो रही फलियाँ उन्हें तोड़ लें और उसके बाद स्प्रे कर दें, और कम से कम 10 दिन के बाद ही दूसरी बार उसमें तोड़ाई करें इसमें, नहीं तो इसमें ये हो जाएगा चाहे कुछ भी है कि भाई जो सीधम सीधा असर है वो जो ग्राहक के ऊपर पड़ा, क्योंकि खाओगे ये सीधे खाने तो उसमें असर पड़े हैं, तो इस ओर हमने पूरा ध्यान देखना है। हाँ, ये जिस तरह पहले इसकी तुड़ाई है फलियाँ की तुड़ाई 50-60 दिन में अपने तुड़ाई खातिर वो तैयार हो जाए, और आप उसमें तोड़ लो हो, और पैदावार का जिस तरह बताया बस 60 से लेकर 100 क्विंटल के लगभग एक एकड़ में यह पैदावार दे दी है। निराई गुड़ाई इसमें ज़रूर करते रहना, लगातार करते रहना चाहिए, उससे एक तो खेत में नमी बनी रहे, दूसरी बात ये खरपतवार नहीं होंगे। हाँ, खरपतवार ना होंगे तो आप ये देखो कि कितना वो हो गया कि जो कीड़े बीमारी हैं वो भी बहुत कम लगेंगे इसमें आएंगे, तो इसलिए हमने ये ध्यान रखना है कि भाई अपना खरपतवारों के निकालने के लिए अपनी निराई गुड़ाई करते रहे लगातार। और खाद का अब ये जिस तरह रासायनिक खाद है बताया था, यूरिया का नहीं, यूरिया का ज़्यादा प्रयोग ना करें आपने जो कर लिया उसमें, क्योंकि एक तो फली वाली सब्जी है ये, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती इसमें यूरिया की, इसमें तो ये जरूर ध्यान रखें कि भाई यूरिया का प्रयोग इसमें जो आपने जितना कर लिया उतना कर लिया, जिस तरह ये बताया था कि भाई इसमें 10 किलो का काम है बस और ज़्यादा नहीं इसमें, तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि भाई यूरिया का ज़्यादा प्रयोग ना करें। कई बार ये किए करें कि भाई कटाई करी या हमने वो तोड़ी फलिया और जा कर ये कर दे कि भाई यूरिया प्रयोग कर दे और जल्दी वो हो जाएगी, ना ऐसा ना करें, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही कर लिया आपने उसमें उसमें कर लिया। हाँ, इसमें शुरुआत में जब बिजाई के टाइम पर जो देसी खाद का प्रयोग था कि भाई कम से कम 15-20 गाड़ी आपने देसी खाद की कुरड़ी का अच्छा गड़ा सड़ा खाद वो दे दिया होगा, उसके बाद आपने कोई ज़रूरत नहीं है, एक कट्टा DAP का था वो उस टाइम पर वो दे दिया है। लेकिन ये आगे है ना, इसमें यूरिया का या दूसरे जो रासायनिक खाद हैं उनका प्रयोग ना करें, खेत में नमी बनाए जरूर रखें, पानी दें, अड़का पानी दें, और मान लिया बरसात हो जाती है तो बरसात में उसमें पानी निकासी का इसमें इंतजाम जरूर रखें, नहीं तो अगर जब पानी खड़ा रह गया चाहे तो वो झाड़ी नुमा है और चाहे बेल वाली, बेल वाले के लिए तो ये बता था कि भाई उसी लाठी का या डंडे के सहारे उसके खड़ा किया जाता है उसके ऊपर, और ये जो बेल वाली है ये ज़्यादा पैदावार देती है उसमें झाड़ी नुमा की बजाय, तो वो आपने जिस तरह लगा रखी है उसमें ठीक है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान आपने इसमें यही रखना कि वह एक तो खेत में नमी बनाए रखनी है, सूखा नहीं रहने देना। दूसरी बात यह है, अगर पानी बरसात हो जाती है, बेमौसमी बरसात हो जाए, तो उसमें ज़्यादा देर तक पानी खड़े आपने नहीं रखना है, ये जरूर ध्यान रखना है। जबर हम इन बातों की ओर ध्यान रखेंगे तो जो ये बीन वाली फसल है इसे हम अच्छी पैदावार ले लेंगे और बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा इसमें। और बात रागनी करी थी, एक रागनी और सुनवा दें, गायक कलाकार एक बार फिर सुनील दुजानिया और उनके साथी।

भैया ने ये तो रागनी सुनी, गायक कलाकार थे सुनील दुजानिया और उनके साथी, और जिक्र कर रहे थे बीन की फली वाली सब्जी की देखभाल। तो इसमें भैया आपने ये ध्यान रखना, एक तो खरपतवार नहीं होने देने हैं, दूसरी बात ये है कि इसमें नमी बनाए जरूर रखनी है, और जब पानी पूनी का ज़्यादा वो हो जाए तो पानी निकासी का इंतज़ाम इसमें ज़रूर रखें भाई, क्योंकि कई बार ये होता है बरसात हो जाती है और उसमें पानी ज़्यादा हो जाए और पानी में फसल हमारी जो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह इसमें हमने पूरा पूरा ध्यान रखना है, और ध्यान आपने ये भी रखना है कि जिस तरह आज बताया शुक्रवार है और फोन इन प्रोग्राम है पशुपालन संबंधी, और अपने बीच में डॉक्टर संतोष कुमारी जी आएंगे और वो आपके सवालों के जवाब दें और पशुपालन संबंधी ही बात करें, और फ़ोन नंबर आपने फिर बता भी देंगे उस टाइम पे। तो इसलिए अपना पूरा ध्यान रखना है कि वे फ़ोन इन प्रोग्राम अपने फ़ोन करके समस्या का समाधान करवा लें। और भैया ईब घड़ी का ना देख लो, कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त, अशोक भाई ने जो सारे वन भैया ने राम राम।

आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय शाम के 5:30:15 हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

0: कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी की साथी याचना। तो साथियों, आज हम सबसे पहले कार्यक्रम में बात कर लेते हैं कि जो आज का दिन है, आज के दिन हम मना रहे हैं विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस। अगर हम इस दिवस की बात करें तो इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वर्ष 2002 में की थी। इसका उद्देश्य बाल श्रम की समस्या की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करना और बच्चों को इस शोषण से मुक्त कराने के लिए जागरूकता फैलाना है। और अगर हम बाल श्रम की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि जब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे या और उनसे काम करवाएं, मतलब कि शारीरिक और मानसिक विकास है जिससे उनका ये विकास है उसको नुकसान पहुंचता है, वो काम करवाएं तो उसे हम बाल श्रम कहते हैं। बाल श्रम के पीछे अनेक कारण जिम्मेदार हैं, जैसे कि परिवार की आर्थिक तंगी के कारण माता पिता बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहीं पर शिक्षा अगर उन्हें सुलभ नहीं होती या फिर महंगी होती है तो वहाँ बच्चे पढ़ाई की जगह काम की ओर धकेले जाते हैं। इसका जो है बच्चों के जीवन पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डलता है, जिसमें उनका मानसिक और शारीरिक विकास जो है वो रुक जाता है। शिक्षा से वंचित होने के कारण उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है और खतरनाक परिस्थितियों में काम करने से उनके स्वास्थ्य को भी जो है हानि पहुंचती है। साथ ही बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक व्यापक और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि सभी बच्चों के अगर हम देखें तो सभी बच्चों के लिए अगर हम मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए तो समाज को जो है वो एक बढ़ावा मिलेगा और बाल श्रम जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा समाज को भी कुछ काम करना चाहिए, समाज को जो है वो बाल श्रम के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए और जो हमारी सरकार है उन्हें भी जो है बाल श्रम के खिलाफ कठोर कानून बनाने चाहिए और उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। साथियों, बाल श्रम न केवल बच्चों के अधिकारों का हनन है बल्कि यह समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी बाधक है। इसलिए हम सबको मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां कोई भी बच्चा बाल श्रम का शिकार ना हो। साथियों, ये तो बात थी हमारे जो आज हम दिवस मना रहे हैं, बाल श्रम विरोधी दिवस। इसके अलावा एक और अहम मुद्दा है कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसको हम भूलते जा रहे हैं। और अगर देखें तो आज के समय में हमें जो है हिंदी बोलना आवश्यक हो गया है, क्योंकि उसे जो है एक हमें नई पहचान देनी होगी ताकि हम उसको हमेशा याद रखें, क्योंकि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा है। यह भारत की राजभाषा है और करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन है। हिंदी का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है और समृद्ध रहा है। इस भाषा में तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस लिखी, कबीर ने दोहे और मीराबाई ने भक्ति के गीत गाए। साथियों, हिंदी साहित्य की यह विरासत हमें गर्व से भर देती है और यहीं पर हिंदी भारत को एकता के सूत्र में पिरोती है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जब भी दो अजनबी मिलते हैं तो हिंदी ही उनके बीच सेतु का काम करती है। यह भाषा इतनी सरल और मधुर है कि जो एक बार इसे सीख लेता है वह इसका दीवाना हो जाता है। और आज के आधुनिक समय में जो अंग्रेज़ी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे कुछ लोग हिंदी को हीन समझने लगे हैं, तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमें जो है याद रखना चाहिए कि जो हम अगर अपनी भाषा से प्रेम करते हैं तो वो अपनी माँ से प्रेम करने के समान हो जाता है। और जो राष्ट्र अपनी भाषा को सम्मान देता है वही राष्ट्र सच्चे अर्थों में महान बनता है। हिंदी को गर्व के साथ बोलना चाहिए, लिखना चाहिए और अगली पीढ़ी तक जो है हमें उसे पहुँचाना चाहिए। और साथियों, ये तो बात हो गई हमारी हिंदी भाषा के ऊपर। और आप सब जानते हैं कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत, जिसमें आप हमें फरमाइशें भेजते हैं। और सबसे पहले आई है पटना बिहार से भुवनेश्वर मोनू लीलू, धनबाद झारखंड से अमित कुमार प्रियंका समृद्धि, बिहार से संजीव कुमार पूजा रवि आरती, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह,
1: उषा, ऋषभ, लीलू और ऋतु सिंह। पीली बंगा से अमन मेहरा, समर, ऋतु, बिशनलाल। कर्णपुर राजस्थान से शिव सेठी, सुनीता, कमल, ज्योति, शब्द, बानी और राजू। यहीं पर नखेल मैथुन से पुजानजी नवाकर और विशाल। पुणे से शैलेंद्र, सोनम, धनुष और गिरी। इसके अलावा दंतरेंगी से वीरामणि, पश्मीन और माफ़ कीजिएगा पारशमीन और यहीं पर पुष्पेंद्र और नौखेलाल वर्मा। साल्याखेड़ी मालवा आगरा से सोनू विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा। सनावद से किशोर सांवले, रेखा, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, चारुवी और प्रणव। और साथियों जो गीत रहेगा वो रहेगा आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से, जिसको गाया है श्रेया घोषाल और सोना महोपात्रा ने। इसके बोल लिखे हैं कुमार ने और इसको संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

और साथ ही अभी आप सुन रहे थे आई हेट लव स्टोरीज़ फिल्म से ये गीत, जिसको गाया था श्रेया घोषाल और सोना मोहपात्रा ने। इसके बोल लिखे थे कुमार ने और इसको संगीत दिया था विशाल शेखर ने। बढ़ते हैं अगले फरमाइशी गीत की ओर, जिसकी फरमाइश आई है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छेपा, कपिल, पूजा परिहार, भाव सिंहपुरा से वैभव और गौरव, करसिया छत्तीसगढ़ से इंद्रियान सिंह, अनुभव, ऋषभ और राम सहोदर, लुम्बिनी अकोला से राहुल बांसोड़, सम्यक, शरण और मीरा बंसोड़ा, यहीं पर गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह, शेखावत, संगीता, तुषार, रिंकी, कैथल से डॉक्टर रमनदीप, हांसी से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद और पुष्पेंद्र, खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारसा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन, यहीं पर नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप, अमूल्य और बड़वा खरगोन से प्रवीण, मीना, श्रीमाली, कैथल से मधु नायक। और जो हमने गीत लिया है साथियों, वो लिया है फिल्म बर्फी से। इसको गाया है रेखा भारद्वाज ने, इसके बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और इसको संगीत दिया है प्रीतम ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे बर्फी फिल्म से ये गीत, जिसको गाया था रेखा भारद्वाज ने। इसके बोल लिखे थे सईद कादरी ने और इसको संगीत दिया था प्रीतम ने। और अगले फरमाइशी गीत की जो फरमाइश आई है, वो आई है बेमित्रा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, भिलई छत्तीसगढ़ से अशोक, श्याम कुंवर, दीपक, प्रमीला, ज्योति। इसके अलावा बागपत यूपी से एहसान अली, बन बधेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा, नीरज, नीलेश और अंजलि सारवा, डोंडी लुहाश बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, आरती, पूजा, डॉली, तुषार और प्रभा देवी तामोरिया, तोरनाला वाशिम से सुखदेव रावत, और यहीं पर शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर, खजूरी खास दिल्ली से पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ, गौरव नेगी, मीठी और कुहू, कबूलपुर रोहतक से रण सिंह दिल्लौड़, सतपाल, मंजू, रोशनी, अंकित, नौरंगी अटकान, पूजा और ओम मोर, औरंगाबाद से वैष्णवी जगदाले, हर्षुल सांवी, भीलड़ वापी गुजरात से कल्पना मदान झा, मानव, मयंक, कीर्तिनगर नई दिल्ली से सुशांत प्रिय झा, निवेश नियति। और जो हमने गीत लिया है, वो लिया है फिल्म रांझना से। इसके जो बोल हैं वो लिखे हैं इरशाद कामिल ने, इसको गाया है राशिद अली और नीति मोहन ने, और इसको संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे रांझना फिल्म से ये गीत, जिसको गाया था राशिद अली और नीति मोहन ने। इसके बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और संगीत दिया था AR रहमान ने। अगर अगले गीत की फरमाइश आई है दिल्ली से डॉक्टर सोनम अदीबा, झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक, मंजू, यमुनानगर से विनोद नैन, चरखी दादरी से जगनेश सांगवान, भिवानी से जितेंद्र खेड़ा, हिसार से राजेंद्र सैनी, राहुल सैनी, सच्चा खेड़ा से वेद बिहारी, जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा, कोंडागांव छत्तीसगढ़ से सुभाष चकधारी, कविता, मुस्कान, अनुष्का, फतेहबाद से बिट्टू मोहरवाला, गगन, अमरपुरी, युवराज, युविक, और चरडोंगरी पीपरिया मध्य प्रदेश से दुर्गाराम साहू। और हमने जो गीत लिया है वो लिया है तलाश फिल्म से। इसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, इसको संगीत दिया है राम संपत ने, और इसको गाया है सोना मोहपात्रा और रविंद्र उपाध्याय ने।

कैलाश फिल्म से एक गीत था जिसे गाया था सोहना मोपात्रा और रविंद्र उपाध्याय ने। इसके बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था राम सरवंत ने। और फिर मिलेंगे आपसे किसी और दिन, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का

0: पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। पहले एक नजर आज के शेष कार्यक्रमों पर। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक विशेष श्रृंखला जन विश्वास सुनिएगा शाम 7:10 पर, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 7:45 पर सुनिएगा एक विशेष बातचीत सरकार के 12 वर्ष विषय पर। वार्ता कर रहेंगे श्री कृष्णलाल मिड्डा, डिप्टी स्पीकर विधानसभा। इनसे बातचीत करेंगे श्री संजय कुमार बाली। रात 9:30 पर सुनिएगा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी रहेंगे श्री मनीष विकास, मधु गोयल एवं सीमा बिरला। शाम 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत में होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम। विषय रहेगा पशुपालन संबंधी समस्या व सुझाव। विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर संतोष। रात 8:25 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आपको सुनवाएंगे चंदन।

0: रियाज की गाई गज़लें। फरमाइशी फिल्म संगीत का पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अपने सुनने वालों के लिए लेकर आएंगे रात 10 बजे। कार्यक्रम एक फिल्म से होगा रात 9:15 पर। इसमें आज आपको सुनवाएंगे प्रिंस फिल्म से चुनिंदा गीत और फिल्म संगीत का लुत्फ लीजिएगा 8:15 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल के मुख्य आकर्षणों पर। कल रात 9:30 पर राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती आप सुन पाएंगे। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे और शाम 7:10 पर सरकार के 12वें वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित कार्यक्रम सुनेगा अष्टलक्ष्मी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार होगा रोजाना की तरह कल शाम 5:30 पर। इसमें सुनिएगा रोजगार विशेषांक। समसामयिक विषयों पर चर्चा के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुबह सवेरे अपने सुनने वालों के लिए लेकर आएंगे प्रातः 7:30 पर। अगेती फूल गोभी की काश्त ये विषय रहेगा चर्चा का कार्यक्रम खेत खलिहान में दिन में 2:30 पर। कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 6:20 पर श्री अशोक भाटी की बातचीत का विषय होगा जल संरक्षण के उपाय। हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे कार्यक्रम ग्रामीण संसार के तहत। अब जानकारी कुछ संगीत कार्यक्रमों की। कार्यक्रम सुगम संगीत सुनेगा प्रातः 7:15 पर और रात 8:25 पर। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं दिन में 1:10 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सबरस होगा प्रातः 9 बजे। कार्यक्रम एक फिल्म से सुनिएगा रात 9:15 पर। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे शाम 7:30 पर। हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी आप सुन सकते हैं दिन में 12:30 पर और हरियाणवी लोक संगीत का समय रहेगा प्रातः 8:30। इसमें कल कलाकार रहेंगे राकेश बामनिया। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। सुनिए सूचनाएं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। थाना सदर दादरी जिला दादरी सूचित करता है कि पिंकी वाइफ ऑफ नरेश जो कि तिवाला जिला दादरी की रहने वाली है दिनांक 1 मई 2026 से लापता है। पिंकी का हुलिया आपको बता दें उम्र 42 वर्ष कद 5 फुट रंग सांवला लबूतरा चेहरा व स्वस्थ शरीर है। इनके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए संपर्क कर सकते हैं थाना सदर दादरी से। थाना पुरानी सब्जी मंडी रोहतक सूचित करता है कि दीपक जो कि फतेहपुर कॉलोनी रोहतक का रहने वाला है लापता है। हुलिया आपको बता दें उम्र 26 वर्ष कद 5 फुट 6 इंच रंग साफ लंबूतरा चेहरा व स्वस्थ शरीर है। इनके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए संपर्क कर सकते हैं थाना पुरानी सब्जी मंडी रोहतक से। सूचनाएं समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी।
1: नमस्कार ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल सेवा व सुशासन का स्वर्णिम अध्याय रहा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने श्री मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को उपलब्धियों का कार्यकाल बताया। कहा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास को नई गति मिली और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समाज व राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए सभी से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। और अब खबरें विस्तार से। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। यह मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार नियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल सेवा व सुशासन का स्वर्णिम अध्याय रहा है। इन 12 वर्षों में भारत तेजी से बदला है। वे आज पंचकुला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड समय तक भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया में नई पहचान दिलाई है। गगनयान की ओर बढ़ते कदम, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता, अंतरिक्ष विज्ञान में भी भारत ने ऊंची छलांग लगाई है। पिछले 12 वर्षों में भारत में संभावनाओं के देश से उपलब्धियों के देश तक की ऐतिहासिक यात्रा तय की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पीछे छोड़कर संतुष्टिकरण और अंत्योदय के एक नए युग में प्रवेश किया है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से हर योजना को अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के सफल और ईमानदार प्रयास किए गए हैं।
2: 12 वर्ष के कार्यकाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया है, ये भारत के विकास का राष्ट्रीय दर्शन है। 12 वर्ष आदरणीय मोदी जी ने ज्ञान के उदय की बात कही है। विकसित भारत में हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना होगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 वर्षों में जो 4 स्तंभ है, इनको प्रकृति से मजबूती से काम हुआ है और विकसित भारत का ये मुख्य आधार भी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब हम गरीब को मजबूत करेंगे, हम युवा को पैरों पे खड़ा करेंगे, किसान को सशक्त करेंगे और नारी को साथियों उसका सशक्तिकरण करेंगे तो विकसित भारत ये गति से बनेगा।
1: उन्होंने कहा कि ये सत्ता को विशेष अधिकार का माध्यम नहीं बल्कि सेवा का संकल्प बनाने की यात्रा है। गरीब कल्याण मोदी सरकार की विकास यात्रा का केंद्र बिंदु है। इसीलिए वर्ष 2014 के बाद देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इस अवसर पर 12 वर्ष की उपलब्धियों से जुड़ी एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों का कार्यकाल रहा है। इस दौरान देश का अभूतपूर्व विकास देखने को मिला। आज फरीदाबाद में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि 10 जून को श्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं और मोदी सरकार के 12 वर्ष राष्ट्र निर्माण, पारदर्शिता, जवाबदेही और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आधारित रहे हैं।
3: आदरणीय मोदी जी देश के सबसे लंबे 12 साल
4: तक रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने।
3: 12 साल देश के विकास के साल के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि पहले दिन से ही मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण के मिशन को लेकर काम किया है। इसलिए आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज भारत की GDP 7.7% है। किसी भी दुनिया के देश की ये GDP नहीं है और पिछली तिमाही तो 8.4% की रही। मतलब हर तरह से हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, कृषि हो, एजुकेशन हो, कोई भी क्षेत्र हो, स्टार्टअप हो।
1: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश का बुनियादी ढांचा निर्माण बजट वर्ष 2014 के लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है, जबकि रक्षा बजट भी लगभग 8,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में कमी आई है तथा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास को नई गति मिली है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

0: बढ़ाने और रक्षा निर्यात के लगभग 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का भी उल्लेख किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में समाज कल्याण व अधिकारियों की रक्षा के लिए नीतिगत या व्यक्तिगत रूप से कार्य करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वे आज पंजाब के राजपुरा में सैनी समाज कल्याण समिति द्वारा आयोजित सैनी महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने राजपुरा की धरती के वीरों की पावन और ऐतिहासिक धरा बताते हुए कहा कि ये क्षेत्र दोनों राज्यों के भाईचारे का प्रतीक है।
1: इलाका पंजाब से हरियाणा नु जोड़न वाला ये सिर्फ एक पुल नहीं है, सगो दोहां सूबियां दे ये प्यार सांस ते भाईचारे दा ये प्रतीक है। इस मिट्टी ने मेहनती किसान पैदा करन दा काम कीता है, इस मिट्टी ने बहादुर जवान देन दा काम कीता है। समाज दी सेवा करन लई उम्र लाण वाले सेवक इस भूमि ने दित्ते ने। मैं इस महान धरती नु दिलों
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की बागडोर संभाली है नई नीतियां बनाई और लागू की हैं, जिनसे गरीब व्यक्ति को विकास की धारा में लाने का काम किया है। पंजाब में हरियाणा की तर्ज पर जन कल्याणकारी नीतियां लागू की जाएंगी। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अनेक वादे करके पंजाब के लोगों को झूठ बोलकर बरगलाने का कार्य किया। आज जनता स्वयं को ठगा सा महसूस कर रही है। श्री नायब सिंह सैनी ने समाज एवं राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए सभी से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया और कहा कि इस प्रयास से पंजाब को भी समृद्ध एवं खुशहाल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाज के हकों की रक्षा के लिए जोरदार पैरवी की जाएगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी गुरु पर्व पर पाकिस्तान धार्मिक यात्रा के लिए भेजे गए जत्थे के वाघा बॉर्डर से वापस आने के मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा ने ये जानकारी दी। गौरतलब है कि श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी गुरु पर्व पर हरियाणा से एक जत्था पाकिस्तान में धार्मिक यात्रा के लिए 9 जून को कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी से भेजा गया था, परंतु किसी कारण से 10 जून को इस जत्थे को वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करने दिया गया। डाक विभाग द्वारा अम्बाला मंडल के किसी भी गांव या वार्ड की मांग पर आधार अपडेट के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक विजय कुमार ने आज अम्बाला में ये घोषणा की।
2: अपने डाकघरों में हमने आधार के लिए, नामांकन के लिए, आधार अपडेशन के लिए, आधार में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए, आधार में फोन नंबर अपडेट के लिए अलग अलग जगह पे काउंटर लगाए हैं। किसी गांव में या किसी वार्ड में अगर 50 या 50 से ज्यादा लोग आधार के लिए तैयार हैं या फिर वो आधार का अपडेशन करना चाहते हैं तो उनके सरपंच या कोई जनप्रतिनिधि हमसे संपर्क कर सकता है, तो उसको हम उनके एरिया में भी ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाइयों ने अशोक भाई की राम राम। भाइयों आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन आपको पता जिस तरह फोन इन प्रोग्राम होता है और आज फोन इन प्रोग्राम है पशुपालन संबंधी और आपकी समस्या समाधान करने खातिर अपने बीच मारी हैं डॉक्टर संतोष कुमारी जी। आप हैं कहाँ से आए डॉक्टर साहब? आप
1: राजकीय पशु चिकित्सालय मिश्री
0: मिश्री जिला चरखी दादरी से आप आए हैं। तो भाइयों आप तो एक बार फोन नंबर बता दें अपने 255 440 255 447 और 255 448 इन नंबरों पर आप बात कर सकते हो। तो डॉक्टर साहब फोन लेते हैं। हेलो हेलो
2: डॉक्टर राम राम।
0: हाँ डॉक्टर साहब बैठे। हाँ जी बोलो आप जगह बताओ कौन बोल रहे हो?
2: मैं महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ श्री सरखास से।
0: महेंद्र सिंह श्री सरखास से। हाँ अपनी समस्या बताओ जी।
2: समस्या यह जी भैंसी चार एक बिन्नी सा चार बिन्ना की
0: जी
2: तो वह दूध दे जी 10-12 किलो
0: जी
2: हरी वे एकदम आज 8 दिन हो गए शाम ने का 5-6 किलो दूध था तड़के थना रात ना लान दिया।
1: चरे पीवे ठीक है महेंद्र जी?
2: खूब चरा खूब पानी पियो है ये बार बंद है मन बंदोड़े गिरे बंदोड़े चाट खूब खाओ है।
1: अच्छा थनों में कोई और समस्या दिखाई दी आपको?
2: कोई समस्या नहीं मन लाल हो रहे हो देखे दाऊ दो किन जमा ठीक है।
1: आज कोई सोई सोजन किसी तरह की नहीं है
2: ना? कोई मतलब है नहीं जी जमा साफ तन है।
0: तो डॉक्टर साहब फिर बताओ।
1: देखो अगर चरे पीवे ठीक है ना तो थनेला की तरफ जाएगा।
2: कोई भी तरह कोई दिक्कत को नहीं तरह है सारा काम ठीक है।
1: आप एक बार जितना थोड़ा बहुत अगर दूध देती है ना ये एक दो धार जितनी भी आप इसका चेक करवा के लाओगे एक बार
2: दूध चेक करवा।
1: हाँ क्योंकि अगर चरा पीवे ठीक है पशु तो दूसरी बीमारी नहीं है कोई और।
2: मतलब जी इन्हें आज 7-8 दिन हो गए
1: हाँ तो इसको दर्द है एक देखो दर्द हो कोई जरूरी नहीं है सोजन हो दर्द है तो भी थनेला की तरफ जाएगा हमारा ध्यान।
2: थनेला की तरफ कौन जी है?
0: तो नहीं आप ये देखो ना जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उसमें एक लक्षण बता रहे हैं जो आप बताओ उसके अनुसार तो
1: ठंडे पानी के छबके मार के ना और तब बैठो आप
2: पानी के गर्म पानी के। हाँ जी हेलो।
0: हाँ जी हाँ जी ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ठंडे पानी के छबके मारो आप उसके
1: और दूध थोड़ा बहुत भी देने तो चारों थनों का आप चेक करवा लो एक बार।
2: दूध तो कोई ना जल्दी चला दे दूध कैसे काटा?
1: आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक।
0: तो नहीं जी
2: आवाज मतलब ये हाँ। ये रात कौन लान जल्दी?
1: तो मैं ये कह रही हूँ महेंद्र सिंह जी आप एक बार थोड़ा बहुत तो देगी ये ठंडे पानी के छबके मार के एक बार आप जो निकाला है ना उसको चेक करवाओ।
2: अच्छा किस कराना पड़ेगा जियो?
1: आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो हिसार।
2: हिसार यूनिवर्सिटी में
1: पास पड़ेगा आपके दूर नहीं है वहाँ से।
2: ठीक है ठीक है सर गाँव है मेरा।
1: हाँ हाँ
0: डॉक्टर साहब ये कल्चरल टेस्ट भी करवा सकते हैं?
1: कल्चर का हाँ हाँ वहीं हो जाएगा चारों थोड़े में अलग आप सिरिंज ले लेना नई अलग अलग चारों पे लिख के वहाँ ले जाना। और अब ये है क्या बर्फ में लेके जाना वैसे मत लेके जाना गर्मी का महीना है अभी।
2: हाँ जी क्या ले जाऊँ?
1: नई सिरिंज ले लेना चार।
2: हाँ चार सिरिंज डाल लूँ।
1: हाँ चारों का अलग अलग
0: चारों थोड़ों का अलग अलग ले जाना जी।
2: हाँ जी
0: हाँ ये ध्यान रखियो और उन जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बर्फ में उसके ले जियो
1: क्योंकि देखो एकदम अगर दूध कम हुआ है ओडी ठीक है बिल्कुल इसकी लेवटी
2: दूध दाद ओडी ठीक है जी या बेटी धार का एक बार बेटी तो बताओगे आपने?
0: अच्छा करवाओ बात बेटी दे करवाओ बात
2: करा गई है एक गुड़िया।
0: नहीं ये ना करो महेंद्र जी बात ये देखो अब और श्रोता भी लाइन
1: आप एक बार चेक करवा लेना फिर दोबारा
0: चेक करवा लेना
1: एक बार दूध को।
0: तो डॉक्टर साहब अगला श्रोता देखते हैं। हेलो हेलो।
3: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी अपना नाम बताओ और जगह बताओ कहाँ से बोल रहे हो?
3: मैं दलजीत बोल रहा हूँ सर हिसार से।
0: दलजीत हिसार से। हाँ अपनी समस्या बताओ जी डॉक्टर साहब बैठे हैं।
3: एक महेश है जी 17 जनवरी 2025 को गई थी
0: जी
3: और वह 2-3 दिन से अभी 5-6 किलो दूध दिया करती एक टाइम 2-3 दिन से। हेलो
1: हाँ जी दलजीत जी आगे की है ये भैंस?
3: हाँ जी चेक करवाई थी जी।

0: महीने की हो गई है। तो
1: अच्छा,
0: ये हुआ 2-3 दिन से 5-6 किलो दूध दिया कर दी, दूध पाव से कोने बच्चे पर पाव से कर दी,
1: बच्चा
0: बच्चा है बच्चे का लाखन कौन दे भी?
1: दोनों टाइम दिया कर दी।
0: एक टाइम दिया कर दी 5-6 किलो,
1: देखो
0: तो ये
1: कुछ
0: उसका दूध थन थना का काटना पड़ा है, तो ये पूरा दूध दे दे दे देगी क्या? इंजेक्शन लगाने से भी नहीं पाव शरीर।
1: इंजेक्शन नहीं लगाना आपको
0: हाँ
1: इंजेक्शन। एक
0: जी
1: तो देखो अगर आगे की हो चुकी है जनवरी 5-6 महीने में, ज्यादा हुआ नहीं टाइम, थोड़ा बहुत देना चाहिए इसको, मतलब
0: नहीं,
1: भैंस
0: 25
1: को।
0: की है जी, 17 महीने, 16-17 महीने हुए।
1: 25 अच्छा जनवरी 25 की, फिर
0: हाँ जी
1: आपको छोड़नी पड़ेगी। कितना निकालोगे? लेट हो होगी आगे की।
0: हाँ, लेट मतलब मेरा कहने का ये है कि 5-6 किलो दूध दिया कर दी, तो दूध नुकसान है,
1: तो
0: वो ठण ठणा का
1: नहीं
0: काटना
1: नहीं
0: पड़ा है।
1: ऐसा है, फिर कोई बात नहीं। अब ये आगे शायद दूध से नाटेगी, तो जितना आवा है
0: हाँ
1: ना वो सूद दो आप उसने, छोड़ना मत एकदम।
0: ठीक, हाँ यही
1: जैसे
0: पूछ रहा
1: हाँ
0: हूँ।
1: एक खड़ करके अगले दिन आप दोनों खड़, और
0: हाँ
1: फिर हाँ एक एक फिर दो खड़ छोड़ के, फिर दिन छोड़ के ऐसे छोड़ देना।
0: तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये दूध अंदर है वो जम तो नहीं जाएगा कभी फिर
1: मैंने यही कहा ना कि
0: आके?
1: आपको एकदम नहीं छोड़ना।
0: हाँ जी
1: हाँ एक खड़ आप जाएगी, फिर अगले दिन छोड़ के, फिर अगले दिन फिर खाली करने थे ना आपको,
0: ठीक है,
1: 10-15 दिन ऐसे करके फिर छोड़ना है।
0: ओके थैंक
1: ठीक,
0: यू।
1: ओके
2: डॉक्टर साहब। इसमें जो हरा चारा की जो समस्या ना हो जाए, कि मान लिया हरा चारा कम हो गया हुए, तो उस वजह से
0: ना
2: भी
0: जी
2: उसका
1: नहीं, इसकी असल में जनवरी 25 के हैं,
2: जी ब्याई
1: तो
2: हुई जो।
1: हाँ कई
2: ठीक
1: दिन की ब्याई होगी, इतना दूध दे दिया भैंस ने बहुत है, आगे की लेट हुई होगी।
2: अच्छा अच्छा
1: और
2: जी
1: कुछ गर्मी का रही है कि थोड़े बहुत दिन और दे सकती थी, महीना
2: अरे
1: 20 दिन,
2: अरे अरे।
1: पर वो गर्मी की वजह से, हरा चारा की कमी की
2: तो
1: वजह
2: डॉक्टर
1: से
2: साहब देखते हैं
1: नहीं
2: अगला
1: हुआ।
2: श्रोता हमारी लाइन में। हेलो
0: नमस्ते जी,
2: नमस्कार जी, अपना नाम बता दो और जगह बता दो जी।
0: राजवीर पांडवान, जिला चरखी दादरी जी।
2: राजवीर चरखी दादरी से। हाँ राजवीर जी बताओ क्या समस्या है।
0: ए जी, महज 2-4 दिन से मतलब पानी कम पी हुआ है
2: अच्छा जी,
0: और
2: ये
0: दूध भी कम कर गई। नहीं
1: ताजा ब्याई है, किस तरह है राजवीर ये?
0: ज्यादा नहीं लिया, करीब 3 महीने हो गए, 4 महीने ही।
1: चाट खा रही है ये?
0: हाँ साठ सही खा रही है जी।
1: कई बार क्या होता है कि जैसे गर्मी की वजह से पशु जैसे चाट अगर भी छोड़ देती है, और उसी की वजह से क्या होता है कि पानी पीना कम कर देती है, क्योंकि गर्मी में तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए पशु ने।
0: हाँ जी, चाट तो पूरी खा गई, पानी कम पी हुआ है।
1: तो एक आप अपना जो अस्पताल में जाकर नज़दीक की पशु
0: हाँ
1: चिकित्सक से एक आता है पाउडर ग्लूकोज टाइप,
0: पाउडर
1: हाँ वो पानी में दे देना आप, ठीक है? फिर ये
0: हाँ
1: पानी पीना
0: जी,
1: शुरू कर देगी,
0: क्या नाम हो जी इसको?
1: वो डॉक्टर लिख देंगे आपके।
0: अच्छा डॉक्टर लिख
1: हाँ एक डॉक्टर साहब इसमें ये भी
0: दिए।
1: तो उसके
0: एक ये
1: जी,
0: चीज चढ़ता जी, मैंने सारी दवाई गिर जी, ये नहीं गया वो छोरी
1: सारी दवाई, इंजेक्शन भी लगवाया है, टिक्का लगवाया है कोई?
0: ना, टिक्का नहीं लगाया जी, टिक्का तो नहीं
1: साबुन,
0: लगा।
1: जैसे साबुन आती है
0: हाँ साबुन सारी और लीजिए,
1: और
0: एक पर दो
1: लगाने की
0: पर
1: भी आती है, रीढ़ी के हड्डी पे लगाने, कई तरह की दवाई है।
0: वरी डाली भी ले रखी जी।
1: फिर आपके कहाँ जो इसका रहने का स्थान है ना ठाणा, वो ईंट
0: हाँ
1: लगी हुई है या जैसे एक तो पुताई कर रखी हो अच्छे से, प्लास्टर कर रखा हो?
0: एक कच्चा ठाणा है, एक में गोल करवा रखा है जी।
1: जो दीवार है
0: हाँ जो आरवा पक्की है जी।
2: लिपाई करवा रखी है दीवारों में,
0: हाँ लपाई करवा रहे थे।
1: कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये चिचड़ वहां जाके छुप जाएंगे और फिर आ जाएंगे, उतर भी जाते
0: हाँ
1: हैं
0: या
1: फिर। हाँ
0: नीवे
1: तो एक बार
0: नीवे हो रही है
1: ठाण
0: उनके।
1: का,
0: ठीक
1: हाँ ठाण का सुधार करो आप, और अपना दवाई लगा दियो, चले जाएंगे। ठीक है जी,
0: है जी, बहुत
1: ठीक
0: बहुत
1: है,
0: धन्यवाद हो
1: ठीक है जी।
0: डॉक्टर साहब।
2: अगला श्रोता देखते हैं। हेलो,
3: तो
2: हाँ जी जगह बताओ और नाम बताओ अपना।
3: हेलो, राम राम जी डॉक्टर
2: राम राम जी, नाम बता दो।
3: साहब ने भी, राम राम जी। अरे
1: नमस्कार नमस्कार,
3: शिमली तो बोला जी, शिमली
1: कहाँ से जी? सिमली
3: गांव से बोला जी। सुनीता
2: से। और नाम क्या है आपका, नाम और बताओ।
3: जी, हाँ
2: सुनीता जी, हाँ आई समस्या बताओ,
3: जी
2: क्या समस्या है?
3: हाँ जी, लोगों जी ये 20-1 दिन पहला ना, अरे शिमली गांव में नमू पाए के टीके लागे थे जी।
2: मुंह खुर के? हाँ
3: हाँ अच्छा जी, उसके बाद है ना जी, ये दो जोटड़ी ना मुंह पाया था जी, मुंह तेते ना आई पाया था जी।
1: मुंह तैर पाया था, टिक्के लगाने से नहीं आएगी, उसकी रोकथाम के लिए ये टिक्के लगाए जाते हैं मुंह खुर के।
3: हाँ फिर
1: हाँ
3: हाँ जी, आए साल लग गया करे जी, मैं सबसे पहले मैं ही लगवाया करूँ जी, पहला मेरे
1: बढ़िया है,
3: घर पे।
1: अच्छी बात है, ऐसे ऐसे सारे पशुपालक होने चाहिए, और ने भी बताया करो ये चीजें।
3: हाँ जी, पड़ोस में भी लगवा दिया करूँ
1: अच्छा ये
3: सबसे पहले।
1: बताओ, एक मिनट सुनीता, ये जो जोटी है इनकी उम्र कितनी है?
3: उम्र है जी, एक तो है ना जी 5वें महीने में नए दूध लाग रही है जी, 2 साल की होगी, 2.5 साल की है।
1: तो आप ऐसा करो, अपने अस्पताल में मिल जाएगी लाल दवाई,
3: ले आई जी लाल दवाई
1: हाँ तो
3: करके।
1: आप कोई बात नहीं, अगर तालाब में लेके भी जाओ ना तो वापस जब घर पाओगे ना तो लाल दवाई से
3: अच्छा
1: इनके पाओ को धो दो, ठीक है जी।
3: एक एक जीस बोने 2 साल की है, और वह 2 महीने की नए दूध होगी जी, तीसरे में नए दूध लाग रही है जी।
1: अच्छी बात है, आपको और कोई दिक्कत नहीं आई ना, सिर्फ थोड़ी बहुत पाया में समस्या है।
3: आज पाया में समस्या है, वह लाल दवाई तो धो दिया जी, स्प्रे मार
1: एक
3: दिए
1: मिनट,
3: सर।
1: चलन में समस्या है या कोई घाव हुआ है?
3: ना चालन में समस्या थी जी,
1: अच्छा
3: अंतर।
1: देखो देखो, फिर एक दूसरी चीज है, वो अपना
3: हाँ
1: डॉक्टर से दिखानी भी पड़ेगी। इस टाइम क्या है, गर्मी में कई बार हमारा जो फास्फोरस की कमी हो जाती है वो भी हो सकती है। एक बार दिखा लेना अपने नजदीकी पशु चिकित्सक, जो भी आप डॉक्टर ने बुलाओ हो उनको।
3: दिखाई ना जीवन, डॉक्टर दे दिखाई जीवन बोले या किसने ना, दर्द की गोली दे दो, लोग के नाम तो आऊंगी जीवे, दे दी गोली लोग
1: दर्द
3: के
1: की
3: नाम।
1: दे दो एक फास्फोरस के आते हैं, या तो आप खनिज मिश्रण नहीं देते ना तो कम से कम वो देना शुरू कर दो आप।
3: खनिज मिश्रण जिंकिन तीनों दिया करा, हम तो पारू मैस के रखरा जिसे दूध देती हो
1: तो
3: देना जी।
1: फास्फोरस का आप वो लिखवा लाओ कोई पाउडर चूर्ण,
2: एक ये
1: ठीक
2: पाउडर
1: है,
2: दे दो सुनीता जी।
1: और लाल दवाई से धो भी लेना।
3: हाँ जी ये बना जी, उस माथे में थोड़ी सी गर्मी बन रही है, जिस तरह नवाऊ हूँ ना तो पानी में रखा है माथे ने, नुगा पानी घेरे जा माथे के
1: माथे
3: ऊपर।
1: में नहीं, बुखार चेक कर लेंगे वो, अगर पानी में तो देखो पशुओं का है, पशु का जो हमारी भैंस है ना, इनका नाम ही है पानी का पशु
3: हाँ
1: है ये, पानी में रखेंगे ये, ठीक है अपनी, क्योंकि इन गर्मी दूर खातर पानी अच्छा लगेगा। फिर भी
3: हाँ
1: आप एक
3: जी,
1: बार हाँ उनसे चेक करवा लो, अगर बुखार बुखूर बढ़ता होगा तो वो उस हिसाब से पता लगेगा, ठीक है जी।
3: एक आख्या में डी डावे है जी, थोड़ी थोड़ी ये डी डावे
1: आपने
3: जी।
1: जब इन ये टिक्के लगवाए हैं ना गलगोटू मुंह खुर के, उसके 15 दिन होने के बाद जब पशु ठीक हो जाए आपका, तो आप पेट के
3: हाँ।
1: कीड़ों की दवा दे सकते हो।
2: सुनीता जी आप डॉक्टर से मिल लो और वहां दिखा लो, उसके
1: पंद्रह
2: बाद
1: बीस
2: समाधान
1: दिन
2: हो
1: के बाद
2: जाएगा,
1: दे सकते हो आप पेट के कीड़े के,
2: ठीक है?
3: ठीक है ठीक
2: ठीक है जी,
3: है ठीक,
2: धन्यवाद जी।
3: धन्यवाद।
2: हेलो
4: हेलो,
2: हेलो, हाँ जी नाम
4: राम
2: बता दो और
4: राम
2: कहाँ
4: जी,
2: से बोल रहे
4: डॉक्टर
2: हो?
4: साहब, गांव छपार चरखी दादरी जिला जी।
2: छपार से? हाँ अपना नाम
4: हाँ
2: बता दो।
4: राजेंद्र नाम है जी।
2: राजेंद्र जी, हाँ जी बताओ समस्या बताओ, डॉक्टर साहब बैठे हैं
4: एक बेटी ब्याही थी जी, 2-3 दिन हो गया उसमें ब्याही, वो
2: जी।
4: पाव साहब उसी कौन करे जी।
1: खार की ब्याही है जोटी राजेंद्र जी,
4: हाँ खार की ब्याही है जी।
1: पहले दिन जो किल्ली भी निकाली थी
4: हाँ
1: ठीक
4: जी
1: निकली थी,
4: हाँ, वो ऐसे धार दूर कमाए थी, फिर लकड़ी ठीक थी जो कि निकली हुए तो।
1: अच्छा जो अपना काटडू है एक तो वो क्या क्या करके एजे नहीं, एजे है उसने,
4: उसने खूब तट्टे सर दूध दर्द कौन दे जमा भी,
1: तो
4: और
1: आप
4: वो अजवा भी दी।
2: अच्छा अजवा दी।
1: आप मेरी मेरी बात सुनो, आप एक बार इसको गोली आती है इसकी दवाई
4: हाँ जी हाँ जी
1: दूध निकालने से आध पौना घंटा पहले देनी है आपको।
4: अच्छा जी
1: हाँ जेर टाइम से गिरी थी ना,
4: हाँ, देर टाइम तक घेर दी
1: बस
4: थी
1: तो
4: जी
1: बस आप गोली दो इसको और धीरे धीरे आ जाएगी।
4: हाँ जी, कौन सी गोली है जी।
1: गोली आप डॉक्टर अमित से लिखवा लेना,
4: अच्छा जी
1: ठीक है
4: ठीक है
2: ठीक है जी, धन्यवाद जी। राजवीर जी हेलो,
5: नमस्कार सर।
2: नमस्कार जी, नाम बता दो और जगह बता दो।
5: राधे सिंह, गांव झाड़ोदा, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी सर।
2: राधे सिंह झाड़ोदा,
5: राधे सिंह है सर।
2: अच्छा हाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, बताओ अपनी समस्या
5: सर, एक गाय ब्याई है, ताजा देसी गाय है,
2: जी।
5: और कम से कम 5-7 बार की ब्याई है, तो 8 तारीख ने ब्याई थी, और दौड़ा दौड़ा गया है साहब, पहले तो ऐसा नहीं करा पिछली बार तो।
1: कोई जेर का टुकड़ा रहा था क्या?
5: नहीं सर, जेर तो पूरी गिरी है।
1: और 8 तारीख को ब्याई थी, 4 दिन हुए अभी।
5: हाँ सर,
1: और सफेद कब से बना हुआ है?
5: ये ब्याई उस दिन से सफेद ही आ रहा है साहब,
1: नहीं ब्याई उस
5: लंबा।
1: दिन से तो कैसे आया होगा?
5: नहीं सर, जैसे अगले दिन से समझ लो सर।
1: नहीं जेर गेरे होगा, उसके साथ साथ सफेद आया था, बाद में बना है 4 दिन में तो वैसे।
5: नहीं बाद में नहीं, जैसे मान लो ये आज की थी साहब, शाम के टाइम, अगले दिन सुबह में था सर, लंबा कातरा सा था, जैसे एक ब्लाइंड देख का
1: वो अलग है,
5: सफेद।
1: तांतुआ टाइप सा अलग है, और लगातार एक सफेद ज्यादा डाल रही हो तो बताओ।
5: नहीं वैसे नहीं सर, फिर यही लंबा आवाज है बस, आवाज नहीं तो
1: जेर
5: जैसे
1: पूरी आ गई
5: कटाव
1: थी
5: का।
1: बाहर,
5: हाँ जेर पूरी आई थी सर,
1: तो आप या तो ना दवाई आती है छटनी की।
5: छटने की तो दवाई तो लिया था साहब, आज जो जेर किरण वाले जो
1: हाँ हाँ
5: कटाव
1: हाँ
5: के
1: हाँ हाँ हाँ
5: शीशियां
1: हाँ
5: हो
1: हाँ
5: जो
1: जी हाँ जी
5: वहाँ दी दी थी, और बाकी कैल्शियम की भी शीशी चेर दी थी, क्यों गाय बैठ गई थी साहब अगले दिन, जैसे
1: हाँ
5: जाए ना
1: ठीक है
5: दूसरे
1: ठीक है, वो
5: दिन में।
1: आपने सही करा, कैल्शियम दे दी और वो दे दी। अब हफ्ता एक रुक के ना गोली
5: हाँ
1: देनी है
5: सर,
1: आपने, या दवाई पिलाओ इतना थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा मत पिलाना,
5: हाँ सर, चलो
1: तो ये ज़्यादा डंगा होगा ना वो बाहर आ जाएगा, उसके बाद इसकी सफाई करी जाएगी।
5: ठीक है सर। दवाई कौन सी है सर।
1: दवाई अपने अस्पताल में भी है, एक बार जाओगे ना डॉक्टर से बात करोगे हॉस्पिटल में होगी तो दे देंगे, नहीं तो आपको बता देंगे।
2: हाँ, वो लिख देंगे।
1: गोली भी आती है और पिलाने की भी आती है, जो आपका पशु आराम से ले ले वो ले आना।
5: चलो ठीक है,
2: ठीक है जी, धन्यवाद जी। हेलो हेलो
6: जी, राम
2: राम। राम जी, नाम बता दो और जगह बता दो।
6: अनुज
2: मुंडार से। हाँ, अपनी समस्या बताओ। हाँ, पशु बारे में जी।
1: ठीक हो जाएगी। अब गलघोंटू मुखर के टीका लगवाया उसका? लगवा दिया। 15-20 दिन बाद एक पेट के कीड़े की दे दी और खनिज मिश्रण शुरू कर दो उसका, ठीक है, हो जाएगी।
2: हो जाएगी फिर डॉक्टर साहब कह रहे हैं, कोई उसी बात नहीं है। हरा चारा आप लोग उसमें चक्कर डालो और पानी,
1: गोबर नहीं तो गोबर चेक करवा लेना एक बार फिर।
2: हेलो,
1: हाँ बोलो बोलो। हाँ, खार की रोटी 2 महीने की।
2: नहीं डॉक्टर साहब, आवाज नहीं, फोन कट गया और दूसरा फोन लेते हैं। हेलो
7: जी, नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, नाम बता दो और जगह बता दो।
7: राजेंद्र सांगी।
2: राजेंद्र जी सांगी से। हाँ, समस्या बताओ।
7: समस्या यह है जी, काल बहुत अच्छी आपने वो बताई, डॉक्टर मलिक साहब ने जो थनेला रोग की वो बताई थी।
2: हाँ,
7: वो बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया।
2: चलो बढ़िया थी। ऐसा है राजेंद्र जी, बताओ अगर कोई समस्या है तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप बताओ।
7: कोई समस्या नहीं, काल सुन लीजिए, बहुत बढ़िया था जी। ऐसे ऐसे तजर्बेकार को बुलाया करो।
2: ठीक है, तो जरूर बेकार है बात। ये डॉक्टर संतोष कुमारी जी बैठे हैं, आप देखो अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान करो, हो जाएगा। कोई कोई बात नहीं है जी।
7: ना ना, हो जाएगा। संतोष कुमारी ठीक
2: है। हाँ ठीक है, ये आप वो कर लेंगे। चलो ठीक है जी, आपकी कोई समस्या नहीं है तो धन्यवाद जी। हेलो, हाँ जी, राम राम जी। नाम बताओ, जगह बता दो जी।
1: नमस्कार जी,
2: नाम बता दो जी अपना जी।
7: नाम मांगेराम बोला जी, की
2: मांगेराम जी। हाँ जी, अपनी समस्या बताओ जी।
7: समस्या आज एक बड़की का टीका दरवाया जी।
2: जी,
7: 2 घंटा पहले उसके के खान पान करा, के खुराक दिया उन्हें।
1: बड़की है?
7: हाँ, टीका दरवाया, नहीं होने का
1: जी, नहीं जी। मैं ये कह रही हूँ, देसी नस्ल की है क्या, दोगली है, किस तरह है?
7: देसी है जी।
1: 2-2.5 साल की है?
7: ना ना, बैरी है, 2 महीना ही बैरी होगी।
1: अच्छा अच्छा, खार की बैरी है।
7: हाँ हाँ, खार की बैरी जी।
1: अब देखो, अगर पहले से दे रहे हो तो अच्छी बात है, खनिज मिश्रण ही शुरुआत करनी है आपको।
7: अच्छा जी।
1: हाँ, मानने में ही मदद करेंगे, नहीं मानेगी तो अगले 20 दिन पे खुल के आमा आओगे वो, ठीक है जी।
7: अच्छा जी। और एक बच्ची मट्टी खाए हैं कि जमेड़ी है, वाह।
1: 2 महीने की है?
7: हाँ, 2 महीने जी। उसकी दवाई और बताओ।
1: उसके पेट के कीड़ों की दवा लेके आओ सबसे पहले।
7: कौन सी दवाई लेनी है जी?
1: पेट के कीड़ों की आपको अस्पताल में जाओगे मिल जाएगी आपको,
2: वही अस्पताल में मिल जाएगी जी,
1: वो दो सबसे पहले,
2: ठीक है।
7: अच्छा अच्छा,
2: हाँ ठीक है जी, धन्यवाद
7: जी। राम राम जी।
2: राम राम जी। हेलो, ते हेलो।
8: नमस्कार
2: जी, अपना नाम बता दो और जगह बता दो जी।
8: सुरेश कुमार सांगला।
2: सुरेश कुमार जी, हाँ जी, समस्या बताओ अपनी।
8: हफ्ते पर कटड़ा खुला गया था जी।
2: जी,
8: 9-10 महीने का जो चाट चोट खा गया दलिया दलिया, तो उसमें मतलब पेशाब पानी तो ठीक कर रहा, पानी कम पी रहा।
1: कब खाया था दलिया दलिया?
8: एक हफ्ता हो गया।
1: एक हफ्ता आप लेट हो रहे हो, देखो पूछने में ये चीज। ये उसी दिन आपको, आप जिससे भी आपके पशु दिखाते हो या आपका गांव में जो अस्पताल है उसमें जाके उसी दिन दिखाना था। गोबर ठीक कर रहे हैं?
8: हाँ, गोबर ठीक कर रहे हैं, पेशाब भी ठीक कर रहे।
1: दस्त दस्त लगे थे क्या?
8: ना, दस्त कौन लगे।
1: कितना खाया था दलिया?
8: दलिया के बताऊं जी, रात ना खुला उड़ा था।
1: अरे रखा होगा ना अपने घर में, पता तो होता है भाई, इतना रखा है इतना कम होगा।
2: नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कच्चा रख रहा है क्या, वो कच्चा खा गया।
1: हाँ भाई, उसका भी आइडिया होता है भाई, इतना खा गया। अगर ज्यादा खा गया ना, अगर एक मिनट
2: एक बार सुन लो जी,
1: 9-10 दिन हो गए ना तो मेरे ख्याल में अब नहीं आओगी समस्या। वैसे उस टाइम क्या करते है, उसके दस्त लगवा दो।
8: अच्छा।
1: हाँ, और थोड़ा बहुत जैसे हाजमे की उसी दिन दे दो। अगर ज्यादा समस्या है तो फिर क्या है कि हमें भाई नस नुस में हमें दवाई चढ़ानी पड़ती है, या फिर आप
8: तो कोई समस्या कौन दिन में थोड़ी पानी थोड़ा कम पी रहा है।
1: एक बार मीठा सोडा दे देना थोड़ा सा आप।
8: ठीक है।
2: और ताजा पानी पिलाया करो इसमें।
1: ठीक है। और कुछ जो मेन तो कारण होता है जो पेट के कीड़े जूं

0: अभी आज, वो अभी आ गई 8 तारीख ने 4 दिन का, तो अभी फर्क कुछ ला ले। सेहत बाड़ी उसकी बिल्कुल ओके है, दूध 100 ग्राम है, ईस्टा खाली करिया बात है।
1: छोड़ी कब थी ये वजीर, जैसे नाटी कितने दिन थे?
0: छोड़ी थी जी तीसरा महीना चढ़ दो,
1: तीसरा महीना, दो
0: पांचवा,
1: 3 महीने नाटे हैं।
0: हाँ जी 3 महीने हो गए छोड़ी ने, की सही कर दिया।
1: जब ये एक मिनट वजीर, जब ये नाटी थी दूध से, जब कोई दूध में समस्या, थना में कोई समस्या थी इसका?
0: ना जी कोई नहीं थी,
1: कोई नहीं थी
0: ना, सही सलाम लाटी, 2-2.5 किलो दूध था जी छोड़ दी थी।
1: अच्छा, चरा पीवा तब से और आज तक बिल्कुल सही चर पी रही है?
0: हाँ सही चर रही है, बुखार चेक करा लिया, कोई बुखार नहीं, ब्याई सही, अपना आप जेर गेरी सही
1: इसका। फिर देखो, अगर चरे पीवे भी ठीक है, नाटी भी, मतलब सब कुछ ठीक था, पीछे कोई, कई बार क्या होता है कि मान लिया सोई आई और आपने ना देखी हो, कोई लेवटी में या ओड़ी में कोई अपना फर्क लग गया है?
0: ना जी, कोई फर्क नहीं, ब्याण दा पहला लोटी सही थी और कीस भी सही लिकड़िया,
1: और अभी अभी लेवटी किस तरह है?
0: इब तो लोटी हो नहीं रही, न्यू लग गया तो ब्याह नहीं रही।
1: अब तो 4 दिन में ना फिर थनेला है वो, देखो अगर आप बताओ किल्ली भी सही निकले तो थनेला है इसमें,
0: और फिर दूध जमा साफ है जी,
1: करड़ापन है ओड़ी में?
0: ना कोई करड़ापन के लोटी दोनों लग गया दिनवाए नहीं, दूध बिल्कुल साफ है मिठा, चेहरे का चेक कर लिया मैंने,
1: तो आप इसने जितना भी है ना, ये एक बार दूध चेक करवा लो, थनेला ही है
0: कोई
1: ये।
0: ना जी, थनेला रोग में तो बुखार हो जाता जरूरी, पक्कर
1: ना ना
0: लाल
1: ना
0: हो
1: ना, देखो
0: जाता।
1: आप यूं नहीं, बुखार कईया में हुआ कईया में नहीं, अलग अलग कीटाणु हैं।
0: अच्छा जी,
1: हाँ,
0: फिर इसका
1: चर
0: दूध चेक
1: चर्पी
0: करवा,
1: सही रहे। हाँ, तो पशु अगर चरे भी ठीक है, सारा के में ठीक है, चालन में कोई समस्या नहीं है पशु के?
0: ना अच्छा,
1: जे
0: बयान का पहला 3 दिन दस्त तो लग गए देश का
1: दस्त, कोई बात नहीं, दस्त का कई तो नया तूड़ा चल रहा है, कई चीजें गर्मी
0: ना।
1: की वजह से भी है।
0: हाँ यह बात
1: हाँ हाँ
0: मानी,
1: हाँ
0: ना माने इसका कुछ खैद खुराक दी, 6 लीटर तेल कड़िया का पिया था इसका 2 महीने में, 100-100, 200-200 ग्राम में 6 किलो तेल फिर
1: उससे
0: सुनवा।
1: उससे दूध में आप नहाने में कोई वो नहीं, आप दूध चेक कराओगे सबसे पहले, और
0: अच्छा जी,
1: लेट मत करना क्योंकि 4 दिन ज्यादा हो गए, दोबारा फिर ओड़ी बनना रही, उसमें टाइम लगेगा फिर।
0: कोई बात नहीं जी, कल ना
1: हाँ
0: करा देंगे।
1: हाँ कल जल्दी, मतलब
0: हाँ
1: जितना, और फिर अपने नजदीकी जो भी आपका पशु उनको
0: जी
1: रिपोर्ट
0: कत्थल
1: दिखाओ।
0: है जी, 5 किलोमीटर है,
1: हाँ, रिपोर्ट दिखाओ और इलाज जल्दी से जल्दी कराओ।
0: ठीक है जी,
2: चलो,
0: ठीक। कोई देसी उपाय नहीं जी, वो भी कर जाए आज।
1: देसी है वैसे, देसी अगर वो बताओगे तो, ये जैसे ग्वार पट्टा है, एलोवेरा नहीं बोलते हैं इसका है वो,
0: हाँ
1: पर
0: हाँ जी
1: इसके बिल्कुल ही खत्म हो रही है ना, तो आपको अभी अंग्रेजी करवाना पड़ेगा, और तब
0: ठीक
1: तक
0: है,
1: आप जो रोटी चौपड़न की अगर कभी पहले दी हो आप ना, वो शुरू कर सकते हो,
0: नवा नहीं दे जी कदे, ठीक
1: वह अभी शुरू कर सकते हो आप, कोई
0: है
1: फूल फाल की समस्या ना हो वो शुरू कर सकते हो
0: ना,
1: आप।
0: फूल तो कदे दिखाया नहीं भी,
1: हाँ, तो वो शुरू कर लेना तब तक आप,
0: ठीक है
1: और दूध
0: चलो,
1: चेक करवा लो।
2: ठीक है जी, धन्यवाद जी।
0: ठीक धन्यवाद।
2: हेलो, तो डॉक्टर साहब जिस
1: नहीं देनी चाहिए, नाल की जरूरत नहीं है उनको, वैसे
2: अच्छा
1: तो बहुत
2: मतलब
1: तजुर्बेकार हो है, हम बड़े
2: जी,
1: पशुओं को कहते हैं, लेकिन नाल छोटे पशु को देने की जरूरत नहीं है आपको।
2: अच्छा जी,
1: हाँ, कोई जरूरत नहीं है आपको, वैसे दूध कुछ दिन तो पिलाना भी चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वह व्यावसायिक हो चुका तो भी दूध पिलाना जरूरी है
2: ना
1: उसको,
2: जी वो तो
1: क्योंकि
2: बात
1: जो
2: सही है
1: दूध से,
2: जी,
1: जो उसकी माँ के दूध से जो ताकत आएगी ना, वो बाहर हम कुछ भी पिलाएंगे उससे नहीं आएगी।
2: जी हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके
1: हाँ,
2: उसके
1: और
2: दूध
1: वो नहीं
2: आवे जी
1: होगी तो वो आगे का पूरी जिंदगी है फिर वो रोगों से घिरा रहेगा।
2: जी
1: हाँ, लेकिन इस गर्मी के टाइम में जो उसमें विटामिन हैं, हम वैसे भी जो हम जो रोटी चोपड़न की बोलते हैं उसमें भी विटामिन सी होते हैं, तो
2: जी
1: आप उसकी पूर्ति के लिए और कुछ एक हद तक आप दे सकते हो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दोगे तो आप उसको वो चरना बंद कर देगी।
2: तो उसमें कितना देर देना चाहिए डॉक्टर साहब, मान लिया एक दो
1: अगर
2: दारू के
1: एक
2: दिन?
1: खुराक में आप 100 से 150 हम बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 200, हम हमेशा कहते हैं कि 100-150 ग्राम, अगर आपको बहुत ज़्यादा पशुपालक कहते हैं कि घी दे दूँ घी दे दूँ, आप
2: जी,
1: इससे ज़्यादा एक बार में मत दो।
2: और कितने दिन में दो डॉक्टर साहब, मान लिया एक बार में 200 ग्राम दे दिया, कितने दिनों, यानी
1: आपके
2: 15 दिन?
1: पशु, मैं तो एडवाइज ही नहीं करूँगी हम तो, कि
2: अच्छा
1: मत
2: अच्छा
1: दो। हाँ,
2: हाँ
1: हम
2: यानी
1: एडवाइज
2: ये
1: एडवाइज ही नहीं करेंगे, हम
2: जी
1: प्रेस्यूम
2: ठीक,
1: नहीं
2: चलो
1: करेंगे।
2: बढ़िया डॉक्टर साहब, ये भी चलो हमारे श्रोता या
1: और
2: पशुपालक
1: फिर
2: अभी
1: भी अगर
2: उसमें
1: वो नहीं है तो मैं तो कह रहा हूँ, और इसके अनुसार आप दे सकते हो, पशु की कोई गर्मी लग रही है या कुछ है उस हिसाब से, देसी आप अलग करो, हम आपको दूसरी चीज़ बताएंगे कि उसे।
2: तो डॉक्टर साहब जिस तरह मान लिया इसकी खीश की बात आ, खीश से कितनी देर में निकाल लेना चाहिए, पशु भी आया है और उसके कई घंटे भीतर निकाल लेना चाहिए?
1: आप एक उसको 2 घंटे के अंदर, दो भी जहाँ 2 घंटे के अंदर अंदर उसको आप उसको,
2: खाली
1: बल्कि
2: कर दे भैंस
1: हाँ
2: को?
1: खाली नहीं करनी, खाली तो
2: अच्छा
1: आपके 3 दिन तक खाली। हाँ, ये बात जरूर आपने कही, खाली तो बिल्कुल नहीं करनी 3 दिन तक वो,
2: अच्छा जी
1: क्योंकि उसमें एकदम जैसे वो फिर वो सुन्नपात में आ सकता है पशु।
2: जी
1: ये खास ध्यान रखिए कि शुरू के जो 3-4 दिन है उसमें खाली मत करो, और

0: उसके बाद क्या है कि मतलब थनों में कभी दूध छोड़ना नहीं चाहिए, उससे थनेला बन सकता है वह।
1: अच्छा जी,
0: हाँ बिल्कुल खाली नहीं करने।
1: जी
0: हाँ
1: थोड़ा इशाक रख ले कि मान लिया आधा किलो किलो दूध रख ले पशु में,
0: हाँ बस
1: इतना रख
0: थोड़ा,
1: सके
0: हाँ
1: जी।
0: हाँ बिल्कुल हरा चारा थोड़ा, हाँ आपको 10-15 दिन में शुरू करना है,
1: अच्छा, हरा चारा 10-15 दिन बाद
0: दस
1: शुरू
0: एक हाँ
1: करना है।
0: दिन बाद, थोड़ा सा लेट, हफ्ता तो कम से कम लगाओ, उसके बाद 10-15 दिन में शुरू करना आप, धीरे धीरे बढ़ाना। चाट भी शुरुआत कर सकते हो आप, चाट शुरू थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और फिर आप 15 दिन पे, आप 10 दिन पे पूरा दे सकते हो आप उसको।
1: तो डॉक्टर साहब
0: आप
1: एक मिनट रुक, देखते एक बार
0: सीजन के,
1: फोन आ गया
0: हाँ
1: जी, फोन सुनते हैं। हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार जी, नाम बता दो और जगह बता दो।
2: हाँ जी, आकाशवाणी दूरदर्शन से हो क्या?
1: हाँ जी
2: नमस्कार जी,
1: नमस्कार जी, नाम बता दो।
2: मेरा नाम जैक्सन है जी, गांव खातीवास से हूँ,
1: जय किशन खातीवास से। हाँ जी बहुत बहुत
2: जिला
1: समस्या,
2: झज्जर
1: हाँ
2: से।
1: झज्जर से समस्या बताओ जी अपनी जी।
2: समस्या ये जी कि जोड़े खुआर की ब्याह होगी,
1: जी
2: इसके बाद 10वां मैं लागी जाए, 10वां महीना में लागी जाए,
1: हाँ बोलो आगे बोलो।
2: उसका वो जिलका से उतर बहुत ज्यादा उतर रहा है,
0: क्या उतर रहा है जैक्सन जी?
2: जिलका नहीं हो जो सोजन सा हो जाए। हाँ
0: ओडी में, लेवटी में?
2: लेवटी में जी,
0: उसका अगर ज्यादा है ना कोई, एक तो नॉर्मल सा हो और ज्यादा है तो फिर आपने डॉक्टर ने दिखाना पड़ेगा देखो।
2: अच्छा जी,
0: हाँ क्योंकि कई बार क्या है
2: हाँ जी,
0: पशुपालक ये सोचता है कि आलस है और जब आप ब्याने के बाद आपको लगेगा
2: हाँ
0: फिर उसमें दूध में समस्या होगी तब आपको पता लगेगा कि थनेला है।
2: अच्छा,
0: आप एक बार जैसे नुहाओ धुआओ उसने थोड़ा हाथ लगा के देख लेना, कहीं दर्द या किसी तरह का या कोई करड़ापन है या
2: नहीं
0: कुछ
2: तगड़ापन
0: ऐसा, ये जरूर देख लेना,
2: कोना जी कतीरी,
1: अच्छा
0: कोई दर्द है या
2: वहाँ
0: कुछ।
2: दर्द वैसे दर्द कोना, वैसे बस थोड़ी जून झलका सा है।
0: फिर आप एक दो एक आधी गोली उनसे लिखवा सकते हो कोई दवाई और वो दे देना आप, हो जाएगी इस्ट।
2: अच्छा जी,
0: हाँ
2: नमस्कार जी,
0: ठीक है,
1: नमस्कार जी नमस्कार।
2: अच्छा
1: हेलो, तो डॉक्टर साहब भी इस तरह आपने बताया कि मान लिया गुड़ का गुड़ उसी टाइम पर दे सकते हैं हम जी, उसमें तालाब में किस टाइम से ले जाऊँ जी फिर पशु ने, ब्याने के कई घंटे बाद ले जाना चाहिए
0: नहीं,
1: पशु ने?
0: ब्याने के तुरंत बाद तो नहीं लेके जाओगे उसको,
1: हाँ
0: क्योंकि ब्याने में पशु एक दूसरा वो लगाओ उसका भी,
1: हाँ
0: पशु का
1: दूसरा
0: शरीर
1: जन्म
0: का।
1: हो
0: हाँ
1: जैसे ही
0: आपको तो
1: बताया जी,
0: उसी टाइम नहीं ले जा सकते आप,
1: नहीं कई घंटे बाद जिसमें वैसे।
0: नहीं उस दिन मेरे हिसाब से मत लेके जाओ उसको।
1: अच्छा, और वैसे भी जी आजकल जो तालाब, तो जो गांव में तालाब बहुत गंदा पानी हो रहा है जिसमें और
0: वो
1: इन्फेक्शन लग
0: आपने, वो
1: जाता
0: तो
1: है खड़े।
0: देखो गांव के स्तर पे है कि पानी स्वच्छ होना चाहिए,
1: अच्छा
0: ताज़ा,
1: अच्छा
0: हाँ
1: जी
0: उनका स्वच्छ पानी हो, उसी में लेके जाओ, ले
1: डॉक्टर
0: जाने
1: साहब,
0: जरूर है लेकिन पानी स्वच्छ, तो ये तो आपका आपस का वो है कि स्वच्छ रखो पशुओं के पीने का पानी भी।
1: जी ईब गर्मी आ रही है डॉक्टर साहब, खूब कितनी गर्मी पड़ रहा है इसमें, एक चीज़ का और देखे पानी इतना गर्म है क्या पशु पेट भर के पी नहीं पी पाते, तो उसमें क्या करना चाहिए मुझे?
0: नहीं तालाब का पानी गर्म नहीं मिलेगा आपको,
1: नहीं तालाब, तालाब का तो गंदा जी वहाँ तो न, उसमें ले जाने में पशु नुकसान हो, जब मान लिया घर गाँव इसमें
0: घरे
1: घर पे
0: वाले में
1: टंकी
0: आपको
1: रखे तो।
0: मिला के देना पड़ेगा, आप मटके में रखो या किसी में रखो, आपको पानी गर्म नहीं, गर्म थोड़ी पिलाओगे उसको, आप मटके का मिक्स करके पिलाओगे या कहीं ना कहीं तो रखोगे, हम अपने लिए भी रखते हैं तो पशुओं का भी ध्यान रखना है हमें।
1: अपने लिए तो रखे डॉक्टर साहब, ये जिस तरह मान लिया ऊपर टंकियां रखी बनवा रखी हैं जी, उनमें गर्म हो जाता है जी
0: उसके लिए
1: पानी?
0: मैं पानी उनको गर्म नहीं पिलाना इस
1: अच्छा
0: टाइम,
1: अच्छा
0: बस मैं ये
1: पानी
0: बताऊंगी आपको।
1: ताज़ा, जिस तरह ट्यूबवेल का ताज़ा पानी है जी, या उसका टूटियों का आ जा ताज़ा आ जा वो पिला ले उसमें, यानी
0: हाँ
1: गर्म
0: वो
1: पानी
0: पिला
1: नहीं
0: सकते,
1: पिलाना,
0: ताज़ा, हाँ ताज़ा पिला
1: उसमें मिला
0: सकते
1: के
0: हैं,
1: पिला दे उसमें
0: हाँ
1: जी। अच्छा जी
0: बहुत ठंडा पिलाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन गर्म नहीं पिलाना, नॉर्मल सा थोड़ा बहुत तो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
1: अच्छा अच्छा जी, तो चलो कई बार फिर एक ये देखें डॉक्टर साहब वे जो, क्योंकि पशु बाहर तो खुलते नहीं जी, घर रहे हैं जी और उनके खुरबट जाए जी, तो
0: नहीं
1: उसके
0: बाहर
1: लिए
0: भी ले जाते हैं आजकल, कम से कम तालाब में जरूर लेके जाओ, थोड़ा बहुत खोल लोगे ना तो भी फर्क रहता है।
1: डॉक्टर साहब लगता है फोन आ
2: हाँ
1: गया है। हेलो
2: नमस्कार जी,
1: नमस्कार जी, नाम बता दो और जगह बता दो जी।
2: राजेश पांडवान। हाँ
1: राजेश पांडवान थे? हाँ जी समस्या बताओ जी अपनी जी।
2: समस्या है जी, गावड़ी सवा तीजी ब्याह होगी जी, वह हुआ है 8-9 किलो दूध दे है जी,
1: गाय?
2: गाय
1: अच्छा
2: और याड़ी भी ठीक से है,
1: तो डॉक्टर साहब बताओ
0: तीसरी
1: जी,
0: ब्याली के ब्याह होगी,
2: इब तो तीसरी ब्याह होगी, 2 महीना रह गया जी, दूध दे सी बे मड़ो मड़ो 1 किलो दे दोनों टेम में,
0: नहीं अभी 8-9 किलो बता रहे थे आप,
2: 8-9 किलो ब्याह जी, 8-9 किलो तो ऊपर बताए कोनी,
0: अच्छा कोई नहीं, वो तो जैसा देखो खरना हो, कौन सी है, या देसी है कि दोगली है?
2: दोगली
1: दोगली
2: दोगली
1: है
2: बताओ जी, मैंने तो आधा देसी बताओ जी, काला रंग है।
0: देखो ये जैसा, वो तो जैसा खरना होगा ना देखो दूध उतना होता है, बाकी आप अपनी खुबात के अनुसार 1.5-2 किलो का फर्क ला सकते हो, उसको अच्छा चारा, अच्छा जो उसका खान पान बढ़िया करोगे
2: चारा तो
0: तो।
2: खूब दे रहा हाँ जी, हम छह किलो चाट के रहा जी, तीन तड़के तीन सांझी दूध वे आठ किलो।
0: मैंने क्या बताया कि जितना जैसा खरना होगा ना उसका नस्ल जैसी होती है दूध तो उतना ही बनाएगी।
2: कार की दूध जन तीज का असर कौन हो जी के मैं
0: फर्क रहेगा, दूध जन तीजन का दूध बढ़ना चाहिए।
2: आप छोटे का भी इतना है तो कार की का भी इतना है तो जी आठ नौ किलो।
0: अभी कितने दिन रहते हैं उसके बयान के?
1: दो महीने रहे,
2: दो महीने रह गए जी।
0: पंद्रह अभी दे कितना रही है वो?
2: एक किलो दे सी दोनों टाइम
0: तो वह नाटन वाली होगी। अब
2: नाटे तो कोई जो बिना न्याणे काट लिया दूध तो
0: नहीं नाटे की तो महीना डेढ़ महीना छोड़ते होगे उसको।
2: छोड़ा हाँ जी हम जान कर की छोड़ा हाँ जी।
0: हाँ तो डेढ़ एक महीना रोके तो फिर आप या तो मिल लियो दादरी मिल लियो या कहीं भी मिलकर ना आपको खुराक बता देंगे ठीक है।
2: दादरी फिर मन बेरा कौन जी कड़े सी मिलो
0: सिटी थाना के सामने अस्पताल।
2: अच्छा जी
1: अस्पताल में जा डॉक्टर साहब से मिल लियो वो बता देंगे अपने ठीक है ना।
0: खुराक देना फर्क पड़ेगा जरूर। बाकी तो दूसरे ब्यात माले है तीसरा में भी बड़ा है पशु का दूध चौथा पांचवा में फिर उतना रहता है। नाब की बार बढ़ेगा
1: बढ़ जाएगा आप खुराक और डॉक्टर साहब से मिल लियो ठीक है।
0: थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा देखो ठीक है।
2: दो एक किलो को पड़ जाए जी
0: पड़ जाएगा आराम तो पड़ेगा ठीक है।
2: ठीक है जी
1: राजेश जी ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब इसमें ये देखे जिस तरह ये बता दिए नशे में शायद बता दी कि दूध उतने बढ़े नहीं रही तो इसके लिए तो आपने ये देख बता दिया जिस तरह उसका पूर्वज देखे जाएंगे उसकी
0: नसल नसल पे फर्क होता है कितना अच्छा कितना दूध की थी उसकी माँ का भी है और फिर सीमन की है मतलब जो हमारा कृत्रिम गर्भाधान से हुई है या वैसे ही किसी उससे करवाई
1: से हुई है जी।
0: क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो कृत्रिम गर्भाधान भी करवाते हैं वो भी अपनी मर्जी से करवा लिया भाई उसका बाकी जो नस्ल होती है उसके अनुसार ही किया जाता है।
1: अच्छा जी।
0: हाँ तो उसने दूध कब होता है फिर ये कहेंगे ना तो टिक्के की है दूध बनाया है नहीं इसने
1: जी।
0: हाँ तो लेकिन दूध का जो है उसके अनुसार किया है नहीं साइंस उसमें रही नहीं तो इसलिए कई बार दूध कम हो जाता है। कई बार माँ का दूध ज्यादा होता है और जो उसके आगे आएगी अगली जो कटड़ा कटड़ी आएगी या बछड़ी आएगी उसका दूध कम हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब जिस तरह कृत्रिम गर्भाधान की बात बताई आपने
0: कृत्रिम गर्भाधान का पहली बात तो जो यहाँ से जो कटड़ा या बछड़ा खरीद कर लेके जाएंगे जिसका भी जो HLDB भी हमारा जो
1: जी
0: है बोर्ड जो हमारा है हरियाणा का
1: जी
0: उसका जो उन्हीं का बेचते हैं वो जो सीमन जो बेचते हैं जो अच्छे जो जिनका उत्पादन रहा हो जिनकी माओं का उन्हीं का खरीद के ले जाते हैं सारी बीमारियां चेक करके तब भेजा जाता है। हाँ तो वो तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आप जो जिस कि आपके जो घर में जो आपकी बच्चिया है या जो कटिया है वो देखनी है आपको कि किस उससे है किस को बढ़ा रहे हो आप। चलाया है ये नस्ल सुधार के लिए प्रोग्राम था कार्यक्रम ही उसी का है ये।
1: हाँ डॉक्टर साहब एक तो देखा है जो गांव में भी जहाँ भी देखा बड़ी बढ़िया बढ़िया नस्ल के पशु हो रहे हैं जी।
0: हाँ उसी के अनुसार अगर चलेंगे कई बार हम इधर उधर से करवा लिया या ठीक है गाय है गाय का ज्यादातर इतना ध्यान नहीं देते कई गांवों में है कई पशुपालक हैं कि हाँ ठीक है वैसे खुले उससे करवा लेते हैं भाई नेचुरल जो है नॉर्मल करवा लेते हैं गर्भाधान उससे नहीं करवाते तो उसमें भी दिक्कत आती है।
1: डॉक्टर साहब अब तो ये देखा जिस तरह कृत्रिम गर्भाधान से खासकर भैंसों में तो बहुत ज्यादा सुधार आ रहा है जी। जी देखा कि बहुत बढ़िया बढ़िया दूध देने वाली ज्यादा दूध देने वाली हो गई
0: लोगों को देखो जो
1: डॉक्टर साहब एक बार भी आपने फिर रोकेंगे लगता है फोन आ गया। हेलो
3: हेलो
1: हाँ जी राम राम जी नाम बता दो और जगह बता दो
3: जी। राजवीर है जी फतेहगढ़ गांव से।
1: क्या नाम बताया?
3: राजवीर।
1: राजवीर फतेहगढ़ से। हाँ जी समस्या बताओ डॉक्टर साहब बैठे हैं।
3: समस्या ये है जी ये कटिया है ये ऊपर ना बड़ वार ले रही ना और के मैं इनकी कोई डॉक्टर साहब से वो पूछनी थी कोई टॉनिक टाने की थी कोई।
0: कितने कितने महीने की है कटिया?
3: ये जी सवा साल की हो जी।
0: सवा साल की है। राजवीर जी ये है देखो हम यही कहते हैं चलो आपने जल्दी संभाल ली कई तो क्या है कि जब तीन साल की हो जाएगी तब संभालेंगे तो जो जब ये जन्म लेती है ना कटिया उसी दिन से करो बल्कि वैसे तो उसकी माँ का भी ध्यान रखना होता है जन्म लेती है तब से ध्यान रखना है।
3: हाँ जी।
0: और अब इसके लिए तो आप क्या है कि अब एक आता है अपने जो आपके डॉक्टर सतीश आते होंगे या और कोई है उनसे लिखवा के हाँ पाउडर आप अभी भी शुरू कर सकते हो आप इसका चूर्ण और बाकी हाँ बोलो हाँ जी
3: उनने बताया।
0: ये देखो मुझे समझ नहीं आया अगर आप गलघोटू के टिक्के लगवाए हो ना आपने
3: हाँ जी
0: तो इसके 15-20 दिन बाद या महीने बाद एक पेट के कीड़े की दे लियो इसने ठीक है और एक आता है मतलब उनसे लिखवा लेना आप अपने डॉक्टर सतीश कभी चक्कर लगे उनका या आपका लगे उधर पैतावास
3: ठीक है जी, लिखवा
0: हाँ
3: लेंगे।
0: हाँ और वो शुरू कर देगा। और बाकी और ये और है जैसे खनिज मिश्रण, तो आप बाकी पशुओं डालते हो ना आप,
3: जी
0: तो इनको भी डालना होता है
3: कटिया को देते हैं जी।
0: सबको। मैं यही बता रही थी कि जो पहले दिन से करो, ये नहीं कि बाद में आगे भी।

0: कटिया उपरना नहीं हो रही है ना, पहले दिन से दूध पिलाओ, उसके बाद इसका अगर दूध कम है तो बाहर से कुछ खिलाओ, और खनिज मिश्रण सभी को, ठीक है।
1: और ये पेट के कीड़ा का इलाज जरूर करवाओ इसके का।
2: ठीक है जी, मतलब ये 10 ही दिन हो गया जी, मतलब ये इंजेक्शन का घोटो वाला कि फिर पेट का कीड़ा की दे दीजिए, 2 3 दिन हो गए
0: नहीं अभी नहीं देनी चाहिए थे आपको,
2: ना जी, वो फिर इस बात का ज्ञान कौन था मन तो वो दे दी।
0: नहीं फिर आप कहीं से लाए होगे तो बतानी चाहिए ना आपको। अब
1: 10 15 दिन बाद के हैं डॉक्टर साहब।
0: हाँ, कोई भी किसी तरह का भी आप वैक्सीन या टीकाकरण करवाते हैं ना, टीकाकरण
2: हाँ
0: इम्यूनाइजेशन के
2: जी,
0: लिए प्रतिरोध।
1: हेलो हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी, राम राम जी, नाम बता दो और जगह बता दो।
2: राम राम जी। नाम चौधरी रामपुर सांगवान, गांव बराड़खेड़ा, जिला जींद।
1: रामफूल सांगवान, बुराड़ खेड़ा। हाँ जी, समस्या बताओ अपनी।
2: पशुआ का होगा
1: हाँ,
2: से
1: पशुआ का है जी, बताओ।
2: एक अच्छी तगड़ी झोटड़ी है, उसके दो डेढ़ एक महीना बयान कर रह रहा है, उसका कई बार बन गया है, गर्म सर्दी बताते हैं डॉक्टर।
1: जी
0: गर्म सर्द कई बार, जैसे अब गर्मी है ना मान लिया, ऐसा तो आप ध्यान रख रहे होंगे, एकदम गर्मी में पानी पिलाना या नहलाना ऐसा तो नहीं किया?
2: ना, बिल्कुल भी नहीं करते यू काम
0: भी ठंडा गर्म पानी का कुछ ऐसा
2: ना,
0: फिर तो नहीं बनना चाहिए।
2: बेरहनी के बाद सर डॉक्टर टीके ला के जाए फिर ठीक हो गया है
0: नहीं, आजमा में कोई गोबर में कोई ज्यादा समस्या है इसके या नॉर्मल करे
2: ना,
0: गोबर?
2: गोबर ठीक करे है साहब।
0: देखो एक बार इसका, फिर भी मैं ये चाहूंगी कि गोबर चेक करवा लो, और आजमा का कोई पाउडर जैसे आपने दे रखा हो या डॉक्टर से लिखवा रखा हो वो दो सिर्फ
2: वो झूठ बोल रहा है फिर, गर्म सर्द को
0: ना।
2: नोरे कहेंगे
0: नहीं
2: टिक्की
0: नहीं
2: लावा है। हाँ
0: और कहेंगे नहीं, जैसे क्या है आप इना इलाज करवाया फर्क लग गया, एक बार इसकी जांच करवाओगे तो पता लग जाएगा कारण, ठीक है जी।
1: गोबर टेस्ट करवा लो इसका जी, रामपुर जी।
2: गोबर ठीक करे है वाह, अच्छी
0: कोई बात नहीं, उसका पता लग जाएगा एक बार। अच्छा,
2: बात।
0: या फिर एक
2: तो
0: बार इस टाइम क्या होता है कि जो मक्खी हैं कई तरह की,
2: हाँ
0: उनके कारण भी कई है, हल्का फुल्का बन जाता है, कई हमें बुखार ज़्यादा आ जाए, कई हमें कई तरह की है ये समस्या इस टाइम। एक तो या तो मक्खी मच्छर का उसके है,
2: ठीक,
0: हाँ, या फिर अंदर के ये रहेंगे कीड़े का ही।
1: तो ये भी आप एक बार टेस्ट करवा रहे हो ना इसका।
2: अरे का जी, रेत में मुंह अभी मार ले है
0: फिर तो दिक्कत है ही है, देखो
2: जब
0: दिक्कत है फिर इसका, फास्फोरस की कमी है इसका, इसका मतलब इसमें।
2: गड़बड़ है। मैं तो कहूँ था भाई, फास्फोरस की कमी है, इसका टीके ला दो। डॉक्टर ने बोला बोला गड़बड़ है, कदे ना ठीक रहे। हाँ,
0: नहीं फास्फोरस के आप एक, आप इसने कुछ खिला रहे हो चूर्ण पाउडर किसी तरह का,
2: हम खनिज मिश्रण खुला रहे। हाँ
0: खनिज मिश्रण जिसमें या तो फास्फोरस ज़्यादा हो, एक बार दिखा लियो अपना डॉक्टर ने, और नहीं तो फिर अलग
2: हाँ
0: से फास्फोरस दे सकते हो। अभी कोई
2: टीके
0: दिक्कत
2: भी है फास्फोरस के, अस्पताल में डॉक्टर बताओ था लुआ।
0: फास्फोरस के हैं, अगर पहले पाउडर खिला के देख लो, ज़्यादा समस्या हो तो टीके लगवा लेना।
1: ठीक है जी, रामपुर जी, धन्यवाद जी।
2: धन्यवाद जी।
0: खान पान का मेन रहेगा, और जैसे अभी हमारा टीकाकरण जो अभियान है
1: हाँ
0: हमारा
1: जी,
0: वो चला हुआ है,
1: हाँ, ये मुंह खुर का
0: गलगोटू
1: जी
0: गलगोटू मुँह खुर का,
1: जी
0: तो खान पान तो रहे रहेगा, प्रबंधन आप कर सकते हो,
1: जी
0: और जो टीकाकरण है वो आपको एक तरह से सरकारी मदद होती है वो, और आपका है कि आप अपने 100% आप करवाने में उसका योगदान दें, और अपने पशुओं को बीमारियों से बचाए, और
1: जी
0: उसको स्वस्थ और बढ़िया उत्पादन देने के लिए आप अपने स्तर पे सलाह डॉक्टर से ले सकते हो। आप और अच्छा खिलाएं, अच्छा उनको उनका जो रहने का स्थान है वो करें, और उसे ज़्यादातर जो बढ़िया और कृत्रिम गर्भाधान करके बढ़िया नस्ल के अपने पशु रखें,
1: जी
0: अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं आप उससे, और बढ़िया उत्पादन होगा तो पशुपालक की आमदनी बढ़ी बढ़ेगी। और मैं फिर कहूँगी, अब की बार जो टीकाकरण है
1: अच्छा जी,
0: लगभग वो पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत रहता है, जिस पशुपालक भाई के किसी के रहते हो तो अपने नज़दीक की अपने पशु चिकित्सालय में जाके डॉक्टर से संपर्क करके लगवा सकते हैं अभी भी आप।
1: यानी जिस गांव में होलिया जी अभियान लगा लिया पूरे गांव में, जब मान लिया कोई पशु रह गया तो जाकर वो लगवा सके, लग जाएंगे।
0: लगवा सके हैं, अगर वो अपने रिक्वेस्ट करें लगा देंगे, वो टाइम निकाल के लगा देंगे अभी अभी, तो मतलब अभी एक हफ्ते में अगर करवा सकते हैं, अभी चलेगा 18 तक और रहेगा,
1: अच्छा
0: कोई
1: जी
0: कहीं से अरेंज करके वैसे लगभग हो चुका है,
1: जी
0: लेकिन फिर भी अगर कोई इच्छुक है पशुपालक तो उसकी मदद की जाएगी।
1: और यानी जब को पशु रह गया, और बात ये है जी, हो तो एकदम चैन सी टूट जाए, जब मान लिया एक भी पशु रह गया हो तो जब उसके हो गया तो फिर सारे पशु मर
0: ऐसा
1: जाएगा
0: है,
1: फिर
0: वही है
1: जी
0: जैसे तालाब में लेके जाएंगे, और ये होती वही है,
1: जी
0: फैलेगी एक दूसरे से तो
1: हाँ, तो ये बताना
0: दूसरे,
1: जरूरी, मतलब
0: हाँ
1: जो एक भी मान लिया पशु रह गया तो उसका फैला करेगा
0: संक्रामक
1: वो।
0: रोग है ये और जाएगा।
1: जी, अच्छा जी, फिर मान लिया ये हो जाए जी डॉक्टर साहब, मान लिया मुंह खोरिया को गोटी का हो जाए तो फिर की करा जाए जिसमें
0: देखो जी, गलघोटू तो हो गया तो पशु बचता नहीं है उस
1: अच्छा
0: समय, तो
1: जी,
0: हाँ उस समय नहीं, उस समय पशु जाएगा,
1: तो मौत ही हो जाती है जी पशु
0: हाँ
1: की
0: उसमें नाम ही, इसका नाम से ही जाहिर है कि गलघोटू है।
1: जी।
0: और जो मुंह खुर की है, मुंह पका खुर पका है, इसमें क्या है कि आपको शुरू में पता लगी तो उस पशु को अलग कर देना चाहिए, उसको जो खाना पीना जो भी बचेगा उसका वो अलग है, उसका किसी का जुट्ठा ना उसको खिलाना ना,
1: जी
0: और अपने डॉक्टर को उसको दिखाएं, बाकी वो सलाह ले उनसे जिस हिसाब का आपको बताएं, चारा
1: जी
0: पानी या दवाई पानी वो जरूर करवाएं।
1: अच्छा, जिस तरह ये लाल दवाई का प्रयोग ये करने लग जाए और उस पशु ने अलग बांध जाए, यही
0: अलग,
1: मतलब।
0: हाँ अलग, और हाँ सबके जो साझा स्थान है उस पर नहीं लेके जाएं, क्योंकि दूसरे में फैलने का खतरा ज़्यादा है इसमें।
1: अच्छा जी, तो और इसमें जी मतलब चलो ये तो हो गया ठीक है। ये गर्मी है जैसे जी पशु का जी मान लिया गर्मी लग जाए जी, तो गर्मी इसमें क्या करे जाए जी, कि तुरंत मान लिया घर में रहेगा कोई इलाज करा जाए, कोई है जी इस तरह का
0: घर में आप पानी का बताया मैंने,
1: जी।
0: पानी तो दे ही सकते हो आप, एक और पानी में पिलाने के कई आते हैं,
1: जी
0: हाँ वो पिला सकते हो आप। बहुत ज़्यादा अगर हाँफने लगे तो एक बार आप सलाह लेके, बाकी तो मैंने पिलाने का बताया, उसका जो रहने का जो स्थान है
1: जी
0: उसमें आप किस तरह से करोगे, लोग कूलर भी लगाते हैं,
1: हाँ,
0: पंखा
1: पंखे
0: भी
1: भी तो
0: लगाते
1: रहते
0: हैं,
1: हैं जी।
0: हाइट ऊँची रखनी है, नहीं कुछ भी है तो भी आप बाहर से बोरी जो टाट वगैरह के वो लगा के आप उनको गीला कर सकते हो, कम से कम जब भी हवा आए तो ठंडी हवा आए,
1: जी
0: जैसा भी आपका जिस हिसाब से आपका बनता है प्रबंधन, आप उसको जो तापमान है उसके रहने के स्थान का उसका आपको ठीक मतलब उतना रखना है कि उसके गर्मी ना लगे, जिस हिसाब से भी रख सकते हो, आपके पास जो उपलब्ध है
1: जी
0: उसमें कर
1: अच्छा,
0: सकते हो आप।
1: एक पहले ये वृक्ष के नीचे बांध दिया जी, मान लिया कोई भी वृक्ष है उसके नीचे बांध, क्या वो अब भी है जब मान लिया किसी के आंगन में है वृक्ष उसके नीचे बांध दिया, ठीक है जी
0: अगर
1: वो
0: लू है बहुत ज़्यादा, अगर
1: जी।
0: कईयों के क्या होता है कि वृक्ष है लेकिन बाहर अगर दूर है कहीं टिन,
1: जी
0: तो अगर ऊपर अगर है तो उसमें आप तो भी उसके अंदर ही बंद हो गया, अब लू है बहुत ज़्यादा तो आप नहीं बांध सकते, खुले में है तो
1: जी
0: लू के 2-4 घंटे आपको इधर अंदर करना पड़ेगा,
1: अच्छा, लू में डॉक्टर साहब एक चीज और कर लिया
0: नहीं तो
1: मैंने।
0: वृक्ष सबसे बढ़िया रहता है वैसे तो,
1: अच्छा जी,
0: लेकिन बिल्कुल खुले में है तो लू ज़्यादा लगेंगे।
1: मान लिया ज्यादा गर्मी हो रही है फिर वो कह रहे हैं जी उस पर पानी डाल दें जी पशु को, क्या ये ठीक है जी, एकदम लू है ज्यादा है मान लिया
0: नहीं
1: और बारिश
0: उसमें
1: आ रहा है उसके
0: उसमें
1: ऊपर
0: उसमें फिर उसका जो है तासीर है उसके पशु की बिगड़ेगी उसके,
1: सर्द गर्म हो जाएगी वो
0: हाँ
1: उसके ऊपर।
0: सर्द गर्म तो क्या मतलब, वो उसका जो खुद का जो कंट्रोल करने का अंदर का सिस्टम वो नहीं कर
1: जी
0: पाएगा।
1: डॉक्टर साहब लगता है एक फोन और आ गया। हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी, राम राम जी, नाम बता दो और जगह बता दो।
2: अशोक भाई, राम राम,
1: राम राम जी, तिवाड़ा
2: मुन्ना बोल रहा था, गांव तिवाड़ा।
1: से मुन्ना बोल रहा है। भाई मुन्ना बता, क्या समस्या है।
2: डॉक्टर साहब, राम राम।
0: नमस्कार,
2: हाँ जी, पशुपालन फोन कार्यक्रम बना
1: हाँ
2: जी।
1: पशुपालन का है, बता दो जल्दी बताओ।
2: डॉक्टर साहब, एक जोटी है अपने कने, और उसका डॉक्टर साहब 15 दिन तो वाट ठीक रहा सर, 15 दिन उसका दस्त लाग गए।
0: जोटी है, अच्छा ये जो 15 दिन बीच में दस्त लगने और बीच में वह ठीक रहना, ये पेट के कीड़ों की समस्या है।
2: अच्छा
0: हाँ अगर आपने अब मुंह खुर के टिक्के लगवाए हैं, अगर हो गए हो 10-15 दिन, तो आप दवाई दो पेट के कीड़ों की, उसी से ठीक हो जाए।
2: मन्ना इस टाइम मैडम ने दवाई दी थी 20 नवंबर ने या 24 नवंबर ने आगे की हुई थी, तो आगा रही भी तसल्ली को नहीं, 7वां महीना उतरे से ना तो इसने गद्दी दिखा रखी थी, और ऊ इसने धनिया
0: 24 नवंबर
2: दिखा
0: ने,
2: रखा से।
0: एक एक मिनट, चौबीस
1: अरे
0: नवंबर
1: सुन
0: ने
1: ले मुन्ना
0: अगर
1: भाई,
0: 24 नवंबर ने करवाई थी आगे की,
2: हाँ जी,
0: तो 3 महीने होने के बाद चेक करवा लेते,
2: कौन ही कराई जी चेक, तो
0: तो कराओ ना चेक, ये चेक करवा लो।
2: उस तरह जी मतलब या बटन है गलते, जो शरीर ऊंचा ऊंचा लग गया है, पेट तो भी छोड़ी छोड़ी
0: ये
2: लग
0: नहीं,
2: गया
0: आप
2: है
0: चेक
2: गद्दी।
0: करा लो, आप चेक करा लो और उसके बाद
2: अच्छा
0: दे सकते हो आप पेट के कीड़े के, ऐसे आ जाएगी मतलब दवाई है जो गाभिन पशु को भी दी जाती है।
2: या मैडम, जिस तरह शरीर की लंबी से 2-3 मानसा कन दिखाई समझ में वह बोले बोले क्या बड़ी सर जी, 15-20 दिन में
0: मानसा
2: है
0: कन्या छोड़ो, आप एक डॉक्टर ने दिखा लो ठीक है।
1: मुन्ना भाई, डॉक्टर ने दिखा लो जाकर ठीक है ना।
2: जब भी अशोक भाई 20 दिन में एक बार चिड़पिड़ी भी हो है, मतलब ना तो या जेरा दिर ना या बालवादी म्यूचुअल
0: सबसे
2: मार्केट का हो।
0: पहले
2: हाँ
0: आप कहाँ तेवाड़ा बताया, बिरिकला है,
2: जी,
0: हाँ बिरिकला में डॉक्टर कपिल है, उनने बुला के
2: हाँ
0: एक दिन,
2: कपिल
0: हाँ
2: है जी,
0: उनने बुला के आप चेक करवाओ उसको, सारी समस्या उसी के हिसाब से पता लग जाएगा आगे की है या नहीं है।
2: अच्छा
0: ठीक है, और आए भी होंगे
2: अरे
0: आपका गांव में।
2: था जी,
1: हाँ वो और बता दो।
2: 14 तारीख ने गाड़ी आई थी जी, 3 जने अरबा मैडम और बात करस, उसका
0: 14 तारीख,
2: के कारण है?
0: 14 तारीख
2: चौदह
0: अभी
2: मई ने गाड़ी आई थी 3 जने,
1: 14 मई ने तीसरा भी आई
0: दूध
1: थी।
0: सही दे रही है वो?
2: दूध तो मैडम जिस तरह उसका है हाल, 14 किलो फिर मतलब अगली पक्की का दूध खड्डन है इतना तो बस ठीक रहा बस है, और गलड़ी पक्की का हाथ ला लेना है जितना लात मारने लग गया
0: गाय देसी है क्या?
2: ना जी, यहाँ पीड़ती है।
0: हाँ तो थोड़ी बहुत देखो, देसी गाय थोड़ी है कि गाय का दूध मतलब एक तो जल्दी निकाला, टाइम कितना लगा उससे भी फर्क पड़ा है।
2: अच्छा
0: हाँ
2: बात मैडम बताऊं कि इतनी अड़बड़ कर रहा है कि जान मत आ जाना है तो सारा दूध काट लेंगे, अरना तो 2 बाल्टियां बदल बदल के
0: गाय
2: दूध काट
0: है
2: लो
0: देखो,
2: पड़ा है।
0: तड़ा भी ले है, न्याणा लगा लो अगर और समस्या नहीं है तो, और नहीं तो फिर वही है कि दूध चेक कराओ, ज्यादा दिक्कत लग नहीं रही क्योंकि 14 किलो
2: न्याणा
0: दूध
2: लाने
0: है।
2: पैसा उसका जी,
1: हाँ
2: न्याणा लाने पैसे भी वार लात इतनी बुंदी मारा है पड़ा पड़ पड़ा पड़।
0: गाय है थोड़ी बहुत करेगी।
2: अच्छा
0: हाँ दूध
2: अरवा
0: 14 किलो
2: जी
0: है, ठीक है।
2: मतलब बच्चा था ना उसने कौन सा आया कर दी, बच्चे पर कौन पाव शा करती रात तो राज्यों की पाव से है, फिर मैंने उसकी डॉक्टर से ही दिखाई थी, फिर
1: हाँ
2: डॉक्टर साहब ने बोले बोले कि ना सर थोड़ी ओड़ी में सूजन से है, तो उसने 3 दिन एंटीबायोटिक टिक्के ला दिए, वो टिक्का लाए पच्छे भी उसमें दिखाई थी डॉक्टर ने वो इलाज हो लिया था, इबी वो अपनी बाणी को नहीं छोड़ दे तो उसका कोई
0: नहीं
2: उपाय
0: बार
2: बताओ
0: नहीं,
2: ना।
0: देखो थोड़ा बहुत दर्द है ना कई बार, अड़की फुड़की उसको बोलते हैं, अंदर ही अंदर हो थनेला का रूप,
2: अच्छा
0: वो जरूर एक बार दूध चेक करवा लो, उसमें आ जाएगा।
2: अच्छा
0: हाँ ना तो ठंडे पानी की छबके मारो और बैठ जाओ मेरे ख्याल से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। शाम के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आए मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहाँ भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक

0: नहीं, गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चलें, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ें, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई, उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है, और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
0: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती हैं, तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज़्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपदाएँ चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुँच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहाँ ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज़ को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज़ वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बन करके उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं, और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है, और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथ

0: पुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज़ को बढ़ाने का काम हो। निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है, लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में GST का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज रोजगार सृजित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है, और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा, उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट, जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा। और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णुप्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। यह हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया, 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे। ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सब के प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, उसूली पर लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफ्रेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि हमारे पूर्वज जो है 2,500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा और न केवल भारत के प्रति अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आज़ादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर की श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सकें, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कंपटीशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आज़ादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहाँ तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है, लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है, और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़कर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूँ कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सकें, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहाँ जा कर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम

0: वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और ये भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है एक विशेष बातचीत सरकार के 12 वर्ष विषय पर। वार्ताकार हैं श्री कृष्ण लाल मिड्डा, डिप्टी स्पीकर विधानसभा। इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री संजय कुमार बाली।
4: वर्तमान सरकार के 12 वर्ष और इन 12 वर्षों में क्या कुछ योजनाएं लागू हुई हैं, कितना विकास हुआ है, जनसाधारण को कितना लाभ हुआ है, इस सब के बारे में बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा जी को। आप डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा में। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो।
5: जी नमस्कार जी।
4: सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जब विकास की बात आती है तो एक गति उसमें बहुत आवश्यक होती है और वो गति हमें मिलती है रेलवे से, बस से और हवाई जहाज से। तो इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है?
5: देखिए, जब से 2014 के बाद आज ये कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सत्ता संभाले हुए 4399 दिन हुए हैं
4: जी।
5: तो इन दिनों में अगर हम बात करें तो आपके सामने देश की आज़ादी के बाद 2014 तक किस प्रकार से जो सत्तासीन पार्टी रही उन्होंने कितना विकास किया आपके सामने, और आज अगर देखें उस स्पीड को कितनी स्पीड से बढ़ाने का काम किया वो भी आपके सामने है। चाहे वो रेल मार्ग हो, रेलवे की लाइन हो, या वो सड़क के मार्ग से हो, चाहे वो हवाई आकाश की दूरी नापने को कह सकते हैं
4: जी।
5: तो हर चीज़ में एक तरक्की करने का काम किया है। अगर आप देखिए तो आज इतने हाईवे बन चुके हैं, मैं दूर ही क्यों जाऊँ, मैं अगर अपने जींद की ही बात करूँ तो आज मेरे जींद को नौ नेशनल हाईवे छू के जा रहे हैं
4: जी।
5: और आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली से जो यात्रा माँ वैष्णो देवी की थी, जिस पे हमको जींद से 12 घंटे लगते थे, दिल्ली से भी लगभग इतना ही समय लगता होगा या एक दो घंटे एक्स्ट्रा लगते होंगे, तो आज दिल्ली से आप 7.5 घंटे में कटरा पहुंच सकते हैं
4: जी।
5: और नई नई ट्रेनें चलने का काम किया, आज हिल एरिया में ट्रेनें चल रही हैं, यह बहुत बड़ा विषय है। और बहुत सी ट्रेनें और आगे भी, कटरा से भी आगे ले जाने का जो जाल बिछ रहा है उसे भी आप देख सकते हैं। अगर इसके बारे में एक सोच, एक पैमाना
4: जी,
5: मैं ये कहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो रोड मैप बनाते हैं कि मुझे इस काम को 10 वर्ष में पूरा करना है, वो एक समय अवधि तो रखते हैं
4: जी,
5: लेकिन फिर उस कार्य को 6 या 7 साल में पूरा करने का काम करते हैं। इसे कह सकते हैं एक सोच
4: जी,
5: कि मैंने एक टारगेट रखा और उस टारगेट को मैंने समय तो 10 साल रखा, लेकिन उस टारगेट को अचीव करना मेरा काम है, कि समय से पहले उस टारगेट को पूरा करना ये हमारे देश के प्रधान

0: प्रधानमंत्री जी की एक आदत है, मैं ये कह सकता हूँ उनके जो आदत में शुमार है ये चीज़ की,
1: जी
0: मुझे उसे सबसे पहले करना
1: जी और जैसे आपने हिली एरिया की बात की है, तो उसमें टनल बना के, जो कि रास्ते दुर्गम थे, बर्फ़ पड़ी होती तो कहीं जाना नहीं होता था, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं उसको।
0: है। जहां तक टर्नल का सवाल है, वैष्णो देवी में गया हूं तो रास्ते में टर्नलें बहुत बन गई।
1: जी
0: पहले एक ही टर्नल कश्मीर के साथ जाते हुए रास्ते में आती थी, लेकिन आज टर्नलें इतनी बन गई और रास्ता भी सुगम हुआ।
1: जी
0: हिल एरिया में सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का, सड़क का विस्तारीकरण करने का जो काम किया गया, जिसकी वजह से साधन बड़ी जल्दी से और बड़ी स्पीड में आता था। तो हाल ही में मैं वैष्णो देवी गया हूँ, आज से लगभग 10 रोज पहले,
1: जी
0: तो ये चीज़ देखकर मैं बड़ा अचंभित था कि एक बहुत लंबे समय के बाद गया, लेकिन एक गजब, मतलब खुद को एक लगता था कि देश हमारा बहुत तरक्की की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ बड़ी ही अपने आप में मायना रखती है।
1: ना केवल रोड ट्रांसपोर्ट बल्कि वायु मार्ग, उसमें भी काफी उपलब्धि हुई
0: देखिए, मैंने तो कहा कि चाहे वो रेलवे मार्ग हो,
1: जी।
0: चाहे वो सड़क तंत्र हो, चाहे वो वायु मार्ग हो, हर मार्ग के अंदर हम लोगों ने अलग से एक अचीवमेंट हासिल की। आज आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो दौड़ है एक विकसित राष्ट्रों की तरफ बढ़ रही है।
1: जी और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि आज एक समय आएगा कि जब फिर से सोने की चिड़िया जो हमारा राष्ट्र रहा है उसको हासिल करे।
0: देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक स्वप्न देखा
1: जी
0: कि मुझे 2047 में इसको विकसित राष्ट्र बनाना है। जब हम गुलामी से हटे हुए आज़ादी की तरफ 100 वर्ष पूरे होंगे,
1: जी
0: तो मुझे अपने हिंदुस्तान को एक विकसित राष्ट्र बनाना, एक स्वप्न देखा।
1: जी
0: आज वो स्वप्न अकेले देश के प्रधानमंत्री का नहीं है, वो 140 करोड़ जनता का बन चुका है। मैं ये कहूंगा कि कोई किसी भी पार्टी से हो,
1: जी
0: राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं आपकी, लेकिन राष्ट्र तो हमारा है,
1: बिल्कुल
0: देश तो हमारा है। देश अगर विकसित राष्ट्र बनेगा तो उसमें सभी को जो सीना
1: लाभ
0: है वो
1: होगा।
0: चौड़ा होगा और वो
1: जी
0: कहेंगे कि ये मेरा विकसित राष्ट्र है। आज अगर हम कल्पना करें कि भारतीय 2014 से पहले, जब
1: जी
0: भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाली, तब हमारा देश आर्थिक दृष्टि से ये कह सकते हैं वर्ल्ड के अंदर 14वें नंबर पर था।
1: जी
0: आज हमारा देश चौथे नंबर पर है। आज मैं कहता हूँ वर्ल्ड के अंदर कोई बात होती है, कोई विषय उठता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब को बीच में बिठाए बिना कोई फैसला नहीं हो सकता।
1: ये हमारी विदेश नीति है
0: तो इसको आप कल्पना कर सकते हैं। मेरे
1: जी।
0: कहने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे भाई विदेशों में रहते हैं आप उनसे ही पूछिए, कई बार इंटरव्यू आते हैं,
1: जी
0: वो स्वयं इस बात को कहते हैं कि पहले हम आते तो लोग हम इंडियंस को एक अलग दृष्टि से देखते थे। जैसे किसी समय में अंग्रेज कहते थे कि डॉग्स आर नॉट अलाउड एंड
1: जी
0: इंडियंस, तो इस
1: जी
0: प्रकार का विषय पे वो कहते थे, लेकिन आज वहाँ जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि ये मोदी के भारत के लोग हैं, मोदी के लोग हैं, ये भारत के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, विदेश में अपने देश से दूर बैठे आदमी को प्रसन्नता होती है।
1: बिल्कुल। और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो जब विदेशों में जब युद्ध छिड़ा और वहाँ से हमारे जो भारतीयों को निकालने की बात आई, तो उस बस के ऊपर सिर्फ एक झंडा लगा होता था।
0: यूक्रेन का जो युद्ध हुआ
1: जी
0: आपके सन्मुख है कि किस प्रकार से युद्ध को रोका गया,
1: जी
0: कि जितने बच्चे या इंडियंस रहते हैं, जो नेशनल फ्लैग इंडिया का झंडा लेके जाएगा, जो तिरंगा लेके निकलेगा, उसको किसी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। और मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ, हमारा ही पड़ोसी मुल्क
1: जी
0: पाकिस्तान, उनके बच्चों के हाथ में भी तिरंगा रहा, वो
1: जी
0: भारत माता की जय बोलते हुए निकले। ये
1: जी
0: जलवा है साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
1: जी
0: ये जलवा है और ये
1: जी
0: जलवा होना चाहिए। आप अगर सोचें तो पहले किसी भाषण में या किसी भी स्थान पर भारत माता की जय नहीं बोली जाती थी,
1: जी
0: आज हर स्थान पर भारत माता की जय बोली जाती है और अपने राष्ट्रीय गान के साथ प्रारंभ होता है, राष्ट्रीय गान के साथ ही समाप्त
1: समाप्त
0: होता है कार्यक्रम।
1: जी
0: ये एक देश में जो देशभक्ति की भावना जो फैलाने का काम किया या जो भावना को जगाने का काम किया, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि मैं तारीफ करता हूँ इसराइल की।
1: जी
0: हर आदमी की अपनी सोच हो सकती
1: जी
0: है। इसराइल देखिए चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन अकेला देश होने के बावजूद भी एक छोटे से बच्चे के अंदर भी वो जज्बा डालते हैं कि देशभक्ति का जज्बा, कि आपका जो जीवन है देशभक्ति के लिए पैदा हुआ, देश के लिए पैदा हुआ, आप कभी भी देश के लिए लड़ाई लड़ सकते हो और आपको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ सकती। यही जज्बा देश के प्रधानमंत्री जी ने एक प्रारंभ किया, और आज मैं ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति के मन में देश को लेकर बहुत चिंतित भी रहते हैं
1: जी,
0: और देश को लेकर देशभक्ति की भावना भी बढ़ी है
1: जी। सर अब बात करेंगे थोड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं, आयुष्मान और इसी से संबंधित एक शौचालय का भी एक काफ़ी काम इसमें हुआ है।
0: पहले बात करते हैं हम आयुष्मान की
1: जी।
0: आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है, मैं ये कहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के दिलो दिमाग में एक ऐसी बात आई होगी
1: जी
0: कि मैं एक ऐसी योजना बनाऊं जिस योजना के अंतर्गत कोई गरीब व्यक्ति ये ना कहे। वैसे तो देखिए जीवन मृत्यु सब परमात्मा के हाथ है
1: जी,
0: लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पैसे की कमी की वजह से व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, तो उसके परिवार के लोग कहते हैं काश हमारे पास पैसा होता तो हम अपने भाई बंधु को बचा लेते हैं। इसी सोच को सोचा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने आयुष्मान योजना को प्रारंभ किया
1: जी।
0: जहां आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए का इलाज फ्री होने का काम हुआ, वहीं पर उस समय हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे बाबूजी मनोहर लाल जी ने भी एक चिरायु हरियाणा बनाई
1: जी,
0: जिसमें अलग पैमाना रखा गया कि 1,80,000 से कम वालों को तो ये सुविधा मिलेगी
1: जी,
0: 3 लाख तक की सुविधा करने का काम किया। अगर साल में आप 1,500 रुपये और देते हैं तो 3 लाख रुपये की जिनकी इनकम है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये एक दूरदर्शी प्रमाण कि कोई व्यक्ति ये ना कह सके काश
1: जी,
0: काश शब्द का प्रयोग कम से कम इस विषय पे ना हो। तो ये एक, और आपका दूसरा विषय रहा एक तो आपने स्वच्छता की बात करी
1: जी।
0: तो देखिए हमारी बहन बेटियां गांवों के अंदर बाहर शौच के लिए जाती थी, तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है विदेशी लोग भी इस चीज को देखते हो। कई बार हम ट्रेन से जा रहे होते तो बहुत सा अजीब सा लगता
1: जी,
0: था
1: जी।
0: तो आज देखे तो हर घर में शौचालय बनाने का काम किया, वहीं पर ही हर घर में जल और नल की एक योजना भी, पानी पहुंचाने की एक योजना भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की। उसी योजना को आगे बढ़ाने का काम आज हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आगे कर रहे हैं
1: जी,
0: ताकि हर घर में जल और नल पहुंचे ऐसी सोच के साथ। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा, इसमें हरियाणा आज की डेट में सबसे आगे है
1: जी। बहुत खुशी की बात है ये। सर इसमें स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें कितना सुधार आप मानते हैं?
0: देखिए स्वास्थ्य सेवाओं की जहाँ तक बात करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि देश की आज़ादी से पहले जो एम्स थे हमारे, इसमें देखा जाए
1: जी,
0: तो एम्स थे 7
1: केवल
0: 2014 से पहले
1: जी,
0: और आज एम्स हैं 23 जिसमें 2 एम्स हरियाणा में है
1: जी।
0: कैंसर हॉस्पिटल भी अम्बाला में हरियाणा में, और कैंसर का इलाज रिवाड़ी में भी हो, तो ये बहुत और, बड़ी बात है।
1: और डॉक्टर्स की सीट है वो भी कुछ,
0: हाँ डॉक्टर की सीट अगर आप देखें तो MBBS डॉक्टर की सीट 2014 से पहले 51,348 के आसपास थी, लगभग 52,000 मान लीजिए, और आज लगभग 1,28,29,000 के आसपास की सीट से। इतना सीटों में इजाफा होना
1: लगभग दुगुना हो गया,
0: ये भी
1: जी
0: दुगुना नहीं सर
1: जी,
0: लगभग 2.5 गुना ज्यादा
1: जी।
0: तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम ये कह सकते हैं कि नॉन स्टॉप हरियाणा का, जैसे नायब सैनी जी ने एक नारा दिया, तो आज नॉन स्टॉप इंडिया भी चल रहा है
1: बिल्कुल। और सर एक और एक योजना रही है कि जिसमें गरीब व्यक्तियों के लिए बैंकों में जाने का कोई कारण नहीं होता था, लेकिन जब से उनके खाते खुले हैं उनका बैंक से नाता जुड़ गया, जनधन योजना।
0: देखिए जनधन योजना को प्रारंभ किया देश के प्रधानमंत्री जी ने, एक सोच रखी
1: जी।
0: मैं कहता तो हर सोच के पीछे कुछ ना कुछ है
1: जी।
0: जैसे कि इसका एक उदाहरण ये भी कह सकता हूँ कि पांडवों के समय में, महाभारत कालीन के समय में अगर किसी को शराब दिया, अगर हम पढ़ते हैं महाभारत और उसमें, तो शराब का भी कोई कारण रहा। वो जो शराब थे कहीं ना कहीं पांडवों के लिए बड़े सिद्धकारी भी हुए
1: जी।
0: तो इसी प्रकार से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा, जिसमें जन कल्याण ये जो खाते खोले गए उसमें हर आदमी को लगता था कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अनेक अनेक प्रकार की विपक्ष के लोगों ने बातें की। जैसे वो कहने लगे कि ये तो एक इस प्रकार से ये चीज खड़ी कर रहे हैं जिसका कोई फायदा होने वाला नहीं, ये एक बहकाने का काम कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन उसके पीछे विजन था, विजन ये था कि जो योजनाओं का लाभ मिलना है जो बिचौलिए उनको खत्म करके डायरेक्ट गरीब के खाते में पैसे जाएं, उसके पीछे ये योजना थी। जिस प्रकार से मैंने आपका कई शराब भी मिले तो वो सिद्धकारी साबित हुए पांडवों के लिए, तो ये योजना को मैं देश के प्रधानमंत्री साहब पहले उसके बारे में पूरा सोचते कि उसका फायदा क्या मिलने वाला है। उसमें लोगों ने कहा ये बड़ी अजीब सी बात है कि जीरो पे आप खाता खुलवा रहे हैं, और कई पढ़े लिखे लोगों ने भी इस बात का बड़ा बहिष्कार सा किया, लेकिन उनको इस बात का नहीं पता था कि देश के प्रधानमंत्री की सोच क्या है। जिस प्रकार से किसी समय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम ऊपर से 100 रुपये भेजते हैं लेकिन ऊपर 10 से 15 रुपये नीचे पहुँचते हैं, इस सिस्टम को ही ख़त्म किया। हम ऊपर से 100 रुपये भेज रहे हैं तो आपके खाते में सीधा 100 रुपये ही आ रहे हैं, एक क्लिक का बटन दबता आपके खाते में पैसे आ जाते हैं, बिचौलिए की तो आवश्यकता ही नहीं रहती।
1: जी,
0: तो ये चीज, ये सोच देश के प्रधानमंत्री ने रखी, और जिस प्रकार से हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी भी, कोई भी योजना है सीधा लाभ डायरेक्ट खातों में जाता है, चाहे वो किसानों के खाते हो या कोई मुआवजे की राशि हो या कि फसल किसी 2000 रुपये फसल के जैसे दिए जाते, तो डायरेक्ट खाते में बीच के बिचौलियों का काम खत्म करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री उस समय के बाबूजी मनोहर लाल जी ने किया, अब नायब सैनी जी भी उसी काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: जी, इसके अलावा अगर हम ग्रामीण लोगों के विकास की बात करें, उनके रोजगार की बात करें, तो अभी हाल ही में एक जी राम जी योजना है वो आरंभ की गई है।
0: जी राम जी जो योजना है वो एक ऐसी योजना है जो पहले योजना थी
1: जी,
0: उस योजना में कुछ कमियां थी, उसी योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। इस पे भी विपक्ष ने बहुत एतराज किया
1: जी,
0: लेकिन ये योजना एक ऐसी योजना है जिसका फायदा गरीब व्यक्ति को, एक मजदूर दिहाड़ीदार आदमी को जो एक खेतों में काम करना या कोई तालाब खुदवाना या मनरेगा जिसे पुराने समय में कहते थे, तो उस योजना को बंद कर जी राम जी योजना बनाने का, उसमें और सुधार किया गया, सरलीकरण किया गया ताकि मजदूर को अच्छे ढंग से उसका पैसा मिले, ऐसी योजना बनाई गई। और उसमें जो उसमें भी सिस्टम था, कुछ सरपंच या कुछ अन्य लोग पैसे की हेरा फेरी करते थे, वो जी राम जी की वजह से वो हेरा फेरी भी बंद हुई है।
1: जी सर, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण का, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी मातृशक्ति का रहता है, तो अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करें तो हमारे पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी।
0: बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जहाँ तक सवाल है, वो हमारे हरियाणा में पानीपत से प्रारंभ हुई, उसमें बाबूजी मनोहर लाल जी थे, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि बेटी को पढ़ाई और बेटी को बचाओ
1: जी,
0: क्योंकि पहले गर्भ में ही बच्चियों को मार दिया जाता था
1: जी।
0: उसमें क्या होता था कि अगर आपके पास पहले बेटा है तो फिर भी बेटी को पसंद कर लिया जाता था, लेकिन अगर आपके पास बेटी है पहले भी तो दूसरी बेटी को कुछ ऐसा किया जाता था, गर्भपात ही करवा दिया जाता था। जिस सिस्टम को रोकने का काम
1: जी
0: जहां देश के प्रधानमंत्री ने किया, वहां बाबूजी मनोहर लाल जी ने भी किया। उन्होंने तुरंत आदेश किया कि कोई भी अल्ट्रासाउंड लिंग जांच नहीं करेगी
1: जी।
0: सेक्स रेशो उसमें कम से कम 250 से 250 का डिफरेंस था लड़का और लड़की में, हरियाणा की बात करो, आज डिफरेंस कुछ भी नहीं रह गया
1: जी।
0: आज कहीं पे भी आपको कोई ऐसा कहता नहीं मिलेगा कि लड़के होने की दवाई मिलती है, बहुत से झाड़ा वाड़ा लगाने वाले भी कहते थे
1: जी।
0: या लिंग जांच होती थी, कोई अगर बाई चांस किसी ने की है, कोई शिकायत हुई है, तो उस आदमी का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया
1: जी।
0: तो ये एक अच्छी शुरुआत। और आज देखें, अगर पूर्व समय में हम देखें तो घर में अगर बेटी होती तो एक मातम सा एक यूं हो जाता, हाँ बेटी हुई है, कुछ दादावादी दादा दादी या माँ बिचारी तो क्या कह सकते हैं, बाप के चेहरे की मुस्कुराहट नहीं रहती। देश के प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद ये हुआ कि अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, जहाँ सेक्स रेशो तो बराबर लगभग आने का काम किया, वहाँ पर लड़कियों को आज देखिए पढ़ाई में भी सबसे आगे। आज आप हरियाणा में निकाल लीजिए रेशो, आपको लड़कों से ज़्यादा एजुकेशन में जो मेरिट लिस्ट में है तो हम बच्ची हैं, हमारी बेटियाँ बहनें और खिलाड़ी भी आज देखिए, वो घर का काम भी करती हैं हमारी बेटियाँ, शादी से पहले अपना घर का काम करेंगी, शादी के बाद तो उनको वैसा ही करना पड़ता है। जहाँ अपने माँ के घर में अपने परिवार के लिए भोजन बनाएंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे भी और मेरिट भी लेंगे। तो ये उस बात का असर है कि आह्वान किसने किया, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया
1: जी।
0: जहाँ आज बेटी पैदा होती है, लोगों की सोच बदली कि बेटी बेटे में क्या अंतर है, सोच बदली, तो आज कुआ पूजन
1: जी,
0: शहरों में अंदर शहर के अंदर त्यौहार एक फंक्शन रखा जाता है कि हमारे यहाँ बेटी हुई है, साहब ये सोच का परिणाम है।
1: बिल्कुल सर, बात थोड़ी सी करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो हमारे जनरल पब्लिक है उसमें भी और हमारी सेना है उसमें भी कितना योगदान आप मानते हैं?
0: देखिए, आज कोई भी विदेशी या हमारे आसपास के बॉर्डर के जो शत्रु हैं, शत्रु
1: जी
0: देश हैं,
1: जी
0: जिनकी नज़र हिंदुस्तान पर रहती है, नाम लेने की मेरी आवश्यकता नहीं है, आपके सामने नाम ले भी दूं तो कोई ऐसे गुरेज नहीं है मुझे,
1: जी
0: चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब जो बॉर्डर पर लगे हुए
1: जी
0: सटे हुए हैं,
1: जी
0: इनकी नज़र हिंदुस्तान पर है।
1: जी
0: लेकिन आज पहले तो हमारे फौजी भाइयों को एक चिंता होती थी कि वहाँ से अगर गोली चली तो आदेश लेने पड़ते थे।
1: जी
0: आज आदेश की आवश्यकता नहीं है, अगर वहाँ से कोई बमबारी हुई है, कोई गोलीबाजी हुई है, तो आपको तुरंत, आपको पावर है कि आप उनको जवाब दे सकते हैं।
1: जी
0: और ये साबित करके दिखाया, एक पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी कि हमारे इंडियंस ने लठों से मार मार के उन लोगों को भेजने का काम किया। तो बहुत सी आज आज अगर हिंदू, मैं कहूँगा कि ये देश एक मोदी का देश है। आज हर व्यक्ति डरता है, जब कोई इतना पावरफुल देश है उसको पता है कि हिंदुस्तान आज मोदी का देश है, मोदी का भारत है, और किसी की आज हिम्मत नहीं। अगर कोई उंगली उठाएगा इस देश के ऊपर, तो आज हमारे जवान, हमारे सैनिक उसका सर कलम करने की हिम्मत रखते हैं। ये
1: जी
0: पावर देने का काम किया है।
1: जी
0: और बड़े से बड़ी मिसाइलें, बड़े से बड़े, आज अपने आप में हिंदुस्तान सशक्त है। अगर हम मिलिट्री को लेकर देखें तो आज किसी परिवार की चिंता नहीं। आप ही ने देखा कि यहाँ पर बैठकर
1: जी
0: हमारी बेटियों ने, एक खान बेटी हमारी और एक सिंह बेटी,
1: जी
0: उन्होंने किस प्रकार से यहाँ बैठकर टेक्नोलॉजी से ही जो पाकिस्तान के अंदर जो उग्रवादियों के कैंप थे उनको उखाड़ने का काम किया।
1: जी
0: कुरैशी बहन थी हमारी,
1: जी
0: एक सिंह बहन थी। तो ये आपके सामने है साहब, हमारी आज महिलाएं क्रिकेट में भी आज आ गए, हमारी से जो हमारी महिला जो
1: जी
0: टीम है आज
1: जी
0: क्रिकेट है, हिंदुस्तान की आ गया। तो ये
1: जी
0: आप आज ये नहीं कह सकते कि भारत कहीं कमजोर है।
1: बल्कि अगर हम बात करें अंतरिक्ष की, तो उसमें भी काफ़ी बहुत ज़्यादा
0: आपके सामने कल्पना चावला को कह सकते हैं, और
1: जी
0: आज हमारे लोग किस प्रकार से, आज हिंदुस्तान किसी भी विषय में कम नहीं है।
1: जी
0: आप देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, दोनों का बंटवारा जब
1: जी
0: हुआ
1: जी
0: 15 अगस्त 1900, एक दिन का ही डिफरेंस है, जब अलग अलग देश बने,
1: जी
0: तो आज हिंदुस्तान में सुई से लेकर हवाई जहाज बनता है। और पाकिस्तान की क्या हालत आपको पता है,
1: जी
0: कि पाकिस्तान ने, हो सकता है कि मिसाइल और इन लोगों नेगेटिविटी पे ज़्यादा जोर दिया, आज वहाँ पर आटा 150 रुपये किलो के आसपास है साहब।
1: जी
0: जब ये खाड़ी का क्राइसिस आया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि आप तेल ईंधन बचाइए, तेल बचाइए, वहीं पर सोना मत खरीदिए,
1: जी
0: 1 साल बड़ा आवश्यकता है तो आप खरीदिए। अगर आपके घर में ही है, अगर कोई शादी है तो घर में माँ का सोना दे, एक बार उससे काम चलाइए। वो लोग अलग अलग बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक सिस्टम है।
1: जी
0: जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री तो ये आह्वान कर रहे हैं अपने देश के वासियों से कि आप सोना कम खरीदिए 1 साल, और वहाँ पर पाकिस्तान के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि गेहूं और आटा कम खरीदिए साहब। तो इससे बड़ा, मेरे को नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई बात होगी, इससे बड़ा सोचने का विषय रहा ही नहीं। इस चीज को आप सोच के देखिए। तो ये आज के टाइम में हिंदुस्तान अपने आप में, आने वाले समय में 2047 रखा है, तो आप ये मान के चलिए कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं,
1: जी
0: लेकिन अगर हम जीवित रहे तो हम विकसित राष्ट्र होते हुए देखेंगे, या फिर हमारे बच्चे देखेंगे विकसित राष्ट्र बनते हुए हिंदुस्तान को।
1: जी सर, एक और अब हम बात करना चाहेंगे कि आतंकवाद और नक्सलवाद, ये बहुत बड़ी एक समस्या रही है और हर सरकार के सामने इन्होंने चुनौती पेश की है।
0: आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब उन चुनौतियों को आप देख सकते हैं। आज 2014 से पहले देख लीजिए, 2014 से पहले आप गौर कीजिएगा तो आप किसी रेलवे स्टेशन पर, दिल्ली में अक्सर जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका था,
1: जी
0: या कुछ ऐसे एरिए, या कुछ ऐसे स्थान, अमृतसर है, कोई बड़े बड़े मेट्रो सिटीज टाइप के जो हैं, वहाँ पर आप रेलवे स्टेशन पर जाते थे, बस स्टैंड पर जाते थे, या कहीं पर भी, तो बड़ी बड़ी मार्केट में ये कहा जाता था, कृपया आप किसी लावारिस वस्तु को मत छुएं।
1: जी
0: ट्रेन में भी लिखा होता था कि आप
1: जी
0: किसी लावारिस वस्तु, आज आपने सुना है 2014 के बाद कहीं लिखा हो कि किसी लावारिस वस्तु को मत छुएं? अगर मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग जो हैं गलत सोच के, या उनका जो दिमाग है बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है,
1: जी
0: कुछ ऐसा नहीं कि कुछ घटनाएं घटी, पठानकोट की घटना घटी या और घटनाएं घटी, लेकिन साथ के साथ जवाब दे दिया। आज
1: जी
0: एक उग्रवादी को ये सोचना पड़ता है, अगर मैं हिंदुस्तान में कहीं अटैक करूंगा तो मैं वापस तो नहीं आ सकता। और उसका परिणाम आपको दिया ये कि किस प्रकार से यहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान में टेररिस्ट अड्डों को ख़त्म करने का काम किया। अरे आज देखिए हालत, देखिए पाकिस्तान की आज हालत क्या है
1: जी
0: कि वहीं बहुत से ऐसे टेररिस्ट जिन्होंने कभी हिंदुस्तान पर हमला किया था और पाकिस्तान में बैठे थे, आज वो मर रहे हैं। कोई उन्हें गोली से मार रहा है, कोई उन्हें उड़ा रहा है।
1: जी
0: तो ये तो राम जाने कौन उड़ा रहा है या कौन नहीं उड़ा रहा, लेकिन आज उनको कहीं ना कहीं सजा भुगतनी पड़ रही है कि उन्होंने एक पवित्र देश पर किसी न किसी तरह से ऐसा हमला किया। भारत एक ऋषि मुनियों का देश है, फकीरों संतों का देश है। अगर आप उस पर कुछ बुरी नज़र रखते हैं या आप किसी का नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको सजा भुगतनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल। और इसी से संबंधित एक हम और बात कर सकते हैं कि कश्मीर की समस्या रहती थी, धारा 370 के बारे में बहुत कुछ सुना जाता था कि अगर ये हटती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
0: देखिए धारा 370 एक बड़ा पुराना मुद्दा है,
1: जी
0: हम छोटे छोटे होते थे तब से सुनते आते थे।
1: जी
0: राम मंदिर और धारा 370 ये एक पार्टी का एजेंडा था साहब,
1: जी
0: शुरू से हम बच्चे होते थे तब से। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन इस हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठे ना, हर उस मुद्दे को, जो मुद्दा चाहे वो कितना पुराना था, पुराने भारतीय जनता पार्टी को एक बार अवसर मिला, वो नहीं पूरा कर पाए,
1: जी
0: लेकिन नरेंद्र मोदी ने किया। साहब मैं ये सोचता हूँ कई बार, ये व्यक्ति रात को सोए सोए सपने में भी प्लान बनाता रहता है क्या? आखिर एक व्यक्ति 2-4-5 घंटे तो सोता ही होगा। मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं सपने में भी प्लान बनाते होंगे कि मुझको कैसे राम मंदिर का मसला सॉल्व करना था। जो लोग ये कहते थे कश्मीर के जो नेता थे ये कहते थे, या अन्य ऐसे जो साथी दल थे उनके
1: जी
0: जो ये कहते थे कि धारा 370 टूटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी,
1: जी
0: मुझे नहीं लगता कि एक बोतल भी खून गिरी हो।
1: जी
0: जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना, जितनी एक बूंद निकालते हैं शुगर टेस्ट कर, इतनी बूंद भी नहीं गिरी है। तो धारा 370 टूटी। हमारे बहुत से पूर्वज इस दुनिया से चले गए कि हिंदुस्तान जो हिंदुओं का देश है,
1: जी
0: उस देश में हर व्यक्ति ये सोचता है कभी राम मंदिर भी बनेगा।
1: जी
0: वो इस दुनिया से चले गए हमारे पूर्वज, लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने राम मंदिर को बनते देखा है और भगवान राम के दर्शन किए हैं जिन्होंने। बहुत सौभाग्यशाली हम लोग अपने आप को मानते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हर मुद्दे को बड़े प्यार से सॉल्व करने का काम किया है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि भगवान कृष्ण तो कहीं हल्ला गुल्ला कर ही लेते थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम की तरह बड़े शांत स्वभाव से हर मसले को सॉल्व किया। तो ये आपको मानना पड़ेगा।
1: जी इसके अतिरिक्त एक युवा शक्ति है, उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और क्योंकि हमारा देश स्वयं एक युवा देश है।
0: देखिए युवा को अगर हम उल्टा कर दें तो वायु बनता है,
1: जी
0: और वायु की गति जो है कोई आज तक नाप नहीं सका। और युवा किसी भी देश का जो होता है भविष्य होता है,
1: जी
0: और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि युवाओं को और महिलाओं को सशक्त करने के लिए पूरा प्रयास किया और काफ़ी हद तक उसको उस समस्या को ख़त्म भी करने का काम किया है। आज युवा बहुत बड़ी बड़ी देखिए कि कंपनीज आज हिंदुस्तान में
1: स्टार्टअप
0: जहाँ,
1: शुरू किए हैं।
0: हाँ जहाँ युवा अपना काम करें। आज गुड़गांव को देख लीजिए, मैं हरियाणा की बात करूँ, आज गुरुग्राम का साहब पूरे वर्ल्ड में नाम है,
1: बेंगलोर के बाद में आईटी सेक्टर में
0: तो आपके सामने
1: का
0: है किस प्रकार से आज पूरे हरियाणा का रेवेन्यू एक तरफ है, गुड़गांव और फरीदाबाद का रेवेन्यू एक तरफ है।
1: जी
0: आज प्रत्येक व्यक्ति बड़ी बड़ी से बड़ी कंपनी आप आ रही है। और आज अगर आप देखें तो आज सोनीपत की तरफ फरीदाबाद, गुड़गांव, इसके बाद सोनीपत की तरफ हरियाणा बढ़ रहा है। तो एक सोच है, एक टीम वर्क है।
1: जी
0: जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से आज हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी उस काम को आगे बढ़ाने का काम, एक नई सोच के साथ उन्होंने आगे बढ़ा।
1: जी
0: उन्होंने भी बहुत से ऐसे कुछ कार्य किए, अलग सी पॉलिसी बनाई है जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। आज हरियाणा में लगभग 360 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने।
1: जी
0: आज हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक मेडिकल कॉलेज बनने का काम कर रहे हैं।
1: जी
0: तो ये सोच को रखा, उसी सोच को आगे बढ़ाने। देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य अगर हम जल्दी से जल्दी मजबूत कर लेंगे तो हमारे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
1: जी
0: तो ये हमारी एक सोच जब रहेगी तो आप ये मान के चलिए कि हमें बहुत कुछ, बहुत सी चीज़ें हमारी अपने आप हल हो जाएंगी। और सबसे बड़ा तो जज्बा है साहब
1: जी,
0: क्या आप में देशभक्ति का जज्बा रहेगा तो आप ये मान के चलिए कि हम लोग काफ़ी हद तक इस चीज़ को कवर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि 14 से पहले 91,287 किलोमीटर के हाईवे थे,
1: जी
0: आज 101,46,000 के लगभग 1,47,000 के हाईवे बन चुके हैं। तो इसी प्रकार से स्टार्टअप का जो सिस्टम है वो पहले 350 था और आज स्टार्टअप 2,34,090 है, तो बहुत फर्क आ गया, बहुत फर्क आ गया। आज हिंदुस्तान जो विकसित राष्ट्र हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं जो बड़ी कंट्रीज हैं जो विकसित हैं, आज वो कहीं ना कहीं इस बात से भी डरती हैं
1: जी
0: कि हिंदुस्तान हमको पछाड़ देगा। कहीं ना कहीं मन में भय तो है, आपको ये मानना पड़ेगा
1: जी।
0: जो विकसित राष्ट्र हैं आज वो इस बात से डरते हैं कि हिंदुस्तान, और वो हिंदुस्तान ही रहा, आज हिंदुस्तान अपना एक मुकाम हासिल कर चुका है। और मतलब कि जो स्वप्न देखा है, मैं सभी से एक बात का निवेदन करूंगा, हमने इस मिट्टी में जन्म लिया है
1: जी,
0: और ये वो मिट्टी है हिंदुस्तान की जहाँ भगवान राम ने घुटनों के बल चले हैं
1: जी,
0: जहाँ कृष्ण ने इस मिट्टी का स्वाद चखा है, हमने उस मिट्टी में जन्म लिया। हमारी सोच, राजनीतिक सोच, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्र को लेकर मैं सभी से निवेदन करूंगा, जैसे इसराइल का पैदा होने वाला एक साल के बच्चे को राष्ट्र भावना उसके कान में ये कह दिया जाता है कि राष्ट्र प्रथम
1: जी,
0: तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस विषय पे हम काम करें। राजनीतिक जो हमारी धाराएं हैं वो चलती रहेंगी अपनी जगह, लेकिन विकसित राष्ट्र बनाना हम सबका काम है जिसने इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया है। जो आप नक्सलवादियों की बात कर रहे थे, बंगाल का चुनाव आपके सामने है, क्या हाल
1: जी, जी
0: सभी को वापस जाना पड़ रहा है। SIR एक बहुत बड़ा विषय है, सबको वापस जाना पड़ेगा, जो नजायज वोट बने हुए थे जिनकी वजह से सत्ताएं आती थी, या ये कह सकते हैं कि जो घुसपैठिए थे, अब उनको समझ आ गया कि हम हिंदुस्तान में नहीं आ पाएंगे। जिस दिन बंगाल की शपथ हुई उसके कुछ दिन के बाद ही, एक सप्ताह के बाद ही बॉर्डर पे अपना लाइन बिछा दी गई
1: जी,
0: एक रेखा खींच दी गई, तारे लगा दी गई, तो एक घुसपैठ की अब कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कुछ संभावनाएं रहेंगी। अगर कोई हिंदुस्तान में अगर आ भी जाता है तो फिर वापिस ही चला जाएगा, या फिर ऊपर जाएगा या वापिस देश में जाएगा। ऐसा नियम बनना भी चाहिए कि हमारे देश के कोई व्यक्ति बिना सरकार के, या तो उसने हिंदुस्तान के कोख से जन्म लिया हो
1: जी
0: तब रहने का अधिकार है, या जिसे परमिशन दी हो इस देश ने उसको रहने का अधिकार होना चाहिए, और किसी को इस देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो जिस देश से आया है उसको वापस जाना चाहिए
1: जी। जैसे आपने कहा है कि हम किसी भी विचारधारा से संबंध रखते हों और किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, लेकिन हमारा ध्येय हमारे राष्ट्र के विकास में होना चाहिए, उसके कल्याण के लिए होना चाहिए। प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपने देश की समृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए वो अपना योगदान दे। आप इस चर्चा में आपने भाग लिया और बहुत अच्छी अपने योजनाओं के बारे में विस्तृत से जानकारी दी, इसके लिए डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। शुक्रिया। जय हिंद,
1: जय
0: जय भारत, जय हरियाणा।
2: अभी आपने सुनी विशेष बातचीत, विषय था सरकार के 12 वर्ष। वार्ताकार थे श्री कृष्णलाल मिड्ढा, डिप्टी स्पीकर विधानसभा। इनसे बातचीत कर रहे थे श्री संजय कुमार बाली। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अनजाना अनजानी, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने सुना राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाज़ों में। गीत संगीत विशाल शेखर का था। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में लक्ष्य फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

शंकर महादेवन के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आपको सुनवाने जा रहे हैं चंदन दास की गाई गज़लें। सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, इनकी आवाज़ में ये गज़ल।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की गाई गजलें। सुनते हैं उनकी आवाज़ में ये अगली प्रस्तुति।

इसी प्रस्तुति के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम सुगम संगीत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, इसमें आज आपने चंदन दास की गाई गजलें सुनी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और ठीक 9 बजे होंगे अंग्रेज़ी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के

0: पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितुवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ। ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार केरल माहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले दो दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Charge d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
2: Union Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route. He also emphasized for ensuring adequate arrangements for all essential services including pilgrim registration, accommodation, healthcare facilities and disaster management. With Dipendra Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
6: Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata on the occasion of 12 years of the NDA government at the centre. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. He said that by giving fair price, West Bengal government is taking the lands from common people and handing it over to the BCF. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
7: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
6: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards positioning India as a global leader through its foreign policy. A report.
8: Over the last 12 years, India emerged as a formidable global leader driven by bold initiatives that fuse ambition with action. Prime Minister Narendra Modi's leadership has anchored these efforts in responsibility and inclusivity, ensuring India's voice resonates across global platforms. India strengthened its old relationship while making new friends, infusing fresh energy into India's foreign policy while keeping the principle of India first supreme. Humanitarian assistance and disaster relief operations are a vital part of India's global engagement. Cyclone Dithwa made landfall on the eastern coast of Sri Lanka in November 2025, leaving hundreds dead, thousands displaced, and critical infrastructure damaged. Standing in solidarity with the people of Sri Lanka, India launched Operation Sagar Bandhu to provide immediate humanitarian assistance and disaster relief to Sri Lanka. The effort brought together the Indian Navy, Air Force, Army, and disaster response team in a coordinated rescue and relief operation. India provided comprehensive support to Sri Lanka, including immediate relief supplies, medical aid, search and rescue assistance, and restoration of damaged infrastructure. Thanking the Indian government, Sri Lanka's Deputy Minister for Ports and Civil Aviation, Janit Ruwan Kodithuwakku, stated that India had shown immense warmth and solidarity toward the people of Sri Lanka.
9: We are very thankful to India because since the day this Dithwa happened, opened their warm heart to us and we really appreciate their help. We are very good friend of India and we would like to extend our thanks to Indian government and the Indian people on behalf of Sri Lankan government and the Sri Lankan people.
8: The major highlight of India's foreign policy came during the COVID-19 crisis. India launched the Vaccine Maitri initiative as a testament to its human-centered diplomacy. Since January 2021, India has supplied over 30.12 crore vaccine doses to 99 countries and two UN bodies. This included 1.51 crore doses gifted to over 50 nations and 5.2 crore doses through COVAX mechanism. Talking to Akashwani News, Dr. Jyotishko Biswas, a physiotherapist and yoga teacher based in Bangladesh, said that the rapid dispatch of the vaccines from India was a profound gesture of goodwill.
10: India jo kiya hamare liye vaccine.
11: At that time, India made a fast response and sent the vaccine to us. I also took that vaccine. It was very good for us, our relatives and all the countrymen. It was a very nice gift from India to the world. So for this, we are very grateful. Best wishes to the Indian government and the people. Many, many thanks to India.
10: India government and people ke liye bahut bahut dhanyawad.
8: In the last 12 years, India has stepped up as a global leader through impactful initiatives like Vaccine Maitri and Operation Sagar Bandhu that blend vision with execution. Its commitment to humanitarian aid and regional partnership is anchored in the civilization ethos of Vasudev Kutumbakam. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
6: Union Minister for Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat has said that the Modi government is committed to the conservation and restoration of India's cultural heritage. In an exclusive interview with Akashvani News, he said, under the mission to bring back stolen or smuggled antiquities from abroad, 670 sculptures and artifacts have been brought back so far. Mr. Shekhawat expressed confidence that this number will cross 1,000 by the end of this year.
12: प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको ज्ञान भारतम मिशन
13: अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दिस इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन मिशन मोड अंडर द नेम ज्ञान भारतम मिशन वी आर डिजिटाइजिंग आवर मैन्युस्क्रिप्ट्स इन दिस विजन डिजिटाइजेशन डज नॉट मेयरली मीन क्रिएटिंग अ डिजिटल कॉपी और स्टोरिंग अ डिजिटल वर्जन ऑफ दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स रादर द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग देम इनटू अ कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट
12: को आसानी से ट्रांसलिटरेट किया जा सके.
6: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. Our correspondent has the details.
14: The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The ministry said such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The U.S. Chargé d'Affaires was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operate in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
6: As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem with over 2,55,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. A report.
15: Several reforms brought by the government over the last 12 years, from the launch of Startup India, establishment of Atal Incubation Centers, the Fund of Funds, and simplified compliance norms, have transformed India's entrepreneurial landscape beyond recognition. The ecosystem today spans deep technology, space, defense, agri-tech, health tech, and clean energy. Among those that will be spotlighted at the summit is MedUp Plus, a medtech startup that has developed a comprehensive, portable eye screening device now being adopted across India, Europe, and USA. Built mostly on government support without any venture capital funding. Talking exclusively to Akashvani News, co-founder Ravi Kiran spoke about how the government platform gave their innovation the visibility.
16: When we started, the early stage startups were given a high priority and the government was focusing more on early stage startups, and the government is learning very quickly. Modi ji has started putting a lot of efforts towards not just the early stage startups but also the mid stage.
15: It may be noted that India-France Year of Innovation, of which this summit is the centerpiece, seeks to deepen collaboration between the two nations in emerging technologies, startups, and scientific research. This is Shailesh Menon, Akashvani News, Nice, France.
6: A Seoul court has sentenced former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison today after finding him guilty of ordering drone incursions into North Korea to escalate tensions and justify his December 2024 martial law declaration. The Seoul Central District Court convicted the jailed former president on charges of benefiting the enemy and abuse of power. Former Defense Minister Kim Yong-un also received a 30-year sentence for his role in the operation. On to sports. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Shen Suyu in a one-sided quarterfinal clash today. Sindhu will next face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final match. Yamaguchi defeated India's Tanvi Sharma in the quarterfinal clash today. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin tonight with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston, Birmingham. The match is scheduled to begin at 11 p.m. Indian Standard Time. Indian women's team will start their campaign against arch rivals Pakistan on Sunday. In FIFA World Cup 2026, co-hosts Canada will be up against Bosnia and Herzegovina in a Group B clash at Toronto Stadium tonight. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The encounter marks the first ever World Cup meeting between the two nations. Benchmark domestic equity indices ended today's trading session with strong gains of around 2%, driven by hopes of de-escalation in West Asia. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya tomorrow. Heavy rainfall is also expected over other parts of northeast India, Bihar, Kerala, Mahe, Odisha and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. The Met Department said that the southwest monsoon has further advanced into the entire northwest Bay of Bengal, some more parts of West Bengal

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रिंस फिल्म से चुनिंदा गीत। फिल्म के गीत लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और उन गीतों को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं प्रिंस फिल्म से चुनिंदा गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक फिल्म से यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। इसमें आज आपने प्रिंस फिल्म से चुनिंदा गीत सुने। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं कवि गोष्ठी। प्रतिभागी हैं मनीष मधुकर, सीमा बिरला, मधु गोयल।
1: आकाशवाणी रोहतक के सुनने वालों को मनीष मधुकर का प्यार भरा नमस्कार। एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आप सबका प्रिय कार्यक्रम कवि गोष्ठी लेकर और अपने मित्रों की मंडली के साथ। कविता, गीत, गजल, दोहे, मुक्तक, बहुत कुछ आज आपको यहाँ से सुनने को मिलेंगे। तो आइए मैं अपनी टीम से आपका परिचय करवाता हूँ। मेरे साथ बैठी हैं मधु गोयल, जो कैथल हरियाणा से यहाँ आई हैं। इनकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और अभिनय के क्षेत्र में भी ये सक्रिय रही हैं। साथ साथ इनके साथ बैठे हैं श्री विकास नसीब जी, जो भिवानी से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। एक सिद्ध गज़लकार हैं। इनकी 2 गज़लों की किताबें प्रकाशित हो चुकी है और आज इनकी कविताओं से भी हम रूबरू होंगे। हमारे साथ एक और कवित्री बैठी हैं, डॉक्टर सीमा बिरला, जो कुरुक्षेत्र से चलकर हमारे बीच आई हैं। इनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, 2 हिंदी में और 2 इंग्लिश में। आज इनकी कविताओं से भी हम रूबरू होंगे। कविता का एक कार्यक्रम कवि गोष्ठी, जिसमें कवियों का परिवार आज आकाशवाणी रोहतक के प्रांगण में उपस्थित है। मैं 4 पंक्तियों से आज के इस कवि गोष्ठी का आगाज करना चाहता हूँ कि दर्द कसक पीड़ा बेचैनी से अपना दिल साद रहे, कि दर्द कसक पीड़ा बेचैनी से अपना दिल शाद रहे, प्यार वफा उम्मीद का मौसम हरदम ही आबाद रहे, कि दर्द कसक पीड़ा बेचैनी से अपना दिल साद रहे, प्यार वफा उम्मीद का मौसम हरदम ही आबाद रहे। तो गीत, गजल, कविता चौपाई से कवियों का जीवन है, तो कविता जिंदाबाद रही है। कविता जिंदाबाद रहे, कविता जिंदाबाद रहे, कविता जिंदाबाद रहे। इसके लिए आकाशवाणी रोहतक ऐसे कार्यक्रमों की रचना करती है और हम सब लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ एकत्र होते हैं। तो आइए आज के इस कवि गोष्ठी का हम आगाज करते हैं और आवाज देते हैं मधु गोयल जी को, जो कि कैथल से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं।
2: नमस्कार, मैं मधु गोयल कैथल हरियाणा से आप सभी को नमन करते हुए अपने गीत से आप सभी को जोड़ना चाहूंगी। सुनिएगा।

0: सहारा। धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया मधु गोयल जी। माँ और पिता को हम सब क्या सहारा दे पाएंगे, वो एक शख्सियत है जिनके सहारे हम इस अस्तित्व तक पहुँचे हैं। आपने माँ को जोड़ा, एक दोहे में माँ की इस महिमा को समेटने का प्रयास करता हूँ। मैंने कभी कहा कि माँ की जग में है सदा बस इतनी पहचान, कि माँ की जग में है सदा बस इतनी पहचान, आंचल में ममता बसे होठों पर मुस्कान, होठों पर मुस्कान। इससे इतर माँ की परिभाषा हो नहीं सकती। मैंने जहाँ माँ के लिए बात कही, आपने माता पिता दोनों के लिए गीत पढ़ा। मैंने कभी कहा कि चोंच में चिड़िया के जैसे दाना लाने का हुनर, चोंच में चिड़िया के जैसे दाना लाने का हुनर, हाँ पिताजी जानते थे घर चलाने का हुनर। और एक पलरे में वो रखते थे हमारी गलतियाँ, कि एक पलरे में वो रखते थे हमारी गलतियाँ, दूसरे में गलतियों को भूल जाने का हुनर। और वहीं माँ के लिए कभी कहा कि दर्द में तकलीफ में भी मुस्कुराने का हुनर, तिनका तिनका जोड़ करके घर चलाने का हुनर, रूठ जाने का हुनर तो जानते हैं लोग सब, कि रूठ जाने का हुनर तो जानते हैं लोग सब, माँ से बेहतर कौन जानेगा मनाने का हुनर, माँ से बेहतर कौन जानेगा मनाने का हुनर। आइए इस कवि गोष्ठी में क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आवाज देते हैं विकास नसीब जी को, जो आए और अपनी गजलों से हम सबको नवाजे।
2: आकाशवाणी रोहतक के सभी सुनने वाले मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं अपनी एक गजल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मर्द को हर जगह बड़ा ही जालिम जुल्मी बताया गया है, लेकिन मेरी गजल जो है मर्द की हिमायत में है। गजल पेशे खिदमत है
1: जी। इरशाद।
2: बोझ जिम्मेदारियों का उम्र भर ढोता है मर्द,
1: बोझ जिम्मेदारियों का उम्र भर ढोता है मर्द,
2: बोझ जिम्मेदारियों का उम्र भर ढोता है मर्द, फर्ज की फसलों को अपने खून से बोता है मर्द।
1: वाह।
2: देख लेते हैं सभी औरत के अश्कों को मगर, देख लेते हैं सभी औरत के अश्कों को मगर, जानता कोई नहीं जाके कहां रोता है मर्द। चौकसी करता है हर रिश्ते की मुस्तैदी के साथ,
1: वाह।
2: चौकसी करता है हर रिश्ते की मुस्तैदी के साथ, चैन की नींदें कभी भी तो नहीं सोता है मर्द।
1: वाह।
2: दे के भी कुर्बानियां जालिम कहा जाता है जो, दे के भी कुर्बानियां जालिम कहा जाता है जो, बदनसीबी में बेचारा ऐसा इकलौता है मर्द। जुर्म इसका हो न हो मुजरिम यही साबित हुआ, जुर्म इसका हो न हो मुजरिम यही साबित हुआ, हर दफा होकर के रुसवा आबरू खोता है मर्द। दिलरुबा की इक जरा मामूली ख्वाहिश के लिए, दिलरुबा की इक जरा मामूली ख्वाहिश के लिए, गहरे से भी गहरे गम में मारता गोता है मर्द।
1: क्या कहने जी, क्या कहने।
2: अपनी ख्वाहिश मार लेता है ये अपनों के लिए, अपनी ख्वाहिश मार लेता है ये अपनों के लिए, जिंदगी भर जिंदगी से करता समझौता है मर्द।
1: वाह।
2: कोई कितनी भी जुबा मारे मगर सच है नसीब,
1: वाह।
2: कोई कितनी भी जुबा मारे मगर सच है नसीब, मर्द तो होता है आखिर, मर्द तो होता है मर्द।
1: वाह, क्या कहने, मर्द तो होता है मर्द। जी हाँ, हम आज के इस कवि गोष्ठी में पुरुषों और महिलाओं की संयुक्त जोड़ी में, जहाँ दो महिला कवित्रियाँ हमारे साथ हैं, दो पुरुषों का प्रतिनिधित्व है यहाँ। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र की तरफ, जहाँ से हमारे बीच पधारी हैं डॉक्टर सीमा बिरला। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और अपनी कविताओं से हम सबको नवाजें।
3: जी बहुत शुक्रिया। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। एक गज़ल के माध्यम से आप सबसे जोड़ने का प्रयास करूँगी।
1: स्वागत है।

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया सीमा जी, आपने सीमा की बात की, कश्मीर की बात की, भारत की बात की, हिंदुस्तान की बात की। तो आज के इस कवि गोष्ठी में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल में रहने वाली शय को दिल और जान बनाकर रखिए। ज़रूरी नहीं कि दिल में किसी महबूब की तस्वीर हो, आपका वहाँ कुछ और भी हो सकता है। चार पंक्तियाँ ये सुने कि दिल में रहने वाली शय को दिल और जान बनाकर रखिए, सुख से दुख से गम से खुशी से भी पहचान बनाकर रखिए। कि दिल में रहने वाली शय को दिल और जान बनाकर रखिए, सुख से दुख से गम से खुशी से भी पहचान बनाकर रखिए। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर देश बनाते हैं तो, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर देश बनाते हैं तो, हिंदुस्तान बनाने वालों हिंदुस्तान बनाकर रखिए,
0: बहुत
1: हिंदुस्तान बनाने वालों हिंदुस्तान बनाकर रखिए। हिंदुस्तान रहेगा तो ये हम सब रहेंगे, हम सब लोग सुख से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। आइए अपनी एक रचना से आपको जोड़ता हूँ, एक अपनी पुरानी गजल का अनायास ही ध्यान आ गया है। मैं कुछ गुनगुनाने का प्रयास करता हूँ, कितना सफल हो पाऊंगा ये आपके प्रतिक्रियाएं बताएंगी। आप अपनी निरंतर प्रतिक्रियाएं आकाशवाणी रोहतक के लिए भेजते रहें, ईमेल और बाकी माध्यमों से। आइए जुड़ते हैं, एक गजल के कुछ शेर सुनिए। कि पगले जरा समझ ले क्या दम छुपा हुआ है,

0: छुपा हुआ है। एक शेर और देखें कि हंसते हैं लब्ज सारे मेरी गजल के, लेकिन हंसते हैं लब्ज सारे मेरी गजल के, लेकिन महफूम में ये क्यों कर मातम छुपा
1: वाह जी
0: हुआ
1: वाह,
0: है।
1: बहुत बढ़िया।
0: महफूम में ये क्यों कर मातम छुपा हुआ है। और ये शेर भी देखें कि अब तू संभाल मुझको

0: तेरी कैसा मौसम छुपा हुआ है, पगले जरा समझ ले क्या दम छुपा हुआ है। इन ढाई अक्षरों में मातम छुपा हुआ है।
1: क्या बात
0: उसे
1: है।
0: तहत में भी सुन ले,
1: हाँ जी,
0: मैंने कहा कि रस्म निभाएंगे हम वादा चूमेंगे। एक नई गजल से कुछ शेर सुने कि रस्म निभाएंगे हम वादा चूमेंगे, आंख से तेरे घर का रास्ता चूमेंगे। कि रस्म निभाएंगे हम वादा चूमेंगे, आंख से तेरे घर का रास्ता चूमेंगे, और प्रेम का पौधा हमें कहीं जो मिल जाए। कि प्रेम का पौधा हमें कहीं जो मिल जाए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा चूमेंगे।
1: वाह जी
0: कि प्रेम
1: वाह,
0: का पौधा हमें कहीं जो मिल जाए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा चूमेंगे। और एक शेर जिसके लिए पूरी गजल कही, बतौर खास शेर देना चाहता हूं, आप सब अपने साथ ले जाइएगा। प्रेम क्या होता है, उस प्रेम का शेर देना चाहता हूं कि काश अकेले तू मुझको मिल जाए तो, कि काश अकेले तू मुझको मिल जाए तो, होठ नहीं हम तेरा माथा चूमेंगे।
1: वाह जी
0: कि
1: वाह,
0: रस्म निभाएंगे हम वादा चूमेंगे, आंख से तेरे घर का रास्ता चूमेंगे, और काश अकेले तू मुझको मिल जाए तो, होठ नहीं हम तेरा माथा चूमेंगे। और
1: बहुत
0: शेर
1: खूब।
0: सुने कि ऊला शेर का आधा हिस्सा होता है, कि ऊला शेर का आधा हिस्सा होता है, शेर हुआ तो मिसरा मिसरा चूमेंगे। कि शेर हुआ तो मिसरा मिसरा चूमेंगे। और शेर गजल का आखिरी शेर सुने कि एक दिन ऐसा होगा मेरा दावा है, कि एक दिन ऐसा होगा मेरा दावा है, खत का मेरे आप लिफाफा चूमेंगे,
1: वाह जी वाह,
0: खत
1: बहुत
0: का
1: बढ़िया,
0: मेरे आप
1: बहुत अच्छा,
0: लिफाफा चूमेंगे।
1: बहुत बढ़िया।
0: मैं भी आशा करता हूं कि हमारे सारे श्रोताओं के खत के लिफाफे पहुंचे आकाशवाणी रोहतक तक। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और एक बार पुनः एक छोटी सी रचना के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, मधु गोयल जी को पुनः आवाज देता हूं कि वो अपनी रचना से जोड़ें।
1: नमस्कार।

0: कवियों की थाती दर्द कसक और पीड़ा होती है और सफलता के सफर में टॉनिक का काम करती है पीड़ा। मैंने कभी लिखा कि तपे बिन आग में कोई कनक कुंदन नहीं होता, कि तपे बिन आग में कोई कनक कुंदन नहीं होता, कि जब तक मन न हो निर्मल कोई पावन नहीं होता, और लहर अनुकूल हो तो कोई भी तर जाए भवसागर, कि लहर अनुकूल हो तो कोई भी तर जाए भवसागर, चुनौती से रहित जीवन कोई जीवन नहीं होता, चुनौती से रहित जीवन कोई जीवन नहीं होता। मेरी चुनौती है कि समय पे आज का ये कार्यक्रम आप सबके मन तक उतरे, आज का ये कवि गोष्ठी, आज की ये कवि गोष्ठी आप तक के दिल तक की यात्रा करे और आप लोगों को मनोरंजित करे ये कार्यक्रम। मैं आइए क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और विकास नसीब जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और अपनी कविताओं से हमें रूबरू करें।
1: गजल पेशे खिदमत है, गौर फरमाइएगा। हूँ मैं शायर, शायरी करता हूँ मैं।
0: वाह।
1: हूँ मैं शायर, शायरी करता हूँ मैं, लफ्ज़ में जादूगरी करता हूँ मैं।
0: वाह।
1: जख्म कौन सा चाहिए मुझको बता, जख्म कौन सा चाहिए मुझको बता, दर्द गम की तस्करी करता हूँ मैं।
0: वाह।
1: याद उनकी जख्म करती है हरे, याद उनकी जख्म करती है हरे, जाम से तबीयत हरी करता हूँ मैं।
0: हाय हाय, क्या कहने, अच्छा शेर हुआ है जी।
1: हद से ज्यादा दर्द देकर दर्द को, हद से ज्यादा दर्द देकर दर्द को, दर्द की चारागरी करता हूँ मैं।
0: वाह।
1: अगला गजल जाने गजल शेर है, गौर फरमाइएगा। जो हसीना मेरा पहला प्यार थी,
0: हाय हाय,
1: जो हसीना मेरा पहला प्यार थी, उससे नफरत आखिरी करता हूं मैं।
0: वाह।
1: दर्द भी रोने लगे मुंह फाड़ कर, दर्द भी रोने लगे मुंह फाड़ कर, बात इतनी गम भरी करता हूं मैं। झूठी मूठी हुस्न की तारीफ कर, झूठी मूठी हुस्न की तारीफ कर, बुरी शक्ल को भी परी करता हूं मैं। प्यार पहला बेवफा हो जाए तो,
0: वाह,
1: प्यार पहला बेवफा हो जाए तो, फिर मोहब्बत दूसरी करता हूँ मैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: आखिरी शेर गौर फरमाए। दर्द में था साथ इसलिए ऐ नसीब, दर्द में था साथ इसलिए ऐ नसीब, गम को बाइज्जत बरी करता हूँ मैं।
2: वाह, क्या कहने,
1: शुक्रिया।
0: बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया नसीब साहब। मैंने कभी कहा कि दर्द से दिल लगी करो पहले, कि दर्द से दिल लगी करो पहले, दर्द बिन शायरी नहीं होती। तो दर्द तो हम लोग की खुराक है, ज़रूरी है। आपने कहा कि जिससे पहला प्यार किया उनके लिए क्या कहा, मैंने कभी इशारे इशारों में कहा, कविता का काम इशारों में कहना है। मैंने कहा कि दुनिया भर की भाषाओं के सबसे बेहतर अक्षर से, कि दुनिया भर की भाषाओं के सबसे बेहतर अक्षर से नाम लिखा करता था उनका, बिल्कुल सोवर अक्षर से। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में यूं तो 26 अक्षर हैं, कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में यूं तो 26 अक्षर है, लेकिन मुझको नफरत है बस 19 नंबर अक्षर से। तो मैंने यूं इशारे में कहा, अपने नाम लेने की जहमत हमने नहीं की। दूसरी बात, कविता में एक और बात, जो लोग आज आकाशवाणी रोहतक के इस बेहतरीन कार्यक्रम कवि गोष्ठी को सुन रहे हैं, तो हर कवि गोष्ठी का एक कर्म होता है। पहले प्राचीन समय में कवि गोष्ठियाँ होती थी नए लोगों को कुछ बताने के लिए, सिखाने के लिए। मैं यहाँ से चार पंक्तियाँ उन लोगों के लिए देना चाहता हूँ जो लोग नया लिख रहे हैं, वो चमकदार पृष्ठ के साथ नई नई किताबें तो छपा लेते हैं मगर शिल्प भाव कथ्य व्यंजना से बहुत दूर रहते हैं। ऐसे लोगों तक मैं चार पंक्तियाँ भेजना चाहता हूँ आज की इस कवि गोष्ठी के प्रसाद के रूप में। चार मिसरे मेरे ये सुने, मैंने कहा कि पृष्ठ भी अच्छे रहें और आवरण भी ठीक हो, कि पृष्ठ भी अच्छे रहें और आवरण भी ठीक हो, शिल्प भाव व्यंजना का आचरण भी ठीक हो, कि पृष्ठ भी अच्छे रहें और आवरण भी ठीक हो, शिल्प भाव व्यंजना का आचरण भी ठीक हो, तो गीत लिखते वक्त मधुकर ध्यान बस रखना यही, तो शेर कहते वक्त मधुकर ध्यान बस रखना यही, कि शब्द मर्यादित रहें और व्याकरण भी ठीक हो, कि शब्द मर्यादित रहें और व्याकरण भी ठीक हो। आइए हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक बार पुनः प्रार्थना करते हैं डॉक्टर सीमा बिरला से कि वो आए और अपनी कविताओं से हम सबको नवाजे।
2: जी, पेशे खिदमत है एक और गजल। मैं लड़की हूँ मुझे अक्सर जताना छोड़िए साहब, मैं लड़की हूँ मुझे अक्सर जताना छोड़िए साहब, यहाँ खतरा वहाँ खतरा बताना छोड़िए साहब, मैं लड़की हूँ मुझे अक्सर जताना छोड़िए साहब, यहाँ खतरा वहाँ खतरा बताना छोड़िए साहब, मुझी पर हर दफ़ा लांछन लगाते थक नहीं जाते, मुझी पर हर दफ़ा लांछन लगाते थक नहीं जाते, गरेबा में कभी तो आप भी तो देखिए साहब, गरेबा में जरा खुद भी कभी तो देखिए साहब। सुनी है बंद कमरों में दबी कुछ सिसकियां नन्ही, सुनी है बंद कमरों में दबी कुछ सिसकियां नन्ही, मेरे कपड़ों पे अब उंगली उठाना छोड़िए साहब, कभी जुल्मत कभी असमत, कभी जुल्मत कभी असमत अना की बेड़ियां भारी, कभी जुल्मत कभी असमत अना की बेड़ियां भारी, चढ़े फांसी दरिंदे सब बचाना छोड़िए साहब, किसी माँ आज की नारी नहीं अबला न बेचारी, किसी माँ आज की नारी न अबला न बेचारी, खड़ी है तान कर सीना डराना छोड़िए साहब, खड़ी है तान कर सीना डराना छोड़िए साहब। बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया सीमा जी, आपने बेटियों की बात की। चार पंक्तियों से मैं आपकी इस गज़ल पे प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। बेटियाँ ईश्वर की नेमत होती हैं, और सही कहा आपने कि उन पे टोका टोकी छोड़ना चाहिए, उनको उड़ने का आकाश देना चाहिए। मैंने कभी लिखा कि घर के आंगन में ये बच्चियाँ जैसे बागों में हो तितलियाँ, कि घर के आंगन में ये बच्चियाँ जैसे बागों में हो तितलियाँ, इनको उड़ने दो आकाश में, इनको उड़ने दो आकाश में, घर की जीनत है ये बेटियाँ, घर की जीनत है ये बेटियाँ, बेटियाँ पढ़ेंगी तो देश बढ़ेगा, इसलिए पूरा देश कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आइए क्रम में आखिरी नाम मेरा है, एक बार पुनः मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ, कुछ मुक्तकों के साथ आपसे जुड़ना चाहता हूँ, आप सब लोग जुड़िएगा और अपनी प्रतिक्रियाओं से नवाजिएगा, मैं पुनः गुनगुनाने का प्रयास करता हूँ। कि तड़पना चाहना चाहत की धुन में ही फना होना, तड़पना चाहना चाहत की धुन में ही फना होना, हमेशा सीखा परवाने ने जलना और धुआं होना, हमेशा सीखा

0: रहा हूं मैं। जी हाँ श्रोताओं, आप सब भी याद रखिएगा आकाशवाणी रोहतक को, उसकी इस कवि गोष्ठी को। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अंत में बस इतना कहूंगा कि रिश्ता नाता शब्द अर्थ का भाव से मिल तय करते रहिए, कि रिश्ता नाता शब्द अर्थ का भाव से मिल तय करते रहिए। कविताएं खुद हो जाएंगी सम्यक अन्वय करते रहिए। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं तो, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं तो, जब तक पर्दा गिर न जाए तब तक अभिनय करते रहिए, जब
1: बहुत
0: तक
1: खूब,
0: पर्दा
1: वाह
0: गिर
1: जी
0: न
1: वाह,
0: जाए
1: बहुत
0: तब
1: खूब,
0: तक
1: बहुत
0: अभिनय।
1: अच्छा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी, प्रतिभागी थे श्री मनीष मधुकर, विकास मधु गोयल एवं सीमा बिरला। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को रीटा का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, महल फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं जे नक्षब ने और संगीत दिया है इस गीत को शंकर जय किशन ने। गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है आप सबने। करमपुरा नई दिल्ली से कविता गौरव, मानसी अनिल मदान, फुल चिंचोली पंढरपुर महाराष्ट्र से जाकिर मुलानी, सुमैया सुभान, समीर सलमा मुमताज़, दिलशाद नसीर मुलानी, बानू बी गुल मुलानी, बादशाह मुलानी, शेरड़ा हनुमानगढ़ से मंटू शर्मा, सोनू शर्मा, सुशीला और लीलाधर शर्मा, वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से ये खत हमें लिख भेजा है विजय चौहान, इंदूरकर तेजस्विनी चौहान, माई इंदूरकर, शौर्या श्रेयस अंकिता अनिकेत चौहान ने। कैथल से ये हमारे श्रोता हैं मधु नायक, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति गुप्ता, राधे दीपक अंकु राघव गुप्ता। सुनवाने जा रहे हैं आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, महल फिल्म से।

महल फिल्म से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। गीत के बोल लिखे थे नक्शब ने और संगीत दिया था खेमचंद प्रकाश ने। कार्यक्रम में अगला गीत आप सबकी पसंद पर सुनवाने जा रहे हैं। कैदी मुड़ा रामगढ़ छत्तीसगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, लीलू सिंह और ऋतु सिंह। धनबाद झारखंड से ये खत हमें लिख भेजा है अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह और समृद्धि ने। झाझा बिहार से ये फरमाइश हमें लिख भेजी है संजीव कुमार सिंह, पूजा, रवि और आरती सिंह ने। पटना बिहार से ये खत आया है भुवनेश्वर, मीनू, लीलू का। गांव 34 एसटीजी पीली बंगा से अमन मेहरा, समर मेहरा, ऋतु मेहरा और बिशन लाल मेहरा। आप सबने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में बैजू बावरा फिल्म से गीत। गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और संगीत से सवारा है इस गीत को नौशाद ने।

शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में बैजू बावरा फिल्म से। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज़ में आर पार फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत है। पसंदकर्ताओं के नाम गीत के बाद।

शमशाद बेगम की आवाज़ में आपने सुना आर पार फिल्म से ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं पेइंग गेस्ट फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। दोनों गीतों के लिए मिलीजुली फरमाइश आपको बता दें, जरूर वरूर महाराष्ट्र से बाबा साहेब, मीनाक्षी चरपे, चंद्रप्रभा वाड़ोदे, न्यू मुल्तान नगर नई दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित सुरभि, अनीता खुराना, राजीव ढींगरा, कन्हैया लाल, अमरपुर पेंड्रा से दीपक रोशन, वंशीलाल, रेखा श्रीवास्तव, श्वेता देवी, सुरुचि दिशा, लम्बी श्रीवास्तव, राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल, अंजुलता, आदित्य, कृष श्रीवास्तव, भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा, पिरदा कुरासी से रोहित साहू, हरीश कुमार, पुष्पलता, राधा साहू, बागपत यूपी से एहसान अली, दिल्ली से डॉक्टर सोनम अदीबा, बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, राज अंसारी, आसमा खातून, गुलफराज भागलपुरी, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमा नाज, काबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। आइए सुनते हैं पेइंग गेस्ट फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में गीत। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत से सवारा है इस गीत को एस टी बर्मन ने।

नया पारा भिरई से बसंत सूर्यवंशी, सरोज, ईश्वर राज, चंद्रकांत, प्राची, ट्यूशी सूर्यवंशी, केलंगा से सुंदरपाल कौशिक, अभी निशु, देबू, परी, पीहू, पाखी कौशिक, सेरगर गांव से नजीत कौर, जसबीर कौर, हसनप्रीत कौर, मान, रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, वड़ाली देशमुख महाराष्ट्र से राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर, इंदिराबाई, सुनैना खोबरखेड़े, तनुजा, खांडवी जलगांव से रामधाड़े, दीपाली स्वराज धाड़े, मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोनिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, अजय, अनाया, सपना, शिवी, सलोनी, महोबा बुंदेलखंड यूपी से ये खत आया है नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न और गौरव का। पत्रोड़ा अनूपगढ़ से इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, इंद्र, इंदु, सुनील जनागल। आप सबने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में सहरा फिल्म से गीत। हसरत जयपुरी के बोल हैं, रामलाल का संगीत है।

0: हसरत जयपुरी का लिखा और रामलाल का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में सहरा फिल्म से। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। मीडियम वेव पर हमारी फ्रिक्वेंसी है 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़। साथ ही आप जुड़े हैं न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। कार्यक्रम में अगला गीत आप सबकी पसंद पर सुनवाने जा रहे हैं करणपुर राजस्थान से शिव कुमार सेठी, सुनीता सेठी, कमल सेठी, ज्योति, शबद सेठी, बानी और राजू, नरवेल मैथुन से पुजांजी नहावकर, विशाल नहावकर, पुणे महाराष्ट्र से शैलेंद्रपुरी सोनम, धनुष गिरी, सनावत से किशोर सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, चारवी, प्रणव सांवले, दत्रेंगी छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, सालियाखेड़ी मालवा से सोनू विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा, करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, हरिपाल और मीनाक्षी तिवारी। आप सबने सुनना चाहा है नवरंग फिल्म से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में गीत। भरत व्यास के बोल हैं, सी रामचंद्र का संगीत है।
1: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई येने पकरी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परी हरी भोली।

0: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,
1: पतंगा फिल्म से आपको सुनवाने जा रहे हैं शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ों में गीत। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, सी रामचंद्र का संगीत है। पसंदकर्ताओं के नाम गीत के बाद।

पतंगा फिल्म से आपने सुना ये गीत, शमशाद बेगम और सी रामचंद्र की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से सवारा था सी रामचंद्र ने। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में, हावड़ा ब्रिज फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं कमर जलालाबादी ने और संगीत दिया है इस गीत को ओपी नैयर ने। सुनना चाहा है आप सबने, दोनों गीतों की फरमाइश आपको बताने जा रही हैं। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाव्या और सुच्चा पाठक। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, विमला गैरी, विकास इंदौरा, प्रियंका रमन, ऋतु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिसेल खन्ना, किंशु खन्ना और दीपांशी इंदौरा। सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी कुसुम, पलक और पंखुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका गुप्ता, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन। डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र शाह और मानसी शाह। ये खत हमें मिला है अलीका डब्वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। बटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू और मोहित नारंग। बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर। धामनी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश, अमोल, गुलशन, आदेश, किरण डेरे और प्रज्वल। सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में, हावड़ा ब्रिज फिल्म से ये गीत।

वाशिम महाराष्ट्र से ऋचा वसमतकर, सोनाली पाठक, संगीता पांडे, अश्विनी कुलकर्णी, कल्पना, सुनीता पांडे, मालती कंझरकर, संगीता, उषा रेंघांटे, छाया बोरकर, तृप्ति श्रृंगारे, विशाखा आमले, माधुरी जोशी, सोनू जीतू, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखना रानी, सदफ आरजू, जूही इकबाल, आमना नसरीन, इमरान अहमद, नुरेशा अहमद, जूही इकबाल, खजूरी खास दिल्ली से पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ गौरव नेगी, मीठी और कुहू, आनंद गुजरात से ये खत हमें लिख भेजा है आशाबेन पटेल, विशाखा पामेला पटेल ने, भीलड़ बाबी गुजरात से कल्पना मदान झा, मानव और मयंक, कुदोपाली उड़ीसा से गिरधारी लाल विश्वकर्मा, सरस्वती देवी और विहंगम विश्वकर्मा, कीर्तिनगर नई दिल्ली से सुशांत प्रिया झा, निवेश नियति, ये खत हमें मिला है भीलवाड़ा राजस्थान से गजेंद्र सिंह तोमर, राजेंद्र और वीरेंद्र का, वाड़ी खामगांव से अनंता वाड़े, रामेश्वर, शुभम, साक्षी और खुशी। आप सब ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में ताजमहल फिल्म से गीत। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, रोशन का संगीत है। सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आप सब की फरमाइश पर।

0: मन्ना डे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही भूले बिसरी गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरी गीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और ठीक 11:05 पर होंगे अंग्रेज़ी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।